0: हर नजर से हाँ, कोई भी मेरे सिवा गुजरे ना इधर से हाँ, बतला दो जहाँ को समझा दो खिदा।
1: हर सुबह एक नया अवसर है, हर सांस एक नई उम्मीद है और हर मुस्कान एक नई शुरुआत है। इन्हीं खूबसूरत विचारों के साथ सुनाते हैं आपको एक खूबसूरत गीत। मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और मौसम के इस मिजाज को अपने दिल में उतरने दीजिए, क्योंकि जिंदगी भी तभी खूबसूरत लगती है जब मन उम्मीदों से भीगा हो।

प्रकृति हमें हर पल बराबरी, प्रेम और करुणा का संदेश देती है। याद रखिए, जीवन में खुश रहने का सबसे आसान तरीका है, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद और जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य। आज जब भी घर से बाहर निकलें तो पेड़ों को देखिए, पक्षियों की आवाज़ सुनिए।

प्रकृति को निहारिए और कुछ पल अपने लिए जरूर निकालिए। मन को जितनी शांति प्रकृति देती है उतनी शायद कोई नहीं दे सकता।

दोस्तों अब वक्त है कि आपसे विदा ली जाए। जाने से पहले बस इतना कहना चाहूंगी कि बारिश की बूंदों की तरह आपका जीवन भी खुशियों से भर जाए, मन में विश्वास बना रहे, चेहरे पर मुस्कान बनी रहे और हर सुबह आपके लिए नई उम्मीद लेकर आए। इसी कामना के साथ मैं अर्चना गोयल आपसे अनुमति चाहूंगी। नमस्कार।

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 6 जुलाई 2026। सुबह के 5:53 और 40 सेकंड हुए हैं। हमारे प्रातःकालीन सभा के कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का ये FM गोल्ड चैनल है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब आपको आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें।

अब से कुछ देर में यानी समाचारों के बाद 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्पण। कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगी पूजा भारद्वाज।

6:45 पर श्री रामचरितमानस गान के अंतर्गत आप सुनेंगे बालकांड, 7:10 पर गोल्ड सुप्रभात कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा, 7:30 कार्यक्रम होगा आज सवेरे। देश विदेश की खबरें आप सुन सकते हैं हिंदी में 8:00 और अंग्रेजी में 8:15। 8:30 उर्दू में समाचार होंगे।

8:45 पर आप सुनेंगे विशेष कार्यक्रम म्यूजिकल दिल लगी, जिसमें स्वास्थ्य, स्वच्छता, भोजन, रोड सेफ्टी जैसे विषयों पर बात होगी। प्रस्तुत करेंगी पूजा भारद्वाज। नौ बजकर 10 मिनट पर म्यूजिकल दिल लगी को आप फिर से सुन पाएंगे। कार्यक्रम को पेश करेंगी नीतू शर्मा।

0: सुबह 10:30 बजे दिल का मेल बॉक्स रिक्वेस्ट पर आधारित कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम को होस्ट करेंगी नीतू शर्मा। दिन में 11:10 पर तस्वीर कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सैर करवाएंगे तमिलनाडु में स्थित ऊटी शहर की। कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी नीतू शर्मा। दिन में 12:10 पर महिलाओं का अपना कार्यक्रम घर आंगन प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे वेदर वुमन अन्नामणि से मुलाकात। आध्यात्मिक यात्रा में आप करेंगे कैलाशा मंदिर की सैर। शादी का फैसला मजबूरी नहीं, सहमति जरूरी और वास्तविक नारीवाद क्या है जैसे विषयों पर जानकारी। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी मंजुला प्रसाद। तो ये थे FM गोल्ड पर प्रसारित होने वाले हमारे आज के कार्यक्रम। 100.1 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल। सुबह की 6 बजने को है। अब आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रबन्नन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले 2:00 PM मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व सरमा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें असम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिचालन सुविधा विधेयक 2026, असम जन विश्वास विधेयक 2026, असम पर्यटन विकास और पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और असम व्यापार सुगमता संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर

कोई भगवान के लिए सब कुछ छोड़ देता है और कोई भगवान पर सब कुछ छोड़ देता है। अर्पण सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। पूजा है आपके साथ, बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और साथियों को नमस्कार।

भाग्यशाली हैं। पशु ध्यान करके ईश्वर संपर्क नहीं कर सकता। आपके पास ईश्वर को खोजने की स्वतंत्रता है और आप उसका उपयोग नहीं करते।

तुलसी ममता राम सो, समता सब संसार, राग नरोष न दोष दुख, दास भय भवपार। तुलसी कहते हैं कि जिनकी श्री राम में ममता और सब संसार में समता है, जिनका किसी के प्रति राग द्वेष दोष और दुख का भाव नहीं है, श्री राम के ऐसे भक्त भवसागर से पार हो चुके हैं।

चाणक्य नीति के अनुसार अपने मन में जो भी करने का विचार हो उसे प्रकट ना करो, बल्कि विवेकपूर्ण परामर्श से उसे गुप्त रखो और उसे पूरा करने का दृढ़ निश्चय रखो।

संत रूमी ने कहा है कि अंत में मैंने अपने हृदय के कोने में दृष्टि डाली, देखता क्या हूं कि वो वहीं पर उपस्थित है। मैं दूसरे स्थानों में व्यर्थ भटकता फिरा।

दशरथ कुमारों की बारात कई दिनों पहले जनकपुर पहुंच चुकी है। योग लग्न देखकर राजा जनक की मंडली के लोग बारातियों को आमंत्रित करने जनवा से पहुंचे। गुरु वशिष्ठ से आज्ञा ले कुल की रीतियां संपन्न कर स्वयं अवध नरेश मुनियों तथा साधुओं को साथ लेकर चले। राजा दशरथ का भाग्य तथा वैभव देख ब्रह्मा सहित देवगण उनकी सराहना कर रहे हैं। शिव ब्रह्मा आदि देवताओं की टोलियां अपने अपने विमानों पर सवार होकर फूल बरसाती श्री राम का विवाह देखने चल पड़ी हैं। विवाह मंडप की अद्भुत रचना अलौकिक साज श्रृंगार तथा अयोध्या वासियों के सुंदर रूप के सामने देवता तथा देवांगनाएं मानो प्रभाहीन हो गई हैं। ब्रह्मा को विशेष आश्चर्य होता है क्योंकि वहां उस मंडप में उन्हें अपनी कोई रचना दिखाई नहीं देती। चकित देवताओं को भगवान शंकर सांत्वना देते हैं कि विचार कर देखो, ये सीता तथा अखिल ब्रह्मांडों के परमेश्वर साक्षात भगवान का शुभ विवाह है। प्रसन्न मन और पुलकित शरीर वाले राजा दशरथ के साथ ब्राह्मणों तथा साधु संतों की मंडली ऐसी शोभायमान है मानो समस्त सुख शरीर धारण करके उनकी सेवा कर रहे हैं। इसी प्रकार चारों कुमारों की शोभा निराली है, मानो अपने चार अवयवों के साथ संपूर्ण मोक्ष ने शरीर धारण कर लिया है।

0: प्रवाद वायुः च प्रचलति। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन विज्ञापितं यत् आगामिषु चतुर्षु दिनेषु गुजरात राज्यस्य कतिपय भागेषु हरियाणा पंजाब राजस्थानेषु च प्रावृत स्थितिः सर्वथा अनुकूला वर्तते। विभागेनाद्य छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राजस्थान कर्नाटक उत्तराखंड राज्येषु अतिवृष्टेः पूर्वानुमानं कृतम्। अपरतः आगामिषु द्वित्रिदिनेषु राष्ट्रीय राजधान्यां दिल्ल्यां उत्तर प्रदेशे पंजाबे चंडीगढ़ क्षेत्रे विकीर्ण रूपेण वृष्टिः संभाव्यते। विम्बल्डन टेनिस प्रतिस्पर्धायां गतरात्रौ सर्बिया देशस्य लब्ध प्रतिष्ठेन क्रीडकेन नोवाक जोकोविचेन रूस देशस्य रोमन सफ्यूलिनं पराजित्य पुरुषेकल क्रीडायाः प्रागुपान्त्य चक्रे स्थानं सुरक्षितम्। इतः परम् असौ फेलिक्स नगरे उत डेवी वोचेस इत्यनेन सह क्रीडां करिष्यति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रम्बनन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। जकार्ता में प्रधानमंत्री भारतवंशियों को भी संबोधित करेंगे। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि सत्र में सदस्य देश अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य हितधारक उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ भी शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास को बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125

आज देश याद कर रहा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को। आज ही के दिन 1901 में उनका जन्म हुआ था। वो एक महान शिक्षाविद, प्रखर राष्ट्रवादी और भारतीय जनसंघ के संस्थापक थे। वे अखंड भारत के प्रबल समर्थक थे। साथ ही आज पुण्यतिथि है बाबू जगजीवन राम की, जिन्हें प्यार से बाबूजी कहा जाता था। आज के दिन 1986 में उनका निधन हुआ था। 7:23 हो गए हैं। गोल्ड सुप्रभात में आइए अब सुनते हैं अगला गीत, फिल्म तेरी कसम से।

0: नमस्कार श्रोताओं, सुप्रभात। कुछ व्यक्तित्व समय की सीमाओं में नहीं बनते, उनके विचार और योगदान पीढ़ियों तक प्रेरणा का स्रोत बने रहते हैं। ऐसे ही प्रखर शिक्षाविद, दूरदर्शी चिंतक और राष्ट्र जीवन की एक प्रभावशाली विभूति थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती है। श्रोताओ, आपके सुबह को खास मनाने के लिए हाजिर है आपका पसंदीदा कार्यक्रम आज सवेरे। आज के कार्यक्रम में हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जीवन और उनके उल्लेखनीय योगदान पर चर्चा तो करेंगे ही, साथ ही अगले 30 मिनट में हम आपके लिए लेकर आएंगे देश विदेश की अहम खबरें, इतिहास के पन्ने से आज के दिन की झलक, कुछ प्रेरक व्यक्तित्वों की बातें, दिलचस्प जानकारियां और साथ ही सुनवाएंगे आपके मन पसंदीदा गीत। मैं हूँ वैष्णवी और मेरे साथ है मेरी सहयोगी नीना आरेकल। नमस्कार नीना।
1: हेलो वैष्णवी, एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स ट्यून्ड इन टू आकाशवाणी एफएम गोल्ड ऑन 100.1 मेगाहर्ट्ज एंड द आकाशवाणी नेटवर्क। वी ब्रिंग टू यू आवर डेली न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे, wherein वी गिव द लेटेस्ट इन नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज, मेट्रो सिटी अपडेट्स, एज वेल एज सम हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस डे, दैट इज 5th of July 2026। एंड वैष्णवी, यू वर स्पीकिंग अबाउट डॉक्टर मुखर्जी, एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू एड few more facts and information about Dr. Mukherjee, that he was a formidable orator and a respected opposition leader, earning the title the Lion of Parliament for his incisive debates on issues like Jammu and Kashmir issue, migration between Pakistan and India, foreign policy of India, preventive detention, electoral reforms, etc. His unwavering commitment to Indian unity was exemplified by his fight for the integration of Jammu and Kashmir. His declaration, "I will get you the Indian Constitution or lay down my life for it," epitomized his dedication. Tragically, he died in 1953 while under detention in Kashmir, a loss mourned across political lines. Dr. Shyama Prasad Mukherjee remains an enduring symbol of patriotism and selfless service to India, remembered for his visionary leadership and unwavering dedication to national unity. And now Vaishnavi, let's begin with the news headlines.
0: जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे।
1: India will chair the 9th session of the Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection Law and Policy in Geneva, Switzerland today. The 3-day session being organized by the United Nations Trade and Development, UNSCTAD, will continue till Wednesday. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that the session will bring together member states, international organizations, consumer protection authorities, academia and other stakeholders to deliberate on emerging issues in consumer protection law and policy. One of the major highlights of the session will be the launch of United Nations Principles for Consumer Product Safety, which were adopted by the United Nations General Assembly in December 2025. India will host the 2-day BRICS Women Working Group meeting under its BRICS chairship beginning today in Kochi, Kerala. Ministry of Women

0: and Child Development said that senior government officials from BRICS member countries will come together to deliberate on key issues relating to women's empowerment across all sectors and women-led development while advancing cooperation across shared priorities. The Women Working Group Committee meeting will provide an opportunity for member countries to deliberate and build consensus that advance women-led development. The BRICS Women Track has focused on four priority areas, which includes women in governance and leadership, women's digital and financial inclusion, women's entrepreneurship and skill development, and women's role in climate action, food security and nutrition.
1: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक राम मंदिर परिसर में होगी। और नीना, खेलों में आज आपके पास क्या है?
0: वैष्णवी, टुडे वी हैव न्यूज फ्रॉम वर्ल्ड कप फुटबॉल। Brazil's veteran player Neymar Jr. has announced his retirement from international football after the five-time world champion suffered a stunning 2-1 defeat to Norway in FIFA World Cup 2026 round of 16 last night. He finished his international career as the all-time leading scorer for Brazil. His retirement brings to an end one of the most celebrated international careers in Brazilian football. For Brazil, the defeat marked a seventh consecutive World Cup knockout loss to European opposition and their earliest World Cup exit since 1990, while Neymar's emotional farewell closed the chapter on an era that defined Brazilian football for more than a decade.
1: और अब क्रिकेट की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। नीना, अब चलते हैं देश के प्रमुख शहरों की सैर पर, जहां आज दिन भर कई अहम गतिविधियां होने वाली हैं। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से। दिल्ली सरकार ने राजधानी के सरकारी स्कूलों को सुरक्षित, स्वच्छ, आधुनिक और प्रेरणादायक शिक्षण परिसर के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से मिशन कायाकल्प की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस अभियान के तहत दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्वी दिल्ली के कई सरकारी स्कूलों में लाखों रुपए की लागत से आधारभूत सुविधाओं का विकास किया गया है। वहीं राजधानी के कई इलाकों में आज पेयजल आपूर्ति प्रभावित रहेगी। दिल्ली जल बोर्ड ने जानकारी दी है कि सोनिया विहार जल शोधन संयंत्र की साउथ दिल्ली मेन पाइपलाइन के रखरखाव कार्य के कारण आज कई इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित रहेगी। जल बोर्ड ने बताया है कि इन इलाकों में सुबह 10 बजे से अगले 8 घंटे तक पानी की आपूर्ति प्रभावित रहेगी।
0: न्यूज फ्रॉम चेन्नई। IIT Madras Pravartak Technologies Foundation aims to train 10 lakh school and college students in the next 3 years in artificial intelligence, from foundational concepts to advanced tools that would prepare learners for new roles through online at its Center for Human-Centric AI. IITM Pravartak is developing AI systems that augment human expertise rather than replace it. The initiatives of the center include sovereign AI language models for national audit institutions, AI-assisted neonatal congenital heart diseases, screening for rural healthcare, defense procurement intelligence, prison mental health support, heritage restoration and immersive technologies for preserving India's civilizational legacy. Balamurli Shankar, Chief Knowledge Officer, IIT Madras Pravartak Technologies Foundation, said that currently about 1.5 lakh students, ranging from college students to rural school teachers, aspiring engineers, are studying AI-related certificate courses.
1: Or चेन्नई से अब चलते हैं मुंबई की ओर। महाराष्ट्र सेवा संघ की ओर से 11 और 12 जुलाई को मुंबई के मुलुंड में 23वें गिरिमित्र सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। हर वर्ष आयोजित होने वाला ये सम्मेलन पर्वतारोहियों का एक प्रमुख वार्षिक आयोजन है। इस वर्ष सम्मेलन की थीम है रणभूमि पर पर्वतारोहण। वहीं मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के भूमिगत हिस्से के निर्माण में कल एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुई। भारत की सबसे बड़ी रेल टनल बोरिंग मशीन TBM ने विखरोली शाफ्ट से सुरंग की खुदाई का काम शुरू कर दिया है। ये मशीन भूमिगत सुरंग बनाते हुए बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में निर्माणाधीन मुंबई बुलेट ट्रेन स्टेशन तक पहुंचेगी।
0: News from Bengaluru, Karnataka Governor Thavar Chand Gehlot has invited social institutions to work for the welfare of society, contribute in nation building and preserve cultural values. Addressing the National Symposium of All India Jangid Brahmins Mahasabha in Bengaluru yesterday, he called upon them to create awareness about social values and importance of nation building. He emphasized that the soul of social organizations lies in the welfare of society and nation. He acknowledged that the Jangid Brahmins community has made invaluable contributions in the areas of handicrafts, architecture, sculpture, carving and cultural heritage. Some more from Bengaluru. The Bangalore Electricity Supply Company, BESCOM, has made it clear that tenant beneficiaries receiving free electricity under Gruha Jyoti Guarantee Scheme need not to worry about the ongoing verification drive to identify consumers not eligible to reap the benefit of the free electricity scheme. In a media release, the agency has clarified that the benefits will not be withdrawn just for the reason that the Aadhaar details of the previous tenants are linked to the electricity bills. And now, what do we have from Kolkata, Vaishnavi?
1: डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में उनकी 125वीं जयंती के दो वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसमें शामिल होंगे। आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार श्री शाह न्यू टाउन स्थित इको पार्क में डॉक्टर मुखर्जी की 125 फुट ऊंची प्रतिमा के निर्माण के लिए भूमि पूजन करेंगे। इसके बाद शाम में भवानीपुर स्थित उनके पैतृक निवास पर प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे।
0: News from Hyderabad. The Hyderabad Traffic Police have launched a special enforcement drive against vehicles using fake, tampered, altered or unauthorized registration number plates following a surge in public complaints. Authorities warned that such violations are illegal and will attract stringent action under the Motor Vehicles Act and other applicable laws. During the opening week of the ongoing crackdown, the police registered 5 criminal cases against individuals utilizing fraudulent registration plates to conceal vehicle identities, evade traffic enforcement and violate the law. Several vehicles involved in these offences were also seized. The cases were registered across multiple jurisdictions. Joint Commissioner of Police Traffic for Hyderabad City, D. Joel Davis, reminded vehicle owners that only government-approved high-security registration plates, HSRP, are legally valid. Number plates featuring altered fonts, missing digits, decorative designs, stickers, or any unauthorized modifications remain strictly prohibited.
1: नीना, देश भर में मॉनसून ने दस्तक दे दी है और अब ये धीरे धीरे कई राज्यों में आगे बढ़ रहा है। आज दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में भी मौसम सुहाना रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार तीनों शहरों में दिन भर आसमान में बादल छाए रह सकते हैं और हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार हैं। तो श्रोताओं, अगर आप घर से बाहर निकलने की योजना बना रहे हैं तो अपने साथ छाता या रेनकोट ले जाना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप घर पर हैं तो चाय की चुस्कियों के साथ इस खूबसूरत बारिश के मौसम का आनंद उठाइए। अब बात करते हैं तापमान की। तो दिल्ली में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। वहीं मुंबई में न्यूनतम तापमान 22 डिग्री और अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और कोलकाता में अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है।
0: And Vaishnavi, you were speaking about the weather. Yes, mm-hmm. We hope and we pray that we get rains every day and we get the monsoon. But also we pray for the safety of the people and they maintain their precautions during this season. Now.

0: भारत की पहली महिला बैरिस्टर के रूप में पहचाने जाने वाली कार्नेलिया सोराब जी की भी आज पुण्यतिथि है। उन्होंने एक ऐसे दौर में कानून की पढ़ाई की और वकालत की राह चुनी जब महिलाओं के लिए ये क्षेत्र लगभग बंद था। उन्होंने सैकड़ों महिलाओं और अनाथों को कानूनी मदद पहुंचाई और महिलाओं के लिए वकालत का पेशा खोलने की मांग उठाई।
1: Today we fondly remember Guy de Maupassant, the French maestro of the short story. His tales, often set against the backdrop of Franco-Prussian War, reveal the futility of conflict and the fragility of human destiny. Imagine a storyteller who could distill the chaos of life into just a few pages. That was Maupassant. With over 300 short stories, 6 novels and travelogues, he gave us masterpieces like Boule de Suif, a tale that still resonates with irony and truth. His style was lean, sharp and unforgettable, like lightning captured in ink. Even his experiments with hallucinogens found their way into writing, making his work a fascinating study for neuroscientists today. Maupassant wasn't just a writer, he was a mirror to human nature, reflecting its beauty and its shadows with equal. Here's a dialogue from his story, The Necklace, which was also a part of CBSE NCERT English books for many years.
2: Wait, what about your friend, Madame Forestier? She has everything. She'd lend you something, wouldn't she?
3: Mathilde, what a lovely surprise. Come in.
4: Sien, forgive me for arriving unannounced. I need to ask you a small favor.
3: Of course. Whatever you need. Now tell me, what's this about?
4: Actually, we've been invited to the ministerial ball. It's only a few days away. But I have no jewels to wear. Not a single piece. Sien, do you have anything I could borrow just for the night?
3: Of course I have something. Wait right there. I'll get everything.
0: हिंदी सिनेमा को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाने वाले फिल्मकार चेतन आनंद को भी आज याद किया जा रहा है। आज उनकी पुण्यतिथि है। उनकी फिल्म नीचा नगर ने कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता था, जो भारतीय सिनेमा के लिए बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने हकीकत, हीर रांझा, टैक्सी ड्राइवर और कुदरत जैसे यादगार फिल्में बनाई थी। चेतन आनंद ही वे महान निर्देशक थे जिन्होंने सुपरस्टार राजेश खन्ना को पहला बड़ा ब्रेक दिया था। आइए अब आपको उनकी फिल्म हकीकत का गीत मस्ती में छेड़ के तराना सुनाते हैं।

0: Today is the birthday of Sylvester Stallone. Born in 1946, Stallone's journey began with years of struggle, bit parts, extra roles, and endless rejection. Yet, like the characters he would one day embody, he refused to quit. Then came 1976, and with it, Rocky, a film he wrote, starred in, and poured his soul into. Rocky wasn't just a boxer. He was the underdog spirit of America, battling impossible odds and inspiring millions. The film catapulted Stallone into stardom, earning him 2 Academy Award nominations, Best Actor and Best Screenplay, a rare feat shared only with giants like Chaplin and Wells. Stallone himself was honored by the International Boxing Hall of Fame, a testament to the cultural impact of his creation. From grit to glory, Stallone's career is a masterclass in resilience. He showed the world that sometimes the fight outside the ring is the one that truly defines a champion. Dear listeners, let's listen to this inspirational piece from Rocky.
1: Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now, if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you got to be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you want to be because of him or her or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that.
2: भारत के जाने माने उद्योगपति धीरू भाई अंबानी को भी आज हम याद कर रहे हैं। गुजरात के एक छोटे से गांव में जन्मे धीरू भाई ने शुरुआती दिनों में यमन के अदन शहर में एक पेट्रोल पंप पर काम किया और वहीं से व्यापार की बारीकियां सीखी। भारत लौटकर उन्होंने मसालों और कपड़े के छोटे कारोबार से शुरुआत की और आगे चलकर रिलायंस इंडस्ट्रीज की नींव रखी, जिसे उन्होंने अपने दम पर देश के सबसे बड़े औद्योगिक घरानों में शामिल कराया। उन्हें आम लोगों को शेयर बाजार से जोड़ने का भी श्रेय दिया जाता है और वर्ष 2016 में भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती है। वे मात्र 33 वर्ष की आयु में कलकत्ता विश्वविद्यालय के सबसे कम उम्र के कुलपति बने, जो उस दौर में एक असाधारण उपलब्धि मानी गई। शिक्षा और सार्वजनिक जीवन दोनों क्षेत्रों में उनके योगदान ने उन्हें विशिष्ट पहचान दिलाई। डॉक्टर मुखर्जी राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रबल समर्थक थे। उनका स्पष्ट मत था कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और देश की एकता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी सोच को उन्होंने अपने प्रसिद्ध नारे एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे के माध्यम से पूरे देश के सामने रखा, जो आज भी व्यापक रूप से उद्धृत किया जाता है।
0: Today is the birthday of Ranveer Singh. Ranveer burst into the scene with band Baja Barat in 2010, a film that not only won him the Filmfare Award for Best Male Debut, but also announced the arrival of powerhouse performer. His collaborations with Sanjay Leela Bhansali gave us unforgettable portrayals. Ranveer Singh is more than a star. He's a phenomenon. Here's a song from his movie Dhurandhar.

0: song from the movie.
1: नौराई माची लाडाची लाडाची ग अबड़हिला चंद्राची चंद्राची ग नौराई माची
2: श्रोताओं, इसी के साथ आज सवेरे में आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि हमारी छोटी सी सुबह की मुलाकात आपके दिन की शुरुआत को और बेहतर बना पाई होगी।
0: थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे। नमस्कार।

0: एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
3: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और जकार्ता के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
2: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
4: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन

0: करेंगे। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
2: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नीति विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। यह बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री स्तरीय सम्मेलन की आधारभूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: भारत असम के गुवाहाटी में दो दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
3: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइकोएक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
4: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सोसाइटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और अनुमोदन शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
5: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
6: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गईं। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
7: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉ. मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज होगी बैठक। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने फुटबॉल से लिया संन्यास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi to embark on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. India to chair UNCTAD's 9th session of Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection in Geneva. India to host 2-day BRICS Women Working Group meeting at Kochi in Kerala beginning today. Sri Ram Janmabhoomi Tirth Kshetra Trust convenes meeting at its members in Ayodhya this afternoon. Nation pays homage to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his birth anniversary today. Prime Minister describes him as a timeless example of courage, nationalism and selfless service. And Neymar Jr. announces retirement from international football after 5-time world champion Brazil suffer stunning 2-1 defeat against Norway in FIFA World Cup. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will be on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand beginning today. In the first leg of his 3-nation tour, he will reach Indonesia this evening on a 2-day visit. This will be Mr. Modi's 4th visit to Indonesia and his first bilateral visit since the elevation of India-Indonesia ties to the level of comprehensive strategic partnership in May 2018. During the visit, the Prime Minister will hold bilateral discussions with Indonesian President Prabowo Subianto tomorrow and review the progress made in the partnership. Our correspondent has filed this report.
8: The entire island nation is buzzing with excitement and optimism as the Prime Minister Modi arrives here this evening for a 2-day state visit. Mr. Prabowo Subianto and Prime Minister Mr. Narendra Modi are expected to discuss on strengthening the comprehensive strategic partnership with a focus on defense cooperation, trade and investment, food and energy security and cultural collaboration. The highlight of the Jakarta's program will be Prime Minister Modi's address to the Indian diaspora, which is drawing excitement across the country. Communities from Bali, Medan, Semarang, Surabaya and Jakarta are preparing a grand welcome complete with cultural performances. Thousands of Indian nationals and people of Indian origin are expected to gather in the venue, describing the visit as a matter of pride and an opportunity to strengthen their connection with the motherland. Shundip Andashgupta, Jakarta, Indonesia.
2: In the second leg of his tour, Mr. Modi will reach Melbourne on 8th of this month on a 3-day visit, where he will participate in the 3rd India-Australia Annual Summit with Australian Prime Minister Anthony Albanese. On the last leg of his visit, Mr. Modi will be in New Zealand from 10th to 11th July. He will hold talks with his New Zealand counterpart, Christopher Luxon. India will chair the 9th session of the Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection Law and Policy in Geneva, Switzerland today. Our correspondent reports that the 3-day session being organized by the UNCTAD, United Nations Trade and Development, will continue till Wednesday.
9: The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that the session will bring together member states, international organizations, consumer protection authorities, academia and other stakeholders to deliberate on emerging issues in consumer protection law and policy. The Intergovernmental Group of Experts is the principal intergovernmental platform for cooperation and dialogue on consumer protection law and policy. Secretary Department of Consumer Affairs, Nidhi Khare will chair the session. She will preside over the 3-day deliberations and guide discussions among member states on key global consumer protection priorities. Nitika Gupta, Akashvani News, Delhi.
2: India will host a two-day BRICS Women Working Group meeting under its BRICS chairship, beginning today in Kochi, Kerala. Ministry of Women and Child Development said that senior government officials from BRICS member countries will come together to deliberate on key issues relating to women's empowerment across all sectors and women-led development while advancing cooperation across shared priorities. The Women Working Group meeting will provide an

0: आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। भारत जिनेवा में UNCTAD के सारफीन के तहफ़ से मुतालिक माहरीन के बैन हुकूमती ग्रुप के नवे इजलास की सदारत करेगा। भारत आज से केरलम के शहर कोची में ब्रिक्स खवातीन के वर्किंग ग्रुप की 2 रोजा मीटिंग की मेजबानी करेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज दोपहर अयोध्या में अपने अरकान की मीटिंग तलब की है। मुल्क आज भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। वजीर आजम ने उन्हें हौसले, वतन परस्ती और बेलौस खिदमत की एक लाफानी मिसाल करार दिया है। और नेमार जूनियर ने फीफा आलमी कप में 5 बार के आलमी चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे के हाथों 2-1 से शिकस्त के बाद बैन अलाक्वामी फुटबॉल से रिटायर होने का ऐलान किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के आज अपने 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। 3 मुल्कों के इस दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी आज शाम 2 दिन के लिए इंडोनेशिया पहुंचेंगे। जनाब मोदी का इंडोनेशिया का ये 4था दौरा है और मई 2018 में जब से भारत और इंडोनेशिया के ताल्लुकात जामे दिफाई शराकतदारी की सतह पर लाए गए हैं, तब से ये उनका पहला दोतरफा दौरा है। अपने दौरे में वजीर आजम कल इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो से मुलाकात करेंगे और शराकतदारी में अब तक की पेशरफ्त का जायजा लेंगे। हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट।
1: उम्मीद है कि जनाब प्राबो सुबियांतो और वजीर आजम नरेंद्र मोदी जामे दिफाई शराकतदारी को मुस्तहकम बनाने पर बातचीत करेंगे, जिसमें दिफा से मुतालिक ताउन, तजारत और सरमायाकारी, खुराक और तवानाई की यकीनी फराहमी, नीज सकाफती इश्तराक पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। जकार्ता के प्रोग्राम की खास बात वजीर आजम नरेंद्र मोदी का भारतीय बिरादरी से खिताब होगा, जिसमें मुल्क के बाली, मैदान, सीमांग और जकार्ता के लोग शामिल होंगे। ये लोग शानदार खैर मकदम की तैयारी कर रहे हैं, जिसके दौरान सकाफती प्रोग्राम मुनाकिद किए जाएंगे। इस मौके पर हज़ारों भारतीय शहरी और भारत नजाद लोग यकजा होंगे और अपने मादरे वतन से अपने रबते को मुस्तहकम करने के इस मौके पर फख्र का इजहार करेंगे। 8 जुलाई को जनाब मोदी तारीखी परम्बरन मंदिर के दर्शन के लिए योग्य कीर्ता जाएंगे। भारत यूनेस्को के आलमी विरासती मकाम की बहाली की कोशिशें करता रहा है, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे तहजीबी रिश्तों की अहमियत जाहिर होती है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: अपने दौरे के दूसरे मरहले में वजीर आजम इस माह की 8 तारीख को 3 रोजा दौरे पर मेलबर्न पहुंचेंगे। यहाँ वो ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बनीज के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया तीसरी सालाना समिट में शिरकत करेंगे। अपने 3 मुल्कों के दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले में जनाब मोदी इस माह की 10 और 11 तारीख को न्यूजीलैंड जाएंगे। वजीर आजम मोदी न्यूजीलैंड के अपने हमनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बातचीत करेंगे। पिछले 40 साल में किसी भारतीय वजीर आजम का न्यूजीलैंड का ये पहला दौरा होगा। सारफीन उमूर, खुराक और तकसीम आम्मा की वजारत ने कहा है कि इस इजलास में रुकन ममालिक, बैन अलाक्वामी तंजीमें, सारफीन तहफुजाती हुकाम, तालीमी इदारे और दीगर मुतालिका फरीकैन यकजा होंगे और सारफीन के तहफुज से मुतालिक कानून और पॉलिसी के सिलसिले में उभरने वाले मामलात पर बातचीत करेंगे। माहरीन का बैन हुकूमती ग्रुप सारफीन के तहफुज से मुतालिक कानून और पॉलिसी पर तआवुन और मुजाकरात के लिए आला बैन हुकूमती प्लेटफॉर्म है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सारिफिन उमूर के महकमे की सेक्रेटरी निधि खरे इस इजलास की सदर नशी होंगी। वो सारिफिन के तहफ़ से मुतालिक बुनियादी आलमी तरजीहात के बारे में 3 रोज़ा बातचीत की सदारत करेंगी। इजलास की अहम बातों में सारिफिन के तहफ़ से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों का आगाज शामिल है, जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में दिसंबर 2025 में मंजूर किया गया था। भारत आला सतह के मुज़ाकरात में भी शिरकत करेगा, जिसका उन्वान है उसूलों की अहमियत क्यों है। नीतिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: ब्रिक्स मुल्कों की मुनशियात की रोकथाम से मुतालिक एजेंसियों के सरबराहान का इजलास आज आसाम के शहर गुवाहाटी में शुरू होगा। ये 2 रोजा इजलास वजारत दाखिला के तहत मुनशियात की रोकथाम से मुतालिक ब्यूरो NCB के जेर एहतमाम मुनक़द किया जा रहा है। इस इजलास में ब्रिक्स रुकन मुल्कों की इंसदाद मुनशियात एजेंसी

0: के सरबराहान और सीनियर हुक्काम शिरकत करेंगे ताकि मनुष्यात की स्मगलिंग और नशा आवर अशिया के गलत इस्तेमाल के खिलाफ तआवुन को मजीद मजबूत बनाया जा सके। एक रिपोर्ट।
1: गुवाहाटी में होने वाले इस इजलास में सिंथेटिक्स मनुष्यात के गैर कानूनी इस्तेमाल और स्मगलिंग, इंटेलिजेंस मालूमात के तबादले, ऑपरेशनल राबताकारी, सलाहियत साजी और इदारा जाती तआवुन को फरोग देने पर खसूसी तवज्जो मरकूज की जाएगी। मंदूबीन में नई नफसियाती असरात रखने वाले मनुष्यात, जिनमें डार्क नेट के जरिए मनुष्यात की स्मगलिंग, क्रिप्टो करेंसी से मुंसलिक माली लेन देन और इसके गलत इस्तेमाल जैसे उभरते हुए चैलेंजेस पर भी तबादले ख्याल किया जाएगा। इस इजलास में भारत मनुष्यात के इस्तेमाल और स्मगलिंग के खिलाफ अपनी कोशिशों को भी उजागर करेगा। इजलास के दौरान रुकन ममालिक मनुष्यात से मुतालिक बदलते हुए खतरात से निपटने के लिए मुश्तरक हिकमत अमली पर गौर करेंगे और बैन अक्वामी तआवुन को मजीद मजबूत बनाने के इकदाम पर तबादले ख्याल करेंगे। राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: भारत आसाम के शहर गुवाहाटी में आज नशीली अशिया की रोकथाम से मुतालिक एजेंसियों के ब्रिक्स सरबराहान की दो रोजा मीटिंग की मेजबानी करेगा। वजारत दाखिला ने कहा है कि मीटिंग में ब्रिक्स रुकन मुल्कों की इन एजेंसियों के सरबराहान और सीनियर अफसरान शिरकत करेंगे, जिसका मकसद नशीली अशिया पर काबू पाने वाली एजेंसियों के माबैन इदारा जाती तसलसल को मुस्तहकम बनाना और कामकाज के सिलसिले में किए जाने वाले तआवुन में मजीद गहराई लाना है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज अपने अरकान की मीटिंग बुलाई, जिसका मकसद बहुत से अहम इंतजामी और माली मामलात पर बातचीत करना है। इन मामलात में खसूसी तफ्तीशी टीम SIT की तहकीकात भी शामिल है। ये तहकीकात ट्रस्ट को मौसूला अतियात की गिनती के बारे में की जा रही है। इससे पहले यह मीटिंग मनीराम छावनी में दोपहर तकरीबन 3 बजे होना थी, लेकिन मीटिंग की जगह बदल दी गई है और अब यह मीटिंग राम मंदिर के अहाते में मुनक्कद होगी। तफसील हमारे नमनिगार से।
2: 28 जून 2026 को जारी किए गए एक सरकारी नोटिस के मुताबिक मीटिंग के एजेंडे में जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्रा की तरफ से दिए गए इस्तीफों पर गौर करना भी शामिल है। अरकान को ट्रस्ट के अतिया बक्सों के जरिए मौसूल अतियात की गिनती के बारे में SIT की उबूरी रिपोर्ट के बारे में भी बताया जाएगा। इस मीटिंग में राम मंदिर के मुस्तकबिल के मैनेजमेंट से मुतालिक इंतजाम पर भी बातचीत की जाएगी। एजेंडे में एक अहम मामला उस आमदनी को पेश करना भी है, जिसका अभी तक कोई हिसाब किताब नहीं किया गया है, और इखराजात के बारे में बयान, बैलेंस शीट और माली साल 2025-26 से मुतालिक दीगर माली दस्तावेजात की मंजूरी भी शामिल है। नोटिस में चेयरमैन की इजाज़त से दीगर मामलात पर भी बातचीत की जाएगी। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: मुल्क आज भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। इस मौके पर वजारत सकाफत मगरबी बंगाल हुकूमत के तआवुन से कोलकाता में एक प्रोग्राम का इनेकाद करेगी। ये प्रोग्राम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें यौम पैदाइश की 2 साल तक जारी रहने वाली सरकारी तकरीबात का हिस्सा है, जिसका ऐलान पिछले साल वजारत सकाफत ने किया था। प्रोग्राम की सदारत मरकजी वजीर दाखला अमित शाह करेंगे, जबकि मरकजी वजीर सकाफत गजेंद्र सिंह शेखावत और मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी भी इसमें शिरकत करेंगे। तफसील हमारे नमानिकार से।
1: मरकजी वजीर दाखला अमित शाह आज दोपहर कोलकाता पहुंचेंगे, जहां वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें यौम पैदाइश की तकरीबात में शिरकत करेंगे। जनाब शाह सबसे पहले न्यू टाउन के इको पार्क जाएंगे, जहां वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125 फीट बुलंद मुजस्मे की संगे बुनियाद की तकरीब में शिरकत करेंगे। इसके बाद दोपहर में जनाब शाह भवानीपुर में वाक़ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आबाई रिहाइश गाह पर मुनक़दा तकरीब में उनके मुजस्मे पर गुलाह अकीदत पेश करेंगे। शाम के वक्त मरकजी वजीर दाखिला बीसवा बांग्ला मेला प्रांगण में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें यौम पैदाइश की तकरीबात में शिरकत करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125वें यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया है। जनाब मोदी ने उन्हें जुरत, हुब्बुल वतनी और बेलौस खिदमत की लाजवाल मिसाल करार दिया। वजीर आजम ने अपने एक मजमून में लिखा है कि मुल्क की तकसीम के दौरान डॉक्टर मुखर्जी ने मगरबी बंगाल को भारत का अटूट हिस्सा बरकरार रखने के लिए मुसलसल काम किया और बाद में उन्होंने अपनी जिंदगी जम्मू कश्मीर के मसले के लिए वक्फ कर दी। उन्होंने कहा कि 2019 में आईन की दफा 370 और 35A की मनसूखी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कुर्बानी को पेश किया जाने वाला सबसे मौजू खिराज अकीदत है। मुंबई और महाराष्ट्र के साहिली इलाकों

0: में लगातार मूसलाधार बारिश और तेज हवाओं ने मामूल की जिंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया है। रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जहां बड़ी नदियों का पानी खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। रायगढ़ और रत्नागिरी जिले में शदीद बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, जबकि मुंबई और नवी मुंबई में कई इमारतों के गिर जाने के वाकये में कई अफराद हलाक हो गए। एक रिपोर्ट।
1: भारतीय महकमे मौसमियात ने आज मुंबई, थाने, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश की पेशगोई करते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने रायगढ़ जिले के लिए इंतहाई शदीद बारिश के खदशे के पेश नज़र रेड अलर्ट जारी किया है। एहतियाती तदाबीर के तौर पर साहिली जिलों और पुणे के तमाम सरकारी, म्यूनसिपल और प्राइवेट स्कूलों और कॉलेजों को आज बंद रखने का फैसला किया गया है। संगीता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: ब्राज़ील के तजर्बेकार फुटबॉलर नेमार जूनियर ने बैन अल-अक़वामी फुटबॉल से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। ये ऐलान ऐसे वक्त किया गया है जब 5 बार की आलमी चैंपियन ब्राज़ील की टीम फीफा वर्ल्ड कप 2026 के प्री क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे से 2-1 से हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। 34 साल नेमार ने ब्राज़ील की जानिब से सबसे ज्यादा बैन अल-अक़वामी गोल करने वाले खिलाड़ी के तौर पर अपने करियर का इख्तिताम किया। ब्राज़ील की 6ठी मरतबा वर्ल्ड कप जीतने की उम्मीद इस वक्त खत्म हो गई जब नॉर्वे के अर्लिंग हालांड ने मैच के आखिरी लम्हात में 2 गोल किए। नेमार ने इजाफी वक्त में पेनल्टी के जरिए 1 गोल जरूर किया, लेकिन वो शिकस्त का फर्क कम करने के सिवा कुछ न कर सके। नेमार के रिटायरमेंट के साथ ब्राज़ील की फुटबॉल के एक शानदार बैन अल-अक़वामी दौर का इख्तिताम हो गया। ब्राज़ील के लिए यह मुसलसल 7वां मौका था जब उसे वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले में किसी यूरोपीय टीम के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी के जरिए शहरियों को बाइख्तियार बनाए जाने के मौजू पर एक तफसीली मुजाकरा नशर करेगा। ये मुजाकरा साइबर सिक्योरिटी के माहिर गुलशन राय के साथ किया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान सामीन इस मौजू पर अपने सवालात इन टेलीफोन नंबर पर पूछ सकते हैं 0112342100 और 0112331444। इसके अलावा आप अपने सवालात 9289094044 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं या #AskEIR के साथ एक्स पर भी भेज सकते हैं। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाई होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने मुल्क में एलएनजी सप्लाई में बेहतरी और हुकूमत का इमरजेंसी गैस रेगुलेशन वापस लेने के फैसले को सफ़े अव्वल पर शाई करते हुए लिखा है कि मगरबी एशिया में सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आने के बाद कुदरती गैस सप्लाई पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर ए जयशंकर मगरबी एशिया के दौरे पर तवानाई, तजारत और सरमायाकारी और सिक्योरिटी समेत कई अहम उमूर पर करेंगे तबादले ख्याल। इस खबर को आज के अखबारों ने खसूसियत के साथ जगह दी है। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है जिनेवा में मसनूई ज़हानत AI से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी मुकालमे में भारतीय वफद की क़यादत वज़ीर ममलकत बराए ख़ारजा कीर्ति वर्धन करेंगे। हुकूमत ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर बच्चों के जिनसी इस्तेहसाल और नाज़ेबा सलूक से मुतालिक मवाद पेश किए जाने के मामले में मेटा को सख्त नोटिस जारी करते हुए 7 दिन के अंदर तफसीली जवाब तलब किया है। वजारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इतलाती टेक्नोलॉजी के इस बयान को अखबारों ने अहमियत के साथ जगह दी है।
0: और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने 6 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। भारत जिनेवा में UNCTAD के सारफीन के तहफ़ुज़ से मुतालिक माहरीन की बैन हुकूमत ग्रुप के नवे इजलास की सदारत करेगा। भारत आज से केरलम के शहर कोची में ब्रिक्स खवातीन के वर्किंग ग्रुप की 2 रोज़ा मीटिंग की मेज़बानी करेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज दोपहर अयोध्या में अपने अरकान की मीटिंग तलब की है। मुल्क आज भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। वजीर आजम ने उन्हें हौसले, वतन परस्ती और बेलौस खिदमत की एक लाफानी मिसाल करार दिया है। और नेमार जूनियर ने फीफा आलमी कप में 5 बार के आलमी चैंपियन ब्राज़ील की नॉर्वे के हाथों 2-1 से शिकस्त के बाद बैन अल-अक़वामी फुटबॉल से रिटायर होने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म।

8:46 और 6 सेकंड म्यूजिकल दिल लगी सुन रहे हैं आप आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। पूजा है आपके साथ, नमस्कार।

इन दिनों हम सभी उमस भरी गर्मी से जूझ रहे हैं और मौसम का ये मिजाज डिहाइड्रेशन का खतरा बढ़ा रहा है। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए छोटी छोटी बातें हैं जो आप ध्यान में रख सकते हैं कि आमतौर पर 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पिएं, और अगर बाहर ज़्यादा रहते हैं और फिजिकल काम करते हैं तो पानी की मात्रा को और बढ़ा सकते हैं। नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ जैसी चीज़ें शरीर को हाइड्रेट रखती हैं, तो इनका सेवन थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। साथ ही डिहाइड्रेशन से बचाव के लिए ओआरएस का घोल जरूर पिएं। अगर आपको जरा भी लग रहा है कि आपके शरीर में पानी की कमी हो रही है या थोड़ा सा आप थकावट ज्यादा महसूस कर रहे हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता रहेगी। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क को मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
1: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइकोएक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ये कार्यक्रम डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने कालेख में कहा है कि डॉ. मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और उसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। गृहमंत्री अमित शाह ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉ. मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने कहा कि डॉ. मुखर्जी ने राष्ट्र सर्वोपरि के आदर्श को जीवन का मार्गदर्शक सिद्धांत बनाया। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात 9 बजे से 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेमार जूनियर हमेशा से ब्राजील के प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 101.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू हाजिर है लेकर म्यूजिकल दिल लगी। म्यूजिकल दिल लगी जिसमें बहुत सारा म्यूजिक, बहुत ही प्यारा म्यूजिक आप सुनते हैं और हम बहुत सारी बातें करते हैं और बातों बातों में ना बहुत सारी बातें ऐसी हो जाती हैं जो कि कभी कभी इत्तफाक लगने लगता है। ऐसा लगता है ना आप किसी से मिले और बस बातें शुरू हो गई और उसके बाद न जाने कहां से कौन सा पुराना कनेक्शन या कोई ऐसा कनेक्शन जो आपको दो लोगों को एक साथ जोड़ देता है, होता है ना ऐसा? बिल्कुल ऐसा ही इस गाने में भी है। तो चलिए इस गाने को सुनते हैं और फिर लौट कर आते हैं।
1: छोटी सी मुलाकात प्यार बन गई,

हम सबको ना जब जानवर दिखते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिन्हें एक जानवर को पालने का शौक भी है, उनको लगता है कि वो सबसे अच्छे दोस्त माने जाते हैं और उन्हें खुद को भी लगता है, इतना प्यार करते हैं कुछ लोग जानवरों से। लेकिन आपको पता होगा कि रेबीज, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ये वो बीमारियां हैं जो जानवरों से इंसानों में फैलती हैं, और इन्हें जूनोसिस कहा जाता है। इन्हीं बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 6 जुलाई को मनाया जाता है विश्व जूनोसिस दिवस। ये दिन हमें साफ सफाई, पशुओं की सही देखभाल और समय पर उनके टीकाकरण की याद दिलाता है। इंसान, पशु और पर्यावरण तीनों एक दूसरे से ना जुड़े हुए हैं, और एक स्वस्थ समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम आपस में सामंजस्य बनाएं और अपने स्वास्थ्य के प्रति, पशुओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हों। ये उन लोगों के लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है जिनके घरों में पालतू जानवर हैं, क्योंकि रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि पालतू जानवरों से बच्चों में अस्थमा का खतरा बढ़ने की संभावना होती है। तो फिर अपने पेट्स का भी ध्यान रखिए, अपना भी, पेट्स को प्यार करिए लेकिन उनके साथ उनकी देखभाल भी ठीक से कीजिए।

प्यार जो है वो कहना बहुत आसान है, लेकिन असल में क्या हम प्यार करते हैं अपने पर्यावरण से, अपने आप से? क्योंकि अगर हम अपने आप से प्यार करते हैं तो अपने पर्यावरण से भी प्यार करेंगे, उन पेड़ पौधों से भी प्यार करेंगे, क्योंकि वही तो है जो हमें जीवन देते हैं, हमें सांसें दे रहे हैं। इतना अच्छा जब आप एक लंबी सांस लेते हैं ना और एक फ्रेश हवा आपके अंदर जाती है तो आपको महसूस होता है कि सच में ये है वो जिसकी हमें तलाश है। बाकी सारी चीजें ना फिर बेमानी हो जाती है। लेकिन जैसे जैसे धरती का तापमान जो है वो बढ़ रहा है, वैसे वैसे बहुत कुछ बदल रहा है। नीदरलैंड्स में तापमान बढ़ने के कारण नेशनल हीट वेव प्लान लागू किया गया और लोगों को बचाने के लिए मोबाइल जंगल और शेडो आर्ट जैसे तरीके अपनाए जा रहे हैं वहां पर शहरों में। अब ये जो पॉसिबिलिटी कैसे होती है, ये दिमाग ना आइडियाज, देखिए जब हम कहते हैं ना कि जो आवश्यकता है वो आविष्कार की जननी है, तो वो ऐसे ही होता है। वहां शहरों में पहियों वाले स्टैंड पर असली पेड़ पौधे लगाकर चलते फिरते जंगल तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें जरूरत के हिसाब से धूप वाली जगह पर खड़ा किया जा सके। बदलता पर्यावरण और गर्म होती पृथ्वी जो है ना, वो हमें बहुत बहुत कुछ सिखा रही है। पर सोचने वाली बात यह है कि क्या हम कुछ सीख रहे हैं, ये हमें अपने आप से पूछना चाहिए। चलिए, आप जो सीखेंगे नहीं सीखेंगे वो आपकी मर्जी है, लेकिन अभी तो गानों की बारी है। गाने चल रहे हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे प्यारे, ये तो आपको ठंडक दे ही देंगे इतनी उमस भरी गर्मी में। तो इन गानों को सुनते रहिए। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है ये, मैं हूँ नीतू आपके साथ और आप सुन रहे हैं म्यूजिकल दिल्ली।

0: अब से पहले ना बहुत सारे ऐसे एरियाज थे जहां महिलाओं के लिए जो वर्जित माने जाते थे, और ऐसे एरिया में अपनी जगह बनाना और दुनिया भर में वो कला सिर्फ ऐसी जगह बनाना और ऐसा नाम कमाना कि दुनिया भर में वो जो कला है वो सिर्फ आपके नाम से पहचानी जाए, ऐसा ही कर दिखाया था छत्तीसगढ़ की लोक कलाकार तीजन बाई ने, जो कि पांडवानी लोक गीत नाट्य प्रस्तुत करने वाली पहली महिला कलाकार थी। क्योंकि पारंपरिक रूप से ना महिलाओं को पांडवानी गाने की अनुमति नहीं थी उनसे पहले, पर तीजन बाई ने 13 साल की उम्र में अपना पहला सार्वजनिक प्रदर्शन किया, और जब वो हाथ में तंबूरा लेकर गाती थी ना तो किरदारों को जैसे जिंदा कर देती थी। आपने भी उनकी प्रस्तुतियां देखी होंगी तो आपको पता चलेगा कितना जोश, कितना ओजस्वी तरीके से वो उन किरदारों को कहती थी अपनी कला के माध्यम से। पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन भाई ने दुनिया भर में पांडवानी कला और भारत को पहचान दिलाई। अब तीजन भाई हमारे बीच नहीं है, आकाशवाणी और एफएम गोल्ड की तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि।
1: तू आन है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान। शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। जॉइन इंडियन नेवी।

100.1 आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर नीतू के साथ हैं आप और ये है म्यूजिकल दिल लगी। पिछले काफी समय से ना हम जेंजी को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं, दुनिया भर में हो रही है,

कमी नहीं, बहुत सारे ऐसे निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं जेंजी को लेकर कि वो बॉदर नहीं करते, उन्हें वो दूसरों के बारे में परवाह नहीं करते, जो कि एक तरह से अच्छी बात भी है और बहुत सारी बुरी बातें भी उनके बारे में कही जा रही हैं। लेकिन जेंजी जो है ना, वो कई मामलों में मिलेनियल्स से बेहतर है। हाल में आए एक अध्ययन में कहा गया है कि जेंजी का शुरुआती करियर मिलेनियल्स से बेहतर रहा है और कमाई में भी वो मिलेनियल्स से काफी आगे हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना।

आज हम याद कर रहे हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी जयंती पर, जो भारतीय राजनीति के एक प्रभावशाली चिंतक और शिक्षाविद थे, जिन्होंने राष्ट्रीय एकता और जनहित के मुद्दों को हमेशा प्रमुखता दी। आज पुण्यतिथि है बाबू जगजीवन राम की। वो एक महान स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। उन्होंने 1971 के युद्ध के समय रक्षा मंत्री के रूप में और कृषि मंत्री के रूप में हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1977 में वो भारत के उप प्रधानमंत्री बने। उनके नाम लगभग 50 वर्षों तक लगातार संसद का सदस्य रहने का रिकॉर्ड है। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। नीतू है आपके साथ म्यूजिकल दिल लगी में, और जहां चल रही है गीतों की बारी, तो अब अगले गीत की बारी है। चलिए सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज में।

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान, ये योजना जो है वो किसानों को स्वच्छ ऊर्जा से जोड़ने और उनकी आय बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना के माध्यम से सौर ऊर्जा आधारित पंपों और ऊर्जा संयंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे किसानों को सिंचाई के लिए किफायती और टिकाऊ ऊर्जा उपलब्ध हो सके। ये योजना कृषि क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को भी प्रोत्साहित करती है। और पर्यावरण की जहां तक बात है तो हम सबको ही पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देना ही चाहिए। किसी भी तरह से छोटा सा भी योगदान ना बहुत बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर भरता है। तो अगर हम सब थोड़ा थोड़ा योगदान देंगे ना, तो कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव जरूर होगा। और इसी पॉजिटिविटी को बनाए रखने के लिए हम सुना रहे हैं आपको बेहतरीन गाने। तो अभी राजकुमार फिल्म से एक गाना सुनते हैं।

होता है ना ऐसा कि हम जमाने की बातें सुनते हैं किसी के बारे में और हमें लगता है कि शायद वो इंसान ऐसा ही होगा, एक परसेप्शन बना लेते हैं हम उस इंसान के बारे में, और ऐसे लोग ना किसी भी दूसरे इंसान को बहुत अलग फील कराते हैं, वो पॉजिटिव फीलिंग नहीं होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम मिलते हैं और पहली मुलाकात में ना हमें ऐसा लगता है कि पॉजिटिविटी आ रही है हमारे अंदर, और बहुत सारे ऐसा लोग होते हैं जिनसे मिलकर ऐसा लगता है कि हमारे अंदर से कुछ ड्रेन हो रहा है, कुछ निकल रहा है, हम लो फील करने लग जाते हैं। तो ऐसे लोगों से ना दूर रहिए जो आपको लो फील कराते हैं या अकेला फील कराते हैं, उनसे बिल्कुल दूर रहिए और अच्छे लोगों की संगत में रहिए। फिलहाल तो अच्छे अच्छे गानों की संगत है आपके साथ, इंजॉय कीजिए म्यूजिकल दिल लगी में।

नीतू, इसी के साथ नीतू को इजाजत दीजिए। नीतू चलती है, आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। दिल का मेल बॉक्स में आपसे मुलाकात होती है, तब तक एंजॉय करते रहिए।

तू आन है, तू शान, तू ही देश का अभिमान है। अब आप भी बढ़ाएं देश का सम्मान, शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर बनकर। भारतीय नौसेना की एग्जीक्यूटिव एजुकेशन और टेक्निकल ब्रांच ज्वाइन करने के लिए अविवाहित पुरुष और महिला उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। आवेदन की अंतिम तिथि है 27 जुलाई 2026। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.joinindiannavy.gov.in। ज्वाइन इंडियन नेवी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में कहा कि सबको साथ लेकर चलना ही सहकारिता है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय राज्यों की मदद करने के लिए है। श्री शाह ने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज सभी सहकारी समितियों का डेटा एक जगह उपलब्ध है। श्री शाह ने कहा कि 9 प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति बनाई गई हैं।
2: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। ये प्रणाली

मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि का रुख है। सेंसेक्स 576 अंक बढ़कर 78,340 और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,438 पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। शबनम के साथ हैं आप, कलाकार बेमिसाल में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज बातें एक ऐसे फिल्मकार की जिनकी पहली फिल्म ने इतिहास रचा था। वो फिल्मकार जिन्होंने हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार यानी कि राजेश खन्ना को फिल्मों से जोड़ा। पहले मैं आपको गाना सुनाती हूँ, उसके बाद बताती हूँ कि किन की बातें करने वाली हूँ मैं आज।

नहीं पड़ा, ये माना मेरी जान, मोहब्बत सजा है, ये माना मेरी जान, मोहब्बत

मुझे तो बेकरारी इस बात की है कि अगला वाला गाना आपको कैसा लगेगा, क्योंकि अगला गाना भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी और बलबीर, उनके बहुत सारे साथियों ने भी आवाज़ दी है इस गाने को। हंसते जख्म फिल्म का ये गाना है और आज हम बातें कर रहे हैं चेतन आनंद की। दोस्तों, चेतन आनंद देश के बहुत ही मशहूर फिल्मकारों में से एक माने जाते हैं। निर्देशन के अलावा भी उन्होंने सिनेमा और सोसाइटी के लिए बहुत कुछ किया। चेतन आनंद का जन्म 3 जनवरी 1921 को हुआ था। चेतन देव आनंद के बड़े भाई थे और चेतन ने अपने करियर की जो शुरुआत है वो एक के रूप में की थी। जी हाँ, इसके बाद उत्तराखंड के एक स्कूल में वो टीचिंग करने लगे थे, इतिहास पढ़ाया करते थे।

लता मंगेशकर की आवाज में ही रांझा फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गाना आपने सुना आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर। दोस्तों, इस गाने में आपको नजर आए, आपने शायद ये फिल्म देखी भी होगी, राजकुमार और प्रिया राजवंश। प्रिया राजवंश को फिल्मों में चेतन ही लेकर आए थे और वो उनके कई ड्रीम प्रोजेक्ट्स का हिस्सा रही। दोस्तों, चेतन आनंद को देश के सबसे बेहतरीन फिल्मकारों में से एक माना जाता है। चेतन का योगदान फिल्में बनाने और डायरेक्ट करने तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि फिल्मों के लिए कहानियां उन्होंने लिखी, एक्टिंग भी की। कई ऐसे और सितारे रहे जिन्हें फिल्मों में वो लेकर आए, स्टार बनाने का उनको श्रेय जाता है। दोस्तों, आपने राजेश खन्ना को तो देखा ही है, हमारे देश के सुपरस्टार माने जाते हैं द ग्रेट एक्टर राजेश खन्ना को फिल्मों में चेतन ही लेकर आए थे। उनकी पहली फिल्म आखिरी खत जो है उसे डायरेक्ट किया था चेतन ने। हालांकि जो उनकी पहली रिलीज फिल्म थी वो राज थी, लेकिन जो साइन फिल्म थी और जिसमें एक्टिंग उन्होंने शुरू की वो चेतन आनंद की फिल्म थी आखिरी खत। इसके अलावा अभिनेत्री कल्पना कार्तिक, जो बाद में देवानंद साहब की पत्नी बनी, उन्हें भी चेतन ही लेकर आए थे फिल्मों में। तो ऐसे थे चेतन। और

0: काश कि चेतन भी कुछ और वक्त रुकते तो शायद हमें कुछ और फिल्में देखने को मिलती। आखिरी खत फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी की आवाज़ में आपने सुन लिया है। और दोस्तों, अपने संपूर्ण करियर में चेतन ने कुल 13 फिल्मों का डायरेक्शन किया और इसके अलावा उन्होंने टीवी के मशहूर सीरियल परमवीर चक्र को भी बनाया था, जो कि दूरदर्शन पर 1988 में प्रसारित हुआ था और बहुत चर्चित रहा था। चेतन चले गए हैं, दुनिया से अलविदा कह चुके हैं, लेकिन पीछे छोड़ गए हैं अपनी सदाबहार फिल्में जो हमेशा उनकी याद दिलाती रहेंगी। चलिए, फिलहाल तो वक्त हो चला है आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर उर्दू में खबरों का। मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इससे आज़ाद और खुले भारत बहर-उल-काहिल खत्ते के तई नुक्ता नज़र के साथ साथ मशरक़ी मुल्कों से राबते बढ़ाने की भारत की पॉलिसी को तक़वियत मिलेगी। सरकार ने कहा है कि डिजिटल हेल्थ खदमात को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से ज़्यादा हेल्थ रिकॉर्ड्स को आभा अकाउंट्स के साथ मुंसलिक किया गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ में आज शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में यूक्रेन के शहर कीफ में कम से कम 10 अफराद हलाक और 46 से ज्यादा जख्मी हो गए। इंग्लैंड मेक्सिको को 2-3 गोल से शिकस्त देकर फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच मर्दों के सिंगल्स में, जबकि नाओमी ओसाका खवातीन सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। रवानगी पर अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के उनके दौरे से मशरकी मुल्कों से राबता बढ़ाने की भारत की पॉलिसी, महासागर नजरिए नीज आज़ाद और खुले भारत बहर-उल-काहिल खत्ते के तई मुल्क के नुक्ता नज़र को मजीद तकवियत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया के उनके दौरे से जामे क़िलीदी साझेदारी मुस्तहकम होगी, जिसे 2018 में उनके दौरे के दौरान नई बुलंदी पर पहुंचाया गया था। इंडोनेशिया के बाद जनाब मोदी मेलबर्न जाएंगे। वो ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी एल्बनीज की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। जनाब मोदी ने कहा कि उनके इस दौरे से दिफा, सिक्योरिटी, तजारत और सरमायाकारी पर तबादले ख्याल के जरिए भारत ऑस्ट्रेलिया जामे क़िलीदी साझेदारी मुस्तहकम हो सकेगी। वजीर आजम वहां भारतीय बिरादरी के लोगों से भी मिलेंगे। वजीर आजम मोदी अपने दौरे के आखिरी मरहले में ऑकलैंड जाएंगे। वो न्यूजीलैंड के वजीर आजम क्रिस्टोफर लक्सन की दावत पर यह दौरा करेंगे। उन्होंने कहा कि पिछले साल मार्च में न्यूजीलैंड के वजीर आजम के भारत के दौरे के बाद बाहमी ताल्लुकात में जो तेजी आई थी, उनके इस दौरे में इक्तसादी, तजारती और कारोबारी राबतों पर तवज्जो मरकूज करते हुए भारत से बाहमी ताल्लुकात को मजीद तकवियत मिलेगी। वजीर दाखिला अमित शाह ने गुज़श्ता 5 साल के दौरान इमदाद बाहमी के जरिए खुशहाली के मंत्र पर अमल करते हुए करोड़ों लोगों की जिंदगी में तब्दीली लाने पर इमदाद बाहमी वजारत की सताइश की है। इमदाद बाहमी वजारत के 5वें यौम तासीस के मौके पर एक तकरीब से खिताब करते हुए जनाब अमित शाह ने कहा कि इमदाद बाहमी शोबे और मुल्क भर में 8.5 लाख से ज्यादा इमदादी बाहमी इदारों से वाबस्ता 3 करोड़ अफराद के लिए आज बहुत शुभ दिन है। उन्होंने कहा कि इस दिन वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सरकार में इमदाद बाहमी की एक अलग वजारत कायम करने का फैसला किया था।
2: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9

0: पिरोने का काम हमने किया है।
1: जनाब अमित शाह ने मजीद कहा कि पिछले 5 साल में इमदाद बाहमी निज़ाम को जदीद तर्ज पर ढालने, शफाफ बनाने और तकनीक पर मबनी मुसाबिकत की निज़ाम बनाने की समत काबिले तारीफ काम हुआ है। जनाब अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके 125वें यौम पैदाइश पर याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी भारतीयता का जज्बा पैदा करने, भारत माता की ताजीम और मेरे जैसे करोड़ों पार्टी कारकुनों में भारतीय सकाफत की अहमियत के तई वक्फ कर दी थी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक अजीम रहनुमा थे जिन्होंने यह ऐलान किया था कि एक मुल्क में दो आइन, दो वज़ीरे आज़म और दो परचम नहीं हो सकते। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी साबिक मरकजी वजीर, मुमताज माहिर तालीम, बसीरत अफरोज मुफक्किर और कद्दावर कौमी रहनुमा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके 125वें यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी उन्हें खराज अकीदत पेश किया। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर डॉक्टर सिंह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी एक नजरिया साज मुदब्बिर, सरकर्दा स्कॉलर और मुल्क के एक पुरज़्म मैमार थे जिन्होंने मुल्क के इत्तेहाद, जमहूरी इदारों को मुस्तहकम करने और कौमी यकजहती के तहफ्फुज़ की खातिर अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। हुकूमत ने कहा है कि 93 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान भारत सेहत खातों आभा से 104 करोड़ से ज्यादा सेहत से मुतालिक रिकॉर्ड्स मुंसलिक किए जा चुके हैं। एक मरबूत डिजिटल अवामी सेहत इको निज़ाम की जानिब भारत के सफर में ये एक अहम पेशरफ्त है। आभा आधार की तरह 14 हिस्सों पर मबनी एक मुनफरिद शनाख्ती नंबर है जो लोगों को एक वसीतर सेहत निज़ाम से महफूज तौर पर मुंसलिक करता है। इससे मरीजों को डिजिटल सेहत खिदमात तक रसाई में मदद मिलती है। वो इस नेटवर्क के जरिए अपनी तिब्बी जानकारी के साथ बीमा कंपनियों, सेहत की देखभाल के मराकज, डॉक्टरों और दीगर खिदमात तक रसाई हासिल कर सकते हैं। हुकूमत का मकसद आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन नेटवर्क को वसत देना है ताकि मुल्क भर के सभी मरीज और सेहत खिदमात का इहाता किया जा सके। इंतखाबी कमीशन ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में असेंबली की 3 सीटों के जिमनी चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये जिमनी इंतखाबात बिहार में बांकीपुर हलके, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दातिया हलके के लिए कराए जाएंगे। इंतखाबी कमीशन ने मगरिब बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए जिमनी चुनाव का ऐलान कर दिया है। राज्यसभा के अरकान सुखविंदर शेखर रे, सुष्मिता देव और प्रकाश छी बराइक के मुस्ताफी होने के बाद ये सीटें खाली हुई हैं। भारत स्विट्जरलैंड के जेनेवा में सारिफीन के तहफुजाती कानून और पॉलिसी पर माहिरीन के बैन हुकूमती ग्रुप के नवे इजलास की सदारत करेगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सारिफीन के उमूर, खुराक और तकसीम आमा की वजारत ने कहा है कि इजलास में रुकन ममालिक, बैन अवी तनजीमें, सारिफीन, तहफ़ाती हुकाम, तालीमी इदारे और दीगर मुतलक फरीक़ैन यकजा होंगे और सारिफीन के तहफ़ से मुतलक कानून और पॉलिसी के सिलसिले में उभरने वाले मामला पर बातचीत करेंगे। माहरीन का कहना है कि बैन हुकूमती ग्रुप सारिफीन के तहफ़ से मुतलक कानून और पॉलिसी पर ताउन मुज़ाकरात के लिए आला बैन हुकूमती प्लेटफार्म है। सारिफीन उमूर के महकमे के सेक्रेटरी निधि खेरे इस इजलास की सदर नशी होंगी। वो सारिफीन के तहफ़ से मुतलक बुनियादी आलमी तरजीहात के बारे में 3 रोज़ा बातचीत की सदारत करेंगे। सारिफीन के तहफ़ की अहम आलमी तरजीहात के सिलसिले में मुल्कों के माबेन तबादले ख्याल की रहनुमाई करेंगी। दिल्ली से नितिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
1: इम्तिहानात के निकास से मुतालिक एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 के इम्तिहान की फीस के रिफंड के लिए बैंक खाते की तफसीलात को अपडेट करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। भारतीय महकमे मौसमियात ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं बहुत शदीद बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसमियात की एजेंसी ने कहा है कि जनूब मगरबी मानसून के आइंदा 3 रोज के दौरान आगे बढ़ने के लिए मौसम साजगार है। यूक्रेन में आज सुबह राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में कम से कम 10 अफराद हलाक और 46 दीगर जख्मी हो गए। तुर्की में नेटो की अहम सरबराह मीटिंग से एक दिन कबल यह हमला किया गया है जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के शिरकत करने का इम्कान था। यूक्रेन की फिजाइया ने कहा है कि रूस ने इस हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। मैक्सिको सिटी में इंग्लैंड मैक्सिको को 2-3 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। इस स्टेडियम में अब तक खेले गए 89 मैचों में से सिर्फ 2 मैचों में मैक्सिको को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन इंग्लैंड ने उम्दा

0: कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपना दबदबा बरकरार रखा। विंबलडन टेनिस में कल रात सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच रूस के खिलाड़ी को हराकर मर्दों के सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। वहीं खवातीन के सिंगल्स में कैरोलिना मोंकोवा प्री क्वार्टर फाइनल में चेक जमहूरिया की अपनी साथी खिलाड़ी और साबिक चैंपियन बारबोरा को हराकर तीसरी मर्तबा क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। एक दूसरे प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में नाओमी ओसाका भी पहली मर्तबा क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। और अब आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के 6 दिन के दौरे पर रवाना हो गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इससे आज़ाद और खुले भारत बहर-उल-काहिल खत्ते के तई नुक्ता नज़र के साथ साथ मशरिक़ी मुल्कों से राबते बढ़ाने की भारत की पॉलिसी को तक़वियत मिलेगी। सरकार ने कहा है कि डिजिटल हेल्थ खदमात को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से ज़्यादा हेल्थ रिकॉर्ड्स को आभा अकाउंट्स के साथ मुंसलिक किया गया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ में आज शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। और इंग्लैंड मेक्सिको को 2 के मुकाबले 3 गोल से शिकस्त देकर फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi embarks on 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand. Says it will strengthen India's Act East policy as well as outlook towards free and open Indo-Pacific. Minister for Cooperation Amit Shah says cooperative movement is entering a new phase of expansion through reforms, digitization and professional management. Heavy rain affects normal life in Mumbai metropolitan region. Traffic disrupted on Mumbai-Pune expressway due to landslides. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over parts of Madhya Maharashtra, Gujarat, Goa and Chhattisgarh for today. At least 10 people killed and over 46 injured in Kiev after Russia launches ballistic missile attack. England storm into FIFA World Cup quarterfinals with dramatic 3-2 victory over Mexico. And in Wimbledon tennis, Novak Djokovic beats Roman Safiulin of Russia to reach men's singles quarterfinals. Naomi Osaka also reaches women's singles quarterfinals, defeating world number one Aryna Sabalenka. Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 6-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand. In his departure statement, the Prime Minister said his visit to the three countries will further strengthen India's Act East policy, Mahasagar vision, as well as the country's outlook towards a free and open Indo-Pacific. Prime Minister Modi said his visit to Indonesia will further deepen the comprehensive strategic partnership, which was elevated during his 2018 visit and follows President Prabowo's state visit to India as the chief guest at the Republic Day celebrations in 2025. Prime Minister Modi said he will also interact with the Indian diaspora and visit the Prambanan temple complex in Yogyakarta with President Prabowo. From Indonesia, the Prime Minister will travel to Melbourne at the invitation of Australian Prime Minister Anthony Albanese. He said the visit will strengthen the India-Australia comprehensive strategic partnership through discussions on defence and security, trade and investment, education, mobility, emerging and critical technologies, sports and people-to-people ties. He will also interact with the Indian diaspora. The Prime Minister will then visit Auckland at the invitation of New Zealand Prime Minister Christopher Luxon. He said the visit will build on the momentum in bilateral ties following Prime Minister Luxon's visit to India in March last year, with discussions focusing on economic, trade and commercial engagement. Home Minister and Minister of Cooperation Amit Shah today said that the cooperative movement is entering a new phase of expansion through reforms, digitization and professional management. Addressing the 5th foundation ceremony of Ministry of Cooperation, Mr. Shah said a ranking framework has been announced to recognize the 5 best performing cooperative societies.

0: next face either Felix Auger-Aliassime or Alejandro Davidovich Fokina in the quarterfinals. In another encounter, Naomi Osaka produced one of the biggest upsets of Wimbledon 2026, defeating world number one Aryna Sabalenka 6-2, 7-6 to reach her first quarterfinal. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi embarks on six-day visit to Indonesia, Australia and New Zealand, says it will strengthen India's Act-East policy as well as outlook towards free and open Indo-Pacific. Minister for Cooperation Amit Shah says cooperative movement is entering a new phase of expansion through reforms, digitization and professional management. Heavy rain affects normal life in Mumbai metropolitan region. Traffic disrupted on Mumbai Pune Expressway due to landslides. At least 10 people killed and over 46 injured in Kiev after Russia launches ballistic missile attack. England storm into FIFA World Cup quarterfinals with dramatic 3-2 victory over Mexico. And in Wimbledon tennis, Novak Djokovic beats Roman Safiulin of Russia to reach men's singles quarterfinals. Naomi Osaka also reaches women's singles quarterfinals by defeating world number one Aryna Sabalenka. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत और 46 से ज्यादा लोग घायल। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीवनोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई है।
3: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्र

0: स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक इन 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
1: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
0: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्शरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का

0: ये 5 साल में किया है।
1: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
2: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी, जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी, मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उसी दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
3: जगन्नाथ तकानेन।
4: दुनिया भर में मशहूर पुरी के रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी

0: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
1: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी और आने वाले समय में केरलम में ओणम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
2: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किया है।
0: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है, जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोदोल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में 2 दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफ्योलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियासिमे या एलेजांड्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। महिला सिंगल्स में करीना मुखोवा ने अपने करियर में तीसरी बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया

0: ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: प्रसार भारतीच्या वेव्स OTT प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR या ॲपसहित 558 किलोहर्ट्सवर आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी। दुपारचे 2:30 वाजले आहेत। नादब्रह्म या शास्त्रीय संगीताच्या कार्यक्रमात आपण ऐकूया आज ज्योती यादवार यांचं गायन राग शुद्ध सारंग। त्यांना तबला साथ आहे मिलिंद जोशी यांची आणि हार्मोनियम साथ आहे अनंत केमकर यांची। मध्यलय झपतालात आणि द्रुतबंदिश 3 तालात निबद्ध आहे। द्रुतबंदिशीचे बोल आहेत जा जा रे भवरा दूर जा। ऐकूया ज्योती यादवार यांचं गायन राग शुद्ध सारंग।

श्रोताओं, आकाशवाणी की कंटेंट सोर्सिंग पॉलिसी के अंतर्गत कार्यक्रम निर्माताओं एवं निर्माण संस्थाओं से रचनात्मक एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यक्रमों के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए https://prasarbharti.gov.in

लाल फेटा वाला वो तो मा भाई ना थाला वो करसन काका थाला वो बूढ़ी बंडी वाला ओ हो लाल फेटा वाला वो तो मा भाई ना थाला वो करसन काका थाला वो बूढ़ी बंडी वाला माधु चक्कर दो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया से ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि 9 प्रमुख राष्ट्र स्तर की सहकारी समिति बनाई गई है।
2: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
0: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन के इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की सामूहिक क्षमता को मजबूत किया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। यह हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नेटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। वहीं इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं प्रियांशी और आइए सुरों का सिलसिला जारी रखते हैं इस गीत के साथ। मिस्टर इंडिया फिल्म से जावेद अख्तर द्वारा लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा संगीत में सजा और कविता कृष्णमूर्ति के सुरों में।

कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी

0: हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

अगला गीत सुनते हैं, समीर द्वारा लिखा, जतिन ललित ने संगीत में सजाया और कमाल खान की आवाज है। फिल्म थी प्यार किया तो डरना क्या।

आज का संगीत सफर यहीं तक श्रोताओं, अब से कुछ ही समय में सुनिएगा रोजगार समाचार और फिर हमारा खास कार्यक्रम परिक्रमा। मेरी मुलाकात आपसे फिर होगी 5:10 पर। कार्यक्रम होगा गाते गुनगुनाते। फिलहाल लीजिए, सुनते हैं अभी कुछ ही समय में समाचार।

0: while retired candidates may apply directly. The completed applications should reach the Administrative Officer, Krishna Water Disputes Tribunal, 3 Court 1, Bikaji Kama Place, New Delhi, within 45 days from the date of publication of this advertisement in the Employment News. Detailed eligibility criteria and application format is available on the official website. Do refer to www.chalshakti-dover.gov.in. And now we have the employment news in Hindi.
1: नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक के साथ मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए अब जानकारी लेते हैं रिक्तियों से संबंधित। लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान तेजपुर असम आमंत्रित कर रहा है प्रतिनियुक्ति आधार पर निदेशक पद के लिए आवेदन। भारतीय नागरिक तय फॉर्मेट में अपने आवेदन प्रेषित कर सकते हैं। जरूरी योग्यता, अनुभव, आयु आदि की समुचित जानकारी के लिए देखिए लोकप्रिय गोपीनाथ बरदलई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान तेजपुर असम की वेबसाइट www.lgbrimh.gov.in। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय कर्तव्य भवन नई दिल्ली आमंत्रित कर रहा है सदस्य कानूनी के पद को भरने के लिए निर्धारित प्रारूप में आवेदन। विस्तृत जानकारी उपलब्ध है इन वेबसाइट्स पर mopng.gov.in तथा pngrb.gov.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स अंसारी नगर नई दिल्ली आमंत्रित कर रहा है चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर पद के लिए आवेदन। इसके लिए आप देख सकते हैं वेबसाइट www.aims.edu। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर कुल सचिव पद के लिए आवेदन आमंत्रित कर रहा है। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान रायपुर की वेबसाइट nitrr.ac.in। वेबसाइट पर जाकर आप क्लिक कीजिए advertisement.php को और वहां तमाम जानकारी आपको उपलब्ध हो जाएगी। राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान हाजीपुर आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। सिविल इंजीनियर अनुबंधात्मक, आंतरिक लेखा परीक्षक अनुबंधात्मक, रख रखाव अभियंता, विद्युत अनुबंधात्मक, विजिटिंग कंसल्टेंट विशेषज्ञ डॉक्टर तथा विशेषज्ञ विजिटिंग कंसल्टेंट मनोविज्ञानी सलाहकार। विस्तृत जानकारी के लिए देखिए वेबसाइट nipeerhajipur.ac.in। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान मंगलागिरी आंध्र प्रदेश आमंत्रित कर रहा है इन पदों के लिए आवेदन। चिकित्सा अधीक्षक, अधीक्षण अभियंता, रजिस्ट्रार, सहायक परीक्षा नियंत्रक, प्रशासनिक अधिकारी, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सहायक लेखा अधिकारी तथा लाइब्रेरियन ग्रेड वन। पूरी जानकारी के लिए देखिए एम्स मंगलागिरी की वेबसाइट www.aimsmangalagiri.edu.in। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
2: दिस प्रोग्राम वॉज प्रोड्यूस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय द न्यूज सर्विसेज डिवीजन ऑफ आकाशवाणी।

0: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
1: नमस्कार, हमारे स्टूडियो के घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं

0: आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के संघ के साथ मैं हूं करिश्मा राय और मेरे साथ है मेरी सहयोगी सायरा मुज्तबा। सायरा, आपको भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार करिश्मा, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ परिक्रमा। एंड करिश्मा, द वीक हैज जस्ट स्टार्टेड, तो आई एम श्योर कि कुछ लोग को मंडे ब्लूज हो रहे होंगे, व्हेयरएज अदर पीपल विल बी ऑल एनर्जाइज्ड, बट नॉनदलेस आई एम श्योर दैट वी आर हियर टू गिव देम अ परफेक्ट रैप टू देयर मंडे, बिकॉज हो सकता है आप ऑफिस अपना जल्दी जल्दी काम निपटा के घर की तैयारी कर रहे हो एंड देन यू वॉन्ट टू नो ओके वॉट वर द हैपनिंग्स ऑफ द डे या फिर पूरी देश में क्या चल रहा था, एंड दैट इज वाई वी आर हियर टू गिव यू परिक्रमा ऑफ द कंट्री। सो वील हैव ऑल दैट करिश्मा हैज टोल्ड यू, सो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi arrives at Jakarta in Indonesia a short while ago, beginning his high-stakes three-nation Indo-Pacific tour.
0: सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है।
1: Heavy rain affected normal life in Mumbai metropolitan region. Traffic disrupted on Mumbai Pune expressway due to landslides. IMD issues red alert for heavy to very heavy rainfall over parts of Madhya Maharashtra, Gujarat, Goa and Chhattisgarh today.
0: रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले के बाद यूक्रेन के राजधानी कीव में 10 लोगों की मौत और 46 से ज्यादा घायल।
1: इंग्लैंड स्टॉर्म इनटू फीफा वर्ल्ड कप क्वार्टर फाइनल्स विद ड्रामेटिक 3-2 विक्ट्री ओवर मेक्सिको।
0: और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नोआमी ओसाका महिला सिंगल्स की क्वार्टर फाइनल में पहुंची।
1: And as always, we start our show with our special segment, Dateline India. And the two topics that we're going to look at today are World Zoonosis Day and World Rural Development Day. So, Karishma, talking about the first topic, World Zoonosis Day. So, first, tell our listeners, what exactly is the meaning of zoonosis? Well, zoonosis diseases, they are kind of diseases that are transferred to humans through vertebrates. So, you know, rabies, jaise hai, you know, so all those, so that actually also reminds us how closely connected human health is with animal health and also our environment.
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और यह दिन इतिहास में एक अहम पल है क्योंकि 6 जुलाई 1885 को फ्रांसीसी वैज्ञानिक लुई पाश्वर ने रेबीज, यानी कि जो जानवरों से इंसानों में फैलने वाली बीमारी है, इसके लिए खिलाफ दुनिया की पहली वैक्सीन सफलतापूर्वक लगाई और एक युवा लड़के की जान बचाई थी। यह एक ऐसी बड़ी कामयाबी थी जिसने जन स्वास्थ्य को हमेशा के लिए बदल दिया।
1: That's right. And before we go further, well, here's a quick question for our listeners. Have you ever wondered whether diseases can spread from animals to humans?
0: और क्या आप जानते हैं कि इन बीमारियों को जूनोटिक बीमारियां या आसान भाषा में समझे तो जूनोसिस कहा जाता है। ये ऐसे संक्रमण है जो जानवरों, जिनमें कि पालतू जानवर भी होते हैं, मवेशी और जंगली जानवर शामिल हैं, ये इंसानों के बीच फैल सकते हैं।
1: That's right, Karishma. And something surprising that around 60% of all known infectious diseases and up to 75% of newly emerging infectious diseases in humans, they come from animals.
0: तो रेबीज, एवियन इन्फ्लुएंजा, इबोला और यहाँ तक कि COVID-19 जैसी बीमारियों के बारे में जरा सोचिए। ये हमें याद दिलाती हैं कि जूनोटिक बीमारियों को समझना क्यों इतना ज्यादा जरूरी है।
1: That's right. So how do these diseases spread, Karishma?
0: बहुत अच्छा सवाल है, तो चलिए इसे भी आसान भाषा में समझ लेते हैं कि आखिर ये बीमारियां फैलती कैसे हैं। तो इसमें सबसे पहले है कि संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क में आने से ये फैलती हैं। इसके अलावा जानवरों के काटने या खरोचने से, या फिर दूषित खाना खाने से, या असुरक्षित पानी पीने से ये फैल सकती हैं।
1: Yes, as you said that, and in fact, not just contact with the, you know, infected animals, but also their waste or some bodily fluid that can cause these diseases. Even insect carriers such as mosquitoes and ticks, they are responsible for zoonotic diseases.
0: सही कहा, और चाहे खाना हो, पानी हो, कीड़े मकोड़े हो, या फिर सीधे संपर्क हो, ऐसे कई तरीके हैं जिनसे संक्रमण जानवरों और इंसानों के बीच फैल सकता है।
1: And why do you think that these diseases are becoming more common?
0: इसके कई कारण माने जा सकते हैं, जैसे कि वनों की कटाई और वन्य जीवों के आसपास

0: का विनाश, जलवायु परिवर्तन, वन्य जीव क्षेत्रों में शहरों का विस्तार होना भी लगातार इसके कारण बनते जा रहे हैं.
1: Yes, in fact, intensive farming is also responsible, and poor hygiene and sanitation, of course, are one of the reasons.
0: तो जैसे जैसे इंसान और जंगली जानवर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, बीमारियों के एक दूसरे में फैलने का खतरा भी बढ़ता जा रहा है. इसमें हम वन हेल्थ के अहम कॉन्सेप्ट तक पहुंचते हैं. वन हेल्थ का मतलब यह समझना है कि लोगों, जानवरों और पर्यावरण की सेहत आपस में कैसे जुड़ी हुई है. एक की सुरक्षा करने से दूसरे की सुरक्षा में भी मदद मिलती है.
1: And now let's talk about prevention, because good habits can make a big difference. So here's a quick checklist for everyone. Well, wash your hands with soap and running water for at least 20 seconds after touching any animal or anything that comes in contact with them, like their bedding or their waste. Avoid handling sick or dead wild animals with bare hands. Protect yourself from mosquitoes, fleas and tick bites by using repellents and wearing protective clothing.
0: और इसके साथ ही श्रोताओं, अपने पालतू जानवरों का टीकाकरण नियमित रूप से करवाना चाहिए, खासकर रेबीज के खिलाफ, और उन्हें नियमित रूप से पशु चिकित्सक के पास जांच के लिए भी ले जाना चाहिए. पालतू जानवरों को पिस्सू, किलनी और परजीवियों से बचाने के उपाय भी करने चाहिए. इसके अलावा पालतू जानवरों के मलमूत्र को सुरक्षित और साफ सुथरे तरीके से डिस्पोज करना चाहिए. वहीं मांस, पोल्ट्री और अंडे को खाने से पहले उसे अच्छी तरह से पकाना बेहद जरूरी है.
1: And there are some simple steps like these, they protect not only us but also our families and our communities. So on this World Zoonosis Day, let's remember that caring for animals, protecting nature and maintaining good hygiene are all essential for a healthier world.
0: तो इसी के साथ श्रोताओं, हम सब मिलकर जानकारी रखकर, पालतू जानवरों की जिम्मेदारी से देखभाल कर, टीकाकरण को बढ़ावा देकर और वन्य जीवों तथा पर्यावरण का सम्मान करके ज़ूनोटिक बीमारियों के फैलाव को कम कर सकते हैं.
1: So stay healthy, stay informed and remember, healthy animals, healthy environment, healthy people, one health for one future. And now we come to the second topic, World Rural Development Day.
0: तो आज 6 जुलाई को हम विश्व ग्रामीण विकास दिवस भी मना रहे हैं. एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि मजबूत गांव ही एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण करते हैं.
1: Absolutely, Karishma. And the observance was established by the United Nations General Assembly in the year 2024 to highlight the importance of improving the lives of rural communities by tackling challenges like poverty, inadequate infrastructure, unemployment and food insecurity while promoting sustainable development.
0: तो हमारे सुनने वालों के लिए एक और यहाँ पर सवाल है सायरा, कि हमारी थाली में जो खाना होता है वो कहाँ से आता है?
1: Well, that's right. Of course, it all begins in our villages. Rural communities are the backbone of our food system, Karishma. They are where crops are grown, livestock is raised and millions of livelihoods are sustained.
0: तो असल में दुनिया के लगभग 80% सबसे गरीब लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, और इन समुदायों को हर दिन जलवायु परिवर्तन, भोजन की कमी और पलायन के दबाव का सामना करना पड़ता है. फिर भी उनमें अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की जबरदस्त क्षमता है.
1: That's right. That's why investing in rural development means investing in a more resilient and prosperous future for everyone.
0: और जब ग्रामीण विकास की बात आती है तो भारत अपने समुदाय संचालित और तकनीक आधारित दृष्टिकोण के साथ एक वैश्विक नेता के रूप में उभरा है.
1: Exactly. Through digital technology, better infrastructure, financial inclusion and people-centered programs, India has significantly reduced multi-dimensional poverty and narrowed the rural-urban gap.
0: तो श्रोताओं, एक और छोटा सवाल यहाँ आपके लिए, कि क्या आप किसी ऐसी सरकारी पहल का नाम बता सकते हैं जिसने ग्रामीण सड़कों की काया पलट कर दी हो?
1: Well, there are many. In fact, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana is the prominent one. This is the flagship program that has provided all-weather road connectivity to thousands of villages, making it easier for people to access schools, hospitals and markets.
0: और इतना ही नहीं, जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण जैसी पहलों के जरिए सुरक्षित पेयजल और बेहतर आवास भी प्राथमिकता बन गए हैं, जिससे लाखों ग्रामीण परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हुआ है. ग्रामीण भारत की एक और बड़ी ताकत महिलाओं का अद्भुत योगदान भी है.
1: Absolutely. More than 10 crore women have been mobilized into self-help groups or SHGs under the Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Rural Livelihoods Mission. These women are becoming entrepreneurs.

0: us, community leaders and agents of social and economic change.
1: और वित्तीय समावेशन ने भी एक क्रांतिकारी भूमिका निभाई है. जनधन, आधार, मोबाइल, ट्रिनेट और डिजिटल इंडिया पहल के जरिए अब लाखों ग्रामीण नागरिकों के बैंक खातों, डिजिटल पेमेंट, इंटरनेट सेवाओं और सरकारी लाभों तक सीधी पहुंच हो गई है.
0: And recently, another important milestone was achieved with the implementation of Viksit Bharat Ji Ramji Act, which came into effect from 1st of July.
1: और इसके साथ ही यह कानून हर पात्र ग्रामीण परिवार के लिए कानूनी रूप से गारंटीकृत वेतन रोजगार के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 करके ग्रामीण रोजगार और आजीविका सुरक्षा को मजबूत करता है. साथ ही यह टिकाऊ ग्रामीण संपत्ति बनाने और विकसित भारत 2047 के विजन को आगे बढ़ाने पर बल देता है.
0: That's a significant step towards building stronger villages and creating sustainable opportunities closer to home. Every road built, every household connected with clean water, every woman empowered and every young person given an opportunity contributes to a stronger and more resilient India.
1: तो आइए एक बेहतर भविष्य के लिए समावेशी विकास, टिकाऊ खेती, डिजिटल सशक्तिकरण और समुदाय के नेतृत्व वाले विकास का समर्थन करें. मजबूत गांव, मजबूत भारत, टिकाऊ भविष्य. और इसके साथ ही अब समय है अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है.
0: Well, the Ministry of Cooperation has completed 5 years of its journey with a renewed focus on strengthening India's cooperative movement. Marking its 5th Foundation Day with the vision of Sahakar Se Samriddhi, today in New Delhi, the Ministry highlighted major achievements including digital transformation of primary agricultural credit societies or PACs, expansion of rural cooperative infrastructure, and new initiatives aimed at boosting dairy, agriculture, banking and rural livelihoods.
2: To mark the 5th Foundation Day, the Ministry today transformed 50,000 primary agriculture credit societies into e-PACs and laid foundation stones for 47 grain storage go-downs to strengthen rural storage infrastructure. A milk supply review dashboard was also launched for the National Dairy Development Board along with the two new digital platforms for urban cooperative banks, Sahakar CBS and Sahakar Sahyogi. The Ministry was established on 6th of July 2021 to provide rural credit to dairy, fisheries, housing and marketing cooperatives. It has implemented more than 152 reform initiatives since its formation. Cooperative institutions have been established in over 2,55,000 gram panchayats across the country. More than 6 lakh cooperatives are functional among over 8 lakh registered cooperatives. Meanwhile, the dairy sector is being strengthened under White Revolution 2.0 with a focus on increasing milk procurement by 50% by 2028-2029. The ministry also highlighted the growth of Bharat Taxi, India's first cooperative-based mobility platform, which has now over 6 lakh registered drivers and nearly 36 lakh customers. These reforms have strengthened grassroots institutions, improved digital access, expanded rural infrastructure, and created new opportunities for farmers, women, and cooperative members. Vidishani and Arzu, Soumya Sharan for Parikrama.
1: उत्तर प्रदेश सरकार 12 जुलाई को पौधारोपण महाअभियान 2026 का आयोजन करेगी. वन विभाग इसकी तैयारियों में जुट गया है और इस बार भी एक दिन में 35 करोड़ पौधारोपण किया जाएगा. सभी विभागों, संस्थाओं, स्कूल, कॉलेज, सामाजिक संगठन आदि के सहयोग से व्यापक जन सहभागिता के साथ इस महाअभियान को उत्सव के रूप में मनाया जाएगा. एक रिपोर्ट.
3: उत्तर प्रदेश सरकार पौधारोपण महाअभियान 2026 के तहत जन सहभागिता से पूरे प्रदेश में 12 जुलाई को 35 करोड़ पौधे रोपने का अभियान चला रही है. इसके लिए नोडल वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है. अभियान की सफलता के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जन प्रतिनिधियों से संवाद करेंगे और अधिकारियों की भी निरंतर बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश देंगे. वहीं वन मंत्री भी अन्य विभागों के मंत्रियों के साथ बैठक कर इसकी सफलता को लेकर विचार विमर्श करेंगे. मुख्यमंत्री के निर्देश पर केंद्र और प्रदेश सरकार के विभागों, जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों, स्कूल कॉलेजों समेत व्यापक जन सहभागिता से उत्सव के रूप में महाअभियान चलेगा. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष सुनील चौधरी ने बताया कि व्यापक जन सहभागिता के साथ ही केंद्र और प्रदेश सरकार के विभाग मिलकर पौधारोपण करेंगे. वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग सर्वाधिक 15.5 करोड़ पौधारोपण करेगा. ग्राम विकास विभाग 10 करोड़, कृषि विभाग 3.25 करोड़, उद्यान विभाग 1.50 करोड़, पंचायती राज विभाग 1.22 करोड़ पौधे लगाएगा. गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे भी 5.5 लाख पौधे लगेंगे. नोडल विभाग वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन होगा, जिसने इस अभियान को लेकर जिला वृक्षारोपण समिति की नियमित बैठकें

0: शुरू कर दी है। प्रदेश सरकार हर वर्ष नवीन विशिष्ट वन स्थापित करती है। इस थीम के तहत इस वर्ष के पौधारोपण महाअभियान 2026 में समरस वन, समृद्धि वन, कृषि वन, ऊर्जा वन, कपि वन समेत अनेक नवीन वन तैयार किए जाएंगे। महर्षि चरक औषधि वन की शुरुआत 5 जून यानी विश्व पर्यावरण दिवस पर की जा चुकी है। अभियान का प्रमुख हिस्सा मिशन छाया, अविरल धारा पौधारोपण, सहजन भंडारा, आम भंडारा भी होगा। मिशन छाया के तहत गर्मी से राहत देने के लिए सड़क किनारे और सार्वजनिक स्थलों पर छायादार पौधे भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा 15 अगस्त को वंदे मातरम वाटिका, 28 अगस्त को रक्षाबंधन पर भाई बहन पौधारोपण और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर एक पेड़ गुरु के नाम भी चलाया जाएगा। प्रदेश में एक्सप्रेसवे के किनारे भी पौधारोपण किया जाएगा। परिक्रमा के लिए लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी।
1: And now we head to Odisha. Well, with elaborate preparations underway for the famous, world-famous Rath Yatra in Puri, the Odisha government has entered the final phase of its administrative readiness. Chief Minister Mohan Charan Manjhi today chaired the final meeting of the Rath Yatra Coordination Committee and directed all departments to ensure impeccable arrangements for the annual festival. Let's hear more from our correspondent.
2: Odisha Chief Minister Mohan Charan Manjhi has directed all departments to ensure a faultless, safe and incident-free Rath Yatra through impeccable interdepartmental coordination and meticulous execution of every arrangement. Chairing the final meeting of the Rath Yatra Coordination Committee in Puri this morning, Mr. Manjhi described the annual chariot festival as an enduring embodiment of Odisha's rich spiritual and cultural legacy, attracting millions of devotees from across the world. He laid particular emphasis on the security, safety and dignity of women, devotees and reviewed preparedness for crowd management, multi-layered security, traffic regulation and other essential civic services. Expressing confidence in the collective efforts of all stakeholders, the Chief Minister said every ritual should be conducted with precision and according to schedule to ensure a flawless Rath Yatra, scheduled to be held on 16th of this month. Prakash Das, Akashwani News, Bhubaneswar.
3: वहीं गोवा में आज मोटरसाइकिल परिवहन सेवा को डिजिटल मंच से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। महजे ड्राइवर ऐप के शुभारंभ के साथ ही अब लोग मोबाइल के जरिए राज्य में कहीं से भी मोटरसाइकिल सेवा बुक कर सकेंगे। इस पहल से लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की उम्मीद है। पेश है विशेष रिपोर्ट।
4: गोवा में आज मजे ड्राइवर ऐप का शुभारंभ पणजी के मिनेजिस ब्रगांजा सभागार में किया जाएगा। इस ऐप को मोटरसाइकिल पायलट संगठन ग्रेसफुल गोवा सुपर ऐप लिमिटेड और परिवहन संचालनालय के सहयोग से तैयार किया गया है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत, परिवहन मंत्री मॉविन गुदिन्हो और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। इस ऐप के जरिए लोग अपने मोबाइल फोन से राज्य के किसी भी हिस्से में आसानी से मोटरसाइकिल सेवा बुक कर सकेंगे। इससे यात्रियों को तेज और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा, खासकर उन जगहों पर जहां अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के लिए परिवहन आसानी से उपलब्ध नहीं होता। इस पहल का उद्देश्य लास्ट माइल कनेक्टिविटी को मजबूत करना, लोगों को सुरक्षित और किफायती यात्रा सुविधा देना तथा मोटरसाइकिल पायलटों को डिजिटल माध्यम से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। सरकार को उम्मीद है कि यह ऐप राज्य की परिवहन व्यवस्था को और अधिक सुविधाजनक तथा आधुनिक बनाने में मदद करेगा। परिक्रमा के लिए निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
3: और श्रोताओं, इसके साथ ही अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मैक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है और 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार और 6ठे विश्व कप खिताब से चूकने के कुछ क्षणों बाद ही उन्होंने यह घोषणा की।
1: Time now for some business news. Well, the trading week kicked off on a very strong note with benchmark indices advancing nearly 0.7%. Sensex climbed 521 points to close at 78,285, while Nifty added 160 points to settle at 24,430. For more updates about market activities, tune into Akashvani's bilingual program, Market Mantra, at 6:30 in the evening.
3: और इसके साथ ही अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनके आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
5: 6th of July 1837 is the birth anniversary of R.G. Bhandarkar, who was one of India's pioneer social reformers and first Orientologists. He reconstructed the political history of the Satvahans of the Deccan and the history of Vaishnavism and other sects. As a great social reformer,

0: दरवाजा है लेकिन हमारे घर में दरवाजा नहीं।
1: That was Anwar Jalal Puri's voice and अपना शेर पढ़ते हुए थे खुद वो शायर।
2: और इसके साथ ही आज हिंदी सिनेमा के प्रख्यात निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक और अभिनेता चेतन आनंद की पुण्यतिथि है। वर्ष 1946 में उनकी पहली फिल्म नीचा नगर ने इतिहास रच दिया और ये पहली भारतीय फिल्म थी जिसे कान फिल्म महोत्सव में सर्वोच्च सम्मान भी प्राप्त हुआ था और जिसे आज पालमे द ओर के नाम से जाना जाता है।

0: और इसके साथ ही भारतीय सिनेमा के फिल्म निदेशक, पटकथा लेखक और शिक्षण मणिकौल की आज पुण्यतिथि है। मणिकौल ने भारतीय सिनेमा में अपने विशिष्ट शैली के साथ ही एक नई पहचान बनाई और उनकी प्रदर्शित पहली फिल्म उसकी रोटी को भारतीय सिनेमा में महत्वपूर्ण गिना जाता है। इसके बाद उन्होंने अषाढ़ का एक दिन, दुविधा, सतह से उठता आदमी, सिद्धेश्वरी, इडियट और नौकर की कमीज जैसी कई फिल्मों के निर्देशन किए।
1: निष्णात आचार्य तथा कश्मीर के भावी शासक, देव मातृगुप्त के राजमहर्षि गुप्त वंश दुहिता परम विदुषी देवी प्रियंग मंजरी आपके साक्षात्कार के लिए उत्सुक हैं और शीघ्र ही यहाँ आया चाहती हैं। हम उनके अनुचर आपको इसकी पूर्व सूचना देने के लिए उपस्थित हैं।
2: दूत संहार और मेघदूत आदि के प्रणेता तो कालिदास हैं और आप कह रहे हैं कि
1: वे गुप्त राज्य की ओर से कश्मीर का शासन संभालने जा रहे हैं। मातृगुप्त उन्हीं का नया नाम है।
3: And there's a very lesser known film, Karishma, of Manikol called Badal Dwar. Agar ho sake to listeners se guzarish hai wo zarur dekhe. And now let's call it a wrap. Dijiye ijazat, Karishma sai rakho. Namaskar.
4: Namaskar. Akashvani samachar ke saath main Shakti Singh. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई प्रस्तुतियों के साथ भव्य और उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री श्री सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता पहुंचे हैं। एक रिपोर्ट।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
4: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि 3 देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन को एक नए चरण में प्रवेश मिला है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। यह देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। अगले तीन दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के लिए राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य आपदा मोचन बल के साथ स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मेक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच ब्राजील के दिग्गज खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर बादलों में छिपी इस संध्या में मैं प्रियांशी भटनागर आपके साथ हूं कार्यक्रम गाते गुनगुनाते में। श्रोताओं, धीमी होती ये रोशनी में संध्या अपने साथ स्मृतियों का एक विस्तृत संसार भी लेकर आ रही है। आज की ये शाम उन कहानियों की खोज है जो कभी वाद्य यंत्रों की गूंज में तो कभी रिकॉर्डिंग स्टूडियो की सीमाओं के भीतर जन्मी और समय की परतों में कहीं ठहर गई। तो आइए आरंभ करते हैं वर्ष 1998 में प्रदर्शित मनी रत्नम की फिल्म दिल से के शीर्षक गीत से। गुलजार साहब के शब्द और एआर रहमान के संगीत ने इस रचना को स्वर दिया था और एआर रहमान के साथ अनुराधा श्रीराम, अनुपमा और फेबी मणे की आवाजें भी इस गीत का अभिन्न हिस्सा बनी। पर क्या आप जानते हैं इस गीत की धड़कन में छिपी है एक रोचक कहानी। इस धुन में जो बेस गिटार आप सुनते हैं वो लंदन में रिकॉर्ड हुआ था। उसे बजाया था विश्व विख्यात रॉक बैंड पिंक फ्लॉयड से जुड़े बेस गिटार वादक गाय प्राट ने। और भारतीय राग जोग की छाया, वाद्य संयोजन का ये मेल दिल से रे अपने समय का सबसे विशिष्ट रचना थी। आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म दिल से।

वर्ष 1997 में प्रदर्शित फिल्म सपने का ये अगला गीत जब भी शुरू होता है उसकी लय एक अलग ही गति पकड़ लेती है। एआर रहमान का संगीत, जावेद अख्तर के बोल और हेमा सरदेसाई और मलेशिया वासुदेवन के सुर, इन तीनों के संगम से बना ये गीत अपनी ऊर्जा और गति के कारण तुरंत पहचाना जाता है और स्क्रीन पर प्रभुदेवा की कोरियोग्राफी ने इस ऊर्जा को दृश्य गति दे दी। आइए सुनें।

वर्ष 1998 में निर्देशक विधु विदों चोपड़ा की फिल्म करीब का ये अगला गीत है। ये गीत अपने समय में एक सरल रुमानी और उल्लासमय अंदाज के लिए याद किया जाता है। इसके शब्द राहत इंदौरी ने लिखे, जिनकी शायरी में रोजमर्रा की जिंदगी की झलक सहजता से उतर आती है, और यही वजह है कि इस गीत में प्रेम बड़े दावों या कल्पनाओं में नहीं बल्कि घर आंगन की छोटी छोटी बातों में दिखाई देता है। यही इसकी सबसे अलग पहचान है। संगीत है अनु मलिक का, स्वर संजीवनी और कुमार सानू ने दिए, जिनकी आवाजों ने इस सहज रचना को एक प्रसन्न चित प्रवाह दिया है। आइए सुनें।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम गाते गुनगुनाते में हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, लौटेंगे जल्द ही ऐसी ही मधुर, सुनहरी और रुमानी धुनों के साथ।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: माँ हमें जीवन देती है और पेड़ उस जीवन को सांसें देते हैं। इस बार
4: माँ के सम्मान में, धरती माँ के उत्थान में,
3: दिल्ली वन एवं वन्य जीव विभाग लेके आ रहा है मिशन 70 लाख पौधा रोपण अभियान, एक पेड़ माँ के नाम।
4: दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा वन भागीदारी पौधारोपण अभियान, जिसका शुभारंभ 7 जुलाई को माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के

नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। मैं हूं आपके साथ प्रियांशी और प्यार के इस खूबसूरत सफर में आपका फिर स्वागत है। यदि आप कभी भी प्यार की उन मीठी गलियों में खोए हैं तो मेरे पास आपके लिए बिल्कुल वही धुन है। चलिए आपको ले

चलते हैं 90 के दशक की उस मासूमियत भरी दुनिया में। फिल्म कभी हाँ कभी ना का ये गीत अपने सरल और ठहरे हुए भाव के लिए याद किया जाता है। इसके शब्द हिंदी सिनेमा के दिग्गज गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे और संगीत है जतिन ललित का। इसकी रचना की विशेषता है इसकी हल्की अकूस्टिक बनावट, जिसमें गिटार और अकॉर्डियन जैसी ध्वनियां गीत का भाव सहारा देती हैं और उसे भारी और म्यूजिक हैवी नहीं बनाती। तो आइए सुनते हैं कुमार सानू के आवाज में इस गीत का संयमित और शांत स्वर प्रवाह और याद करते हैं पहले प्रेम के उस दौरे को।

श्रोताओं, क्या आप कभी किसी के सामने आते ही अपने जज्बात बयां करने से झिझक जाते हैं? 90 के दशक की ब्लॉकबस्टर फिल्म साजन का एक ऐसा ही मधुर गीत है जो आपकी इसी तमन्ना को बयां करता है। आइए सुनते हैं 90 के दशक का ये सदाबहार रोमांटिक गीत, जिसे नदीम श्रवण ने संगीतबद्ध किया है, समीर ने लिखे हैं इसके बोल और इसे कुमार सानू और अलका याग्निक ने अपनी आवाज दी है।

वर्ष 1998 की फिल्म कुछ कुछ होता है का ये शीर्षक गीत अपने समय के सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से एक है। गीत के शब्द समीर ने लिखे और संगीत दिया है जतिन ललित ने। उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजें इसे एक सहज रुमानी प्रवाह देती हैं। आइए सुने

श्रोताओं, साल 1997 में जब यश चोपड़ा साहब ने कहा कि दिल तो पागल है, तो पूरी दुनिया ने उनके सिरों पर यकीन कर लिया। उस फिल्म का ऐसा गीत है जिसने हर धड़कन को एक नई रफ्तार दी। अभी कुछ ही पलों में सुनेंगे। संगीत के उस्ताद और साउंड इंजीनियर्स जानते हैं कि 90 के दशक के अंत में जहां हर कोई कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक ड्रम बीट्स की तरफ भाग रहा था, तो संगीतकार उत्तम सिंह ने इस गाने की आइकॉनिक धड़कती हुई थाप पूरी तरह लाइव रिकॉर्ड की। दर्जनों ढोलक और कॉन्गो वादनों ने स्टूडियो में एक साथ लाइव परफॉर्म करके अद्भुत सिंक्रोनाइजेशन पैदा किया और आज भी ये अनोखा है। आनंद बख्शी साहब के लिखे और लता जी और उदित नारायण की आवाजों से सजे इस जादुई लाइव रिदम का आइए एक बार फिर आनंद लेंगे। पर उससे पहले इस स्मृतियों के संसार को सुरों की ये सुंदर यात्रा में अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां मैं आपसे आज के लिए विदा ले रही हूं। चाहे वो पिंक फ्लॉयड के बेस गिटार की वो चमत्कारी धड़कन हो या स्टूडियो में दर्जनों वादकों का ये संजीव संगीत हो, साधारण रसोई के कार्य हो या इनको कविता में ढालने की कला, ये सब इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हमारी संस्कृति का संगीत कितना समृद्ध और अनूठा है। तो आइए एक और रोमांचक गीत के साथ आपसे विदा लेती हूँ। गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। प्रियांशी भटनागर का आपको नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई प्रस्तुतियों के साथ भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया। प्रधानमंत्री श्री सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा है कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि द्विभाषी व्यवस्था के कारण भारतीय प्रबंध संस्थानों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली और तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। अगले 3 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने का अनुमान है। उधर महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्रोताओं, हाल ही में E20 कार्यक्रम को लेकर एक दावा काफी चर्चा में रहा। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया कि सरकार ने उच्चतम न्यायालय में E20 कार्यक्रम को केवल एक प्रयोग बताया है और इसका असर अभी देखा जाना बाकी है। लेकिन बाद में भारत के अटॉर्नी जनरल के कार्यालय ने इस दावे को पूरी तरह गलत बताया और स्पष्ट किया कि उच्चतम न्यायालय में सरकार की ओर से ऐसा कोई बयान नहीं दिया गया था। अदालत में सुनवाई एथेनॉल के आवंटन से जुड़े मामलों के हस्तांतरण पर हुई थी, जो अलग अलग उच्च न्यायालयों में लंबित है, न कि E20 कार्यक्रम की उपयोगिता या उसकी सफलता पर। श्रोताओं, ये मामला इकलौता नहीं है, ऐसे कई दावे और भ्रामक खबरें खूब सुर्खियां बटोर रही हैं। तो आखिर E20 को लेकर फैले इन दावों में कितनी सच्चाई है, आइए एक एक करके इन मिथकों और उनके पीछे के तथ्यों को समझते हैं।
1: सबसे पहले बात माइलेज की। अक्सर कहा जाता है कि E20 से गाड़ी का माइलेज 30% तक कम हो जाता है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार ये बात सही नहीं है। असल में माइलेज इस बात पर ज्यादा निर्भर करता है कि गाड़ी कैसे चलाई जा रही है और वाहन का रख रखाव कैसा है। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि E20 इस्तेमाल करने पर वाहन की वारंटी खत्म हो जाएगी और बीमा का दावा स्वीकार नहीं होगा, लेकिन वाहन कंपनियों और बीमा क्षेत्र ने स्पष्ट किया है कि तय मानकों के अनुसार E20 का इस्तेमाल करने से वारंटी या बीमा पर कोई असर नहीं पड़ता। सोशल मीडिया पर ये दावा भी किया जाता है कि गन्ने का रस सीधे पेट्रोल में मिला दिया जाता है, लेकिन ये पूरी तरह गलत है। ईंधन में इस्तेमाल होने वाला एथेनॉल सीधे गन्ने का रस नहीं होता, इसे गन्ने के रस, शीरे, टूटे हुए चावल और मक्का जैसे कच्चे पदार्थों के औद्योगिक प्रक्रिया के बाद तैयार किया जाता है। इसके बाद गुणवत्ता जाँच पूरी होने पर ही इसे पेट्रोल में मिलाया जाता है। एक और दावा है कि 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 10,000 लीटर पानी खर्च होता है। विशेषज्ञों के अनुसार ये भी सही नहीं है। एथेनॉल संयंत्र में 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए केवल लगभग 3 से 5 लीटर प्रसंस्कृत पानी का उपयोग होता है। हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो भी वायरल हुए जिनमें दावा किया गया कि E20 में चीनी होने के कारण चींटियां और मधुमक्खियां वाहन के फ्यूल टैंक के पास जमा हो जाती हैं। लेकिन विशेषज्ञों ने इसे भी गलत बताया है। उनका कहना है कि ईंधन में इस्तेमाल होने वाले इथेनॉल में कोई चीनी नहीं बचती, इसे पूरी तरह शुद्ध करने के बाद ही पेट्रोल में मिलाया जाता है, इसलिए E20 और चींटियों या दूसरे कीड़ों के बीच किसी तरह का वैज्ञानिक संबंध नहीं है। एक और भ्रम यह है कि इथेनॉल पानी सोख लेता है, जिससे ईंधन और फ्यूल टैंक खराब हो जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी वाहन के फ्यूल टैंक में पानी जाना ठीक नहीं होता, चाहे उसमें सामान्य पेट्रोल हो या E20। आधुनिक वाहन में इसे रोकने के लिए पहले से ही डिजाइन और सुरक्षा प्रबंध किए जाते हैं।
0: श्रोताओं, E20 को लेकर सबसे बड़ा सवाल पुराने वाहनों को लेकर उठाया जाता है। कई लोगों के मन में ये आशंका रहती है कि क्या 2023 से पहले बनी गाड़ियों में E20 ईंधन का इस्तेमाल सुरक्षित है। हाल ही में आयोजित प्रेस वार्ता में मारुति सुजुकी के कॉरपोरेट मामले के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी राहुल भारती ने इसी सवाल का जवाब दिया। उन्होंने बताया कि E20 लागू करने से पहले पुराने वाहनों पर भी व्यापक परीक्षण किए गए थे। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या बताया।
2: इंडिया मैंडेटेड, भारत में वर्ष 2023 से E20 ईंधन को ध्यान में रखकर गाड़ियों के निर्माण की व्यवस्था लागू की गई। उससे पहले E10 के हिसाब से गाड़ियां बनती थी, इसलिए 2023 के बाद बनी नई गाड़ियों और E20 ईंधन को लेकर किसी तरह की चिंता की बात नहीं है। लोगों के मन में सवाल ज्यादा उन गाड़ियों को लेकर है जो 2023 से पहले बनी थी। क्या उनमें E20 ईंधन इस्तेमाल किया जा सकता है? इसका सीधा जवाब है कि वाहन बनाने वाली कंपनियां अपनी गाड़ियों की हर स्तर पर अच्छी तरह जांच और परीक्षण करती हैं। गाड़ियों को इस तरह बनाया जाता है कि उनमें सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। हमने 2023 से पहले बनी E10 गाड़ियों पर भी E20 ईंधन के साथ सभी जरूरी परीक्षण किए हैं। इन परीक्षणों में इंजन पुर्जों की घिसाई, जंग लगने या गाड़ी की उम्र पर किसी तरह का नुकसान नहीं पाया गया, इसलिए हमारे परीक्षणों में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई जिससे चिंता की जरूरत हो।
0: श्रोताओं, आज के समय में ऊर्जा सुरक्षा किसी भी देश की आर्थिक और रणनीतिक मजबूती का महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। हाल के पश्चिम एशिया संकट के दौरान भी दुनिया के कई देशों में पेट्रोल और ईंधन की कीमतों में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली, लेकिन भारत में पेट्रोल की कीमतों में बहुत बड़ी उथल पुथल नहीं हुई। इसका एक बड़ा कारण ये रहा कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में ऊर्जा के क्षेत्र में केवल आयात पर निर्भर रहने के बजाय ऊर्जा के स्रोतों में विविधता लाने और आत्मनिर्भरता बढ़ाने की दिशा में लगातार काम किया। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण भी इसी व्यापक रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम यानी EBP को आइए हम विस्तार से समझते हैं।
1: भारत अपनी जरूरत का लगभग 88.5% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। ऐसे में दुनिया में कहीं भी युद्ध, तनाव या आपूर्ति में रुकावट का असर भारत पर भी पड़ सकता है। यही कारण है कि ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को अपनी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2003 में हुई। वर्ष 2013-14 में पेट्रोल में एथेनॉल की हिस्सेदारी 1.5% से भी कम थी, जो वैज्ञानिक परीक्षणों के बाद वर्ष 2025-26 में बढ़कर 20% पहुँच गई है। इस अवधि में एथेनॉल की खरीद करीब 38 करोड़ लीटर से बढ़कर 1200 करोड़ लीटर से अधिक होने का अनुमान है। वहीं देश की उत्पादन क्षमता वर्ष 2014 के 421 करोड़ लीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में लगभग 2000 करोड़ लीटर हो गई है। वर्ष 2014-15 से मई 2026 तक इस कार्यक्रम से देश ने 1,90,000 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा बचाई है। साथ ही 310 लाख मीट्रिक टन से अधिक कच्चे तेल की जरूरत कम हुई। लगभग 930 लाख मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी आई और गन्ना, मक्का तथा चावल से बनने वाले एथेनॉल की बढ़ती मांग से किसानों के लिए भी आय के नए अवसर बने हैं। भारत इस दिशा में अकेला नहीं है। अमेरिका, ब्राजील, जापान, कनाडा, थाईलैंड और यूरोपीय देश भी वर्षों से एथेनॉल मिश्रित ईंधन का उपयोग कर रहे हैं। जापान ने भी चरणबद्ध तरीके से एथेनॉल मिश्रित ईंधन को अपनाया है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: श्रोताओं, भारत में एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को केवल एक वैकल्पिक ईंधन के रूप में नहीं, बल्कि ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने की दीर्घकालिक रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। इन्हीं विषयों पर हाल ही में आयोजित प्रेस वार्ता में ऊर्जा क्षेत्र की विशेषज्ञ और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड की पूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक वर्तिका शुक्ला ने विस्तार से जानकारी दी। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा।
3: एथेनॉल ब्लेंडिंग इन पेट्रोल।
4: पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का फैसला एक दिन में नहीं लिया गया। इसे सोच समझकर वैज्ञानिक तरीके और चरणबद्ध ढंग से आगे बढ़ाया गया। साल 2013-14 में पेट्रोल में करीब 1.5% एथेनॉल मिलाया जाता था। इसके बाद धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 20% तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया, जो दिसंबर 2025 में पूरा हुआ। खासकर 2018 के बाद इस कार्यक्रम को तय योजना के तहत आगे बढ़ाया गया। इस पर सभी संबंधित पक्षों से चर्चा की गई। ऑटोमोबाइल कंपनियों और जांच करने वाली संस्थाओं ने इसकी अच्छी तरह जांच और परीक्षण किए। दुनिया के कई देश भी कार्बन उत्सर्जन कम करने और ईंधन को ज्यादा पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए इसी तरह के कदम उठा रही हैं। हाल में पश्चिम एशिया में आए संकट के दौरान भी इसका फायदा देखने को मिला। पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने से कच्चे तेल के आयात की जरूरत कुछ कम हुई और देश भर में लोगों को ईंधन की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिली।
0: एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम केवल पेट्रोल में एक नया ईंधन मिलाने की पहल नहीं है, ये कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करने, ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत बनाने, प्रदूषण घटाने और किसानों के लिए नए अवसर तैयार करने की दिशा में भारत की एक दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है। श्रोताओं, आज के विश्लेषण में बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया था हमारे सहयोगी अनिकेत ने, तकनीकी सहयोग अरुणदीप सिंह।
5: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वस्य त्रिदेशीय हिंद प्रशांत प्रवासस्य प्रथमे चरणे इंडोनेशिया देशस्य जकार्तायां संप्राप्तवान्। केंद्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह अवदत् यत् सहकार आंदोलनम् परिष्कार अंकीकरण व्यावसायिक प्रबंधनानां माध्यमेन विस्तारस्य नूतने चरणे प्रविशति। भगवतः जगन्नाथस्य रथयात्रायाः अवसरे 300+ विशेष रेलयानानि प्रचालयिष्यन्ते इति रेलमंत्री अश्विनी वैष्णवः प्रावोचत्। भारत ऋतु विभागेन अद्य गुजरात कोंकण गोवा मध्य प्रदेश महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ प्रदेशेषु अतिवृष्ट्यै रक्तवर्णीया संचेतना प्रसारिता अस्ति। अपि च फीफा

0: विश्वकप क्रीडायां पुर्तगाल देशः स्पेन देशं राउंड ऑफ 16 इत्यस्यां क्रीडायां सम्मुखी करिष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वस्य त्रिदेशीय हिंद प्रशांत प्रवासस्य प्रथमे चरणे इंडोनेशिया देशस्य राजधान्यां जकार्तायां संप्राप्तवान्। जकार्ता विमानपत्तने इंडोनेशिया देशस्य राष्ट्रपतिना प्रवोवो सुबियांतो इत्यमुना स्वयं उपस्थाय प्रधानमंत्रिणः भव्यं स्वागतं विहितम्। तत्र स्थानीय समुदायेन प्रवासी भारतीयैश्च पारंपरिक सांस्कृतिक प्रस्तुतिभिः सह तस्य उत्साहपूर्णं अभिनन्दनं कृतम्। 18,000+ द्विपक्षीय संबंधानां व्यापक रणनीतिक सहयोग स्तरस्य प्राप्तेः परं प्रधानमंत्रिणः इयं प्रथमा द्विपक्षीय यात्रा अस्ति। श्रीमोदी प्रवासे राष्ट्रपतिना प्रवोवो इत्यमुना साकं द्विपक्षीय वार्तां विधाय संबंधानां समीक्षां विधास्यति। सहैव सांस्कृतिक नगरे योग्याकार्ता स्थितं ऐतिहासिकं प्रम्बानन मंदिर परिसरमपि द्रक्ष्यति, यत्र भारत इंडोनेशिया देशौ मिलित्वा संरक्षण कार्यं करिष्यतः। अत्रावसरे प्रधानमंत्री जकार्ता नगरे प्रवासी भारतीयानां समूहमपि संबोधयेत्। प्रस्थानात् पूर्वं प्रदत्ते स्वकीय वक्तव्ये तेन निगदितं यत् प्रवासोऽयं भारतस्य एक्ट ईस्ट नीतेः महासागरीय दृष्टिकोणस्य सहैव मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्रस्य च लक्ष्यं सुदृढीकरिष्यति। यात्रायाः द्वितीये चरणे 8 दिनांकात् 10 दिनांकं यावत् प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया देशस्य प्रधानमंत्रिणः एंथनी अल्बनीज इत्यस्य निमंत्रणं स्वीकृत्य मेलबर्न नगरे गमिष्यति, यत्र सः रक्षा सुरक्षा व्यापार निवेश उच्च प्रविधि क्षेत्रेषु विस्तृत चर्चां विधास्यति। सहैव तृतीय भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलने भागं भजिष्यति। अंतिमे चरणे जुलाई मासस्य 10-11 दिनांकयोः सः न्यूजीलैंड देशस्य प्रधानमंत्रिणः क्रिस्टोफर लक्सन इत्यस्य आवाहने ऑकलैंड नगरं प्राप्स्यति। विगत 40 वर्षेषु कस्यचित् भारतीय प्रधानमंत्रिणः इयं प्रथमा न्यूजीलैंड यात्रा वर्तते, यत्र आर्थिक व्यापारिक सहयोगं वर्धयितुं मंत्रणा भविष्यति। प्रधानमंत्रिणा नरेंद्र मोदिना अद्य आध्यात्मिक गुरुं पवित्रं परमं दलाई लामा वर्यं तस्य 190वें जन्मदिने शुभाशयाः प्रेषिताः। सामाजिकान्तर्जालीये पटले लिखिते संदेशे श्रीमोदी अवदत् यत् तस्य शान्तेः सौहार्दस्य च सन्देशः सम्पूर्णे विश्वस्मिन् जनानां कृते मार्गदर्शक शक्तित्वेन विद्यते। प्रधानमंत्री अवदत् यत् दलाई लामा वर्यस्य नैतिकं आध्यात्मिकं च जीवनं वैश्विक कल्याणार्थं तस्य प्रतिबद्धतां प्रदर्शयति। अत्रावसरे सः दलाई लामा वर्यस्य दीर्घं स्वास्थ्यं च जीवनं प्रार्थयत्। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदं इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाह अद्य अवदत् यत् सहकार आन्दोलनं परिष्कारस्य अंकीकरणस्य व्यावसायिक प्रबन्धनस्य च माध्यमेन विस्तारस्य नूतने चरणे प्रविशति। सहकारिता मंत्रालयस्य पंचमं स्थापना दिवसं संबोधयन् श्री शाह अवदत् यत् प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे 500 उत्तम प्रदर्शन सहकार संस्थानां परिचयं कर्तुं श्रेणी संरचना घोषिता अस्ति। गृहमंत्री श्री शाह सहकारिता मंत्रालयस्य प्रशंसाम् अकरोत् यत् विगत 5 वर्षाणि यावत् सहकारस्य माध्यमेन समृद्धेः मंत्रस्य अनुसरणं कृत्वा कोटिशः जनानां जीवनं परिवर्तितमस्ति।
1: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रावोचत यत्

0: करना है वो इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे। श्रोताओं, जब आप हमें कॉल करें तब अपने रेडियो सेट की आवाज थोड़ी धीमी रखें ताकि एक बेहतर क्वालिटी के साथ हम दोनों ही लोग एक दूसरे को सुन सकें। प्रश्नों के उत्तर और चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार। दीपशिखा जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन।
1: धन्यवाद प्राची।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू करेंगे यानी कि चर्चा शुरू करेंगे, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां।
2: The benchmark domestic indices continue upward trend. Sensex jumps over 500 points. Nifty settles above 24,400. Asian stock market indices display mixed trend and global crude oil prices decline.
0: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में बढ़त। सेंसेक्स 500 अंकों से अधिक बढ़ा, निफ्टी 24,400 के ऊपर बंद हुआ। एशिया के शेयर बाजार में मिलाजुला रुझान रहा और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें घटी।
2: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not that of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
0: और अब श्रोताओं, आइए जान लेते हैं कि दिन के अंतराल में हमारे दोनों ही प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों ने कैसा प्रदर्शन किया। घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.7% की तेजी आई। दलाल स्ट्रीट पर इस कारोबारी सप्ताह की शुरुआत तेजड़ियों ने की। आज का दिन मिलाकर लगातार चौथे सत्र में तेजी देखी गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर आ गया। विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 लगभग 0.5% बढ़ा, जबकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक में 0.5% से अधिक की तेजी देखी गई।
2: Dalal Street kicked off the trading week on a strong note, with benchmark indices advancing nearly 0.7%. The gains mark the fourth consecutive winning session, reflecting sustained buying interest and positive market sentiment. The Sensex climbed 521 points to close at 78,285. The Nifty added 160 points to settle at 24,430. In the broader market, on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 index rose over 0.4%, while the Small Cap 100 Index gained more than 0.7%.
0: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 15 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में कोटक महिंद्रा बैंक लगभग 4%, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 1.7% और बजाज फिनसर्व में 1% की गिरावट आई। वहीं अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों की अगर बात करें तो HDFC बैंक 3.5% से अधिक, महिंद्रा एंड महिंद्रा 2% और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 1.8% की बढ़त हुई।
2: Sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 19 out of 25 sectors ended in the positive zone. Among the key gainers, realty jumped 1.8%, private bank index rose 1.5%, and mid-small private banks quality tilt index added 1.4%. In contrast, PSU bank index shed 1%, hospitals as well as IT fell 0.6%, and focused IT lost 0.5%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,366 declined, 1,985 companies advanced, and 193 remained unchanged.
0: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 95.40 रुपए पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 101.09 पर कारोबार कर रहा था। दीपशिखा, आज के जो हमारे बाजार की जो चाल रही है उसे आप कैसे देखती हैं? क्या क्या ऐसे किन कारकों को आप मानती हैं जिन्होंने बाजार को तेजी की तरफ एक तरीके से कह सकते हैं जो बाजार को तेजी की तरफ लेकर गए?
1: प्राची, अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों से एक जो सेंस ऑफ रिलीफ रहा है बाजार के ऊपर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो हॉर्मोन्स खुल

0: गया है, कॉन्फ्लिक्ट जो है थोड़ा ईज हो गया है, ऑयल प्राइसेस जो एक हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, वो उसके दाम जो है ईज कर रहे हैं, तो उसका एक मिला जुला असर है। दूसरा जो बाजार में एक ऑप्टिमिज्म है मॉनसून को लेकर के, और जून का जो आप कहें कि तिमाही जो ख़त्म हुआ है
1: जी,
0: उसमें कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस को लेकर के थोड़ा ऑप्टिमिज्म बना हुआ है, क्योंकि ऐसी आशा की जा रही है, ऐसी उम्मीद है कि जो ये वेस्ट एशिया का क्राइसिस था उसका उतना खराब असर शायद अर्निंग्स पर नहीं होगा जैसी पहले आशंका की जा रही थी। क्योंकि अगर आप देखें जिस तरह के आंकड़े आए हैं, अगर आप GST लें या डायरेक्ट टैक्स के आंकड़े लें, तो दोनों आंकड़े जो हैं ये दर्शाते हैं कि शायद कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो हैं जैसी आशंका थी वैसी नहीं, बेहतर ही रहेंगे। तो वो जो ऑप्टिमिज्म है वो बाजार में कुछ हद तक दिखाई दे रहा है।
2: Right, Deepshikha, if I may ask you, you mentioned about the first quarter earnings. Of course, it's coming on the 11th. It starts on the 11th of this month. But I would like to draw your attention to the IT sector in particular. You know, the IT kind of in the past 4 or 5 months now, especially after the West Asian crisis, we saw kind of, you know, declining by quite some considerable points. And now, again, you know, you mentioned about the opening of Hormuz and all, tensions easing, so on and so forth. But still, we see that the IT is still kind of being a laggard. So what sense do you get out of this?
0: Nishit, if you look at the tech sector as a whole, and not just in India, if you look at tech sector in other markets as well, other Asian markets, you've seen that this sector has been quite unnerved, and there has been a lot of upheaval which it has witnessed, largely because of what the AI impact would be. There's been an AI rally in the West. Some of the companies are sort of making strides towards aligning with AI, but again, you know, there is apprehension about what would be the impact of AI, especially on the tech sector. So I think that is playing out in a big way. I think once there is clarity on, you know, once these large IPOs sort of come in the US markets of large AI companies, I think then possibly this hype around the AI and its impact sort of make clear. And then probably investors can take a more sort of reasoned view, and they can get a very clear picture of what is going to happen, what would be the way forward for the tech sector.
2: We'll come back to that, but before that, we are joined in by our first caller from Delhi, Amit Jha. Amit, welcome.
3: Namaskar, sir.
2: Namaskar.
3: Deepshikha, madam, ko namaskar, ma'am.
0: Namaskar, Amit ji.
3: एक तो निशित सर ने सवाल पूछ लिया है किससे रिलेटेड, और मैं दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ मेटल के बारे में पूछ रहा था मैम कि हालिया दिनों में पिछले दो तीन महीने में मेटल के स्टॉक्स काफी, मैम तो क्या रीजन था? दूसरी चीज, जैसे आपने कॉर्पोरेट अर्निंग की बात बताई, तो इतने सारे जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुए हैं, तो क्या हमारी कंपनियां फिर भी उसको डिस्काउंट कर देगी इन प्रभावों को? धन्यवाद।
0: अमित जी, पहला आपका सवाल था जो मेटल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो मेटल क्षेत्र में अगर आप उसको दो भाग में बांट ले, एक तो आपके फेरस मेटल्स हैं और नॉन फेरस मेटल्स हैं, तो फेरस में आप देखें जो केपेक्स एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा कर रही है सरकार, उसका फायदा उसको काफ़ी हद तक मिलेगा और वो असर दिख रहा है इन क्षेत्र के स्टॉक्स पर। और अगर आप नॉन फेरस में देखें तो खासतौर से एल्यूमिनियम में जो है वो तेजी आई है, क्योंकि उसका इस्तेमाल बहुत सारी ऐसे सेक्टर्स में होता है, ईवी इलेक्ट्रिकल्स में, जहाँ पे इस्तेमाल जो है उसका बढ़ा है और खपत बढ़ रही है, डिमांड काफ़ी है, तो इसलिए उसका फ़ायदा इस क्षेत्र को मिल रहा है। कॉपर में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा है और वो काफ़ी हद तक डिमांड जो है इकोनॉमी में कैसी रहती है उस हद तक वो दर्शाता है। और दूसरा आपका जो सवाल था
2: परफॉर्मेंस, यस, ही वाज टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट अर्निंग्स,
0: कॉर्पोरेट अर्निंग्स को लेकर के, तो जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि एक ऑप्टिमिज्म है कि उतनी इम्पैक्ट नहीं हुई है

0: जो कंपनीज थी, जो हालांकि सप्लाई चेन्स काफ़ी हद तक डिसरप्टेड थी, तो उम्मीद कर रहे हैं कि उतना ज़्यादा जो है नुकसान नहीं हुआ है अगर आप आंकड़ों को देखते हैं तो उसी हिसाब से शायद बाजार जो है वो सेंटिमेंट दर्शा रहा है।
1: Right.
2: दीपशिखा, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी बैंकिंग सेक्टर की तरफ। बहुत हम देखें बहुत सेलिब्रेटेड सेक्टर रहा है कुछ पास्ट वीक्स में, तो इसे आप अब आज्ञा ये इस तरीके से ही रहेगा या इसमें आप किसी तरीके के उतार चढ़ाव को आप देख पा रही हैं आने वाले समय में, या निवेशकों के लिए? साथ ही मैं आपसे एक राय भी जानना चाहूँगी मगर इसके बाद।
0: प्राची, अगर आप देखें फाइनेंशियल सेक्टर जो है काफ़ी समय से एक मतलब पॉजिटिव रहा है और काफ़ी निवेशकों को आकर्षित भी किया हुआ है
2: जी।
0: तो ब्याज दरों का मूवमेंट और दूसरा हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसका अपना जो मजबूती है, अपना जो परफॉर्मेंस है, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही उसमें इम्प्रूवमेंट रहा है उनके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में, तो वो सब जो है वो इस क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। कुछ निजी क्षेत्र में कुछ इश्यूज आए थे लेकिन वो कुछ हद तक उनके मैनेजमेंट्स जो हैं वो डिस्पेल कर चुके हैं
2: जी।
0: तो ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर जो है अर्थव्यवस्था में ग्रोथ जो है उम्मीद की जाती है कि गति उसकी बढ़ेगी, तो फाइनेंशियल सेक्टर भी उसको सपोर्ट में आगे उसी हिसाब से बढ़ेगा और उसका असर हमें बाजार में दिखाई दे।
1: या प्राची, यू टॉक्ड अबाउट द बैंकिंग सेक्टर, बट दीपशिखा, जस्ट कपल ऑफ डेज बैक वी सॉ प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटिंग दैट सानन प्लांट ऑफ द सेमी कंडक्टर्स, यू नो, वेर इन इंडिया वुड बी प्रोड्यूसिंग दैट प्लांट, द सीजी प्लांट वुड बी प्रोड्यूसिंग मोर देन 5 billion चिप्स, यू नो, एनुअली, एंड दैट्स ह्यूमंगस नंबर considering it's more important, significant rather, when we consider our dependency on, you know, on the chip imports, especially from countries like China and Taiwan, so on and so forth. Because China, as we all know, can be, you know, a very truant kind of a player, you know, every time, all the time. So now with this semiconductor plant coming up, you know, in big numbers, how do you see this sector playing out? And if I may ask you, what sector or what kind of stocks would you mention? I'm not asking about particular stock names and all, but do you see this sector kind of coming up in the coming times, big time?
0: Nishit, you know, it's an interesting sector if you look at. And the semiconductor, the push that has come from the government side is largely because India wants to remain independent. It wants to ensure that its supply chains are totally insulated. And that is where the entire push is coming from, because we were totally dependent for chip manufacturing. Chips are used in everything.
1: Across the board, yes.
0: Across sectors.
1: Yes.
0: So definitely it is a sunrise sector. But we also have to keep in mind one fact, which is technology can become redundant very, very soon. The kind of development that is happening in the chip technology, it is very, very rapid. So if we definitely are able to keep pace with that, then definitely it's a sector which can be looked at. Apart from that, you have drugs and pharma, you have defense, you have some of the sectors which have interplay with infrastructure development.
1: Electronics,
0: definitely.
1: Yes.
0: So these sectors would definitely have a play going forward. Monsoon, if it as is expected, that if it improves, then definitely the demand would be strong. Then some of the sectors which have interplay in the rural demand sector, the consumer sectors, the FMCG.
1: Absolutely.
2: श्रोताओं, कार्यक्रम में आप अपना सवाल लेकर के हम सबसे जुड़ सकते हैं। आप हमें नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। ये नंबर्स हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106। हमारे साथ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार जी जुड़े हुए हैं जो आपके तमाम सवालों के तमाम जवाब देंगी। आइए आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ। आज एशिया शेयर बाजार मिले जुले रुख के साथ बंद हुआ। ताइवान का ताइएक्स और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी आधा प्रतिशत गिरा, जबकि चीन का शंघाई कॉम्पोजिट

0: इंडेक्स और जापान का निकेई मामूली गिरावट के साथ लगभग स्थिर रहा। उधर हांगकांग का हैंगसेंग 1% से अधिक बढ़ा और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.3% की तेजी आई। आज प्रमुख यूरोपीय शेयर सूचकांकों पर मंदड़िये की पहल देखी गई। अंतिम समाचार तैयार किए जाने तक लंदन का फुटसी 0.3% गिरा। उधर जर्मनी का डैक्स और फ्रांस का कैक मामूली गिरावट के साथ सपाट स्तर पर कारोबार करता नजर आया।
1: Deepshikha, if we talk about the Asian and European markets, mostly we see in the Asian markets today, it's quite mixed, you know. South Korea's Kospi declining, Nikkei as well. And if we look at the European indices, you know, the Germany's DAX and France's CAC were also kind of very flat. So can we say that the initial kind of euphoria which was there, you know, with the Iran-US talks happening, Hormuz opening and all, kind of fizzling out a bit?
2: Nishit, you know, if you look at the Asian markets for the past few sessions, they've been under pressure because of tech. Mm. If you remember, Kospi, tremendous, you know, upheaval there. Mm. Mm. So the impact of AI, these countries which had a very large sort of interface and they were looking at AI in a big way, they have like really sort of been impacted. With regard to Europe, I think it's an interesting trend because it was expected, like you said, with the opening of Hormuz, maybe the performance, we were expecting it to better. But I think probably Europe is in a wait and watch mode, especially with the Fed meeting likely to happen very soon. So maybe, you know, they're waiting for that.
1: We'll come back to that.
0: दिल्ली से हमारे साथ केशव जुड़ रहे हैं। केशव जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: हाँ जी, धन्यवाद मैडम। ये हमें दो बातें पूछनी है। यूलिफ की परिभाषा आप हमें थोड़ा खुल के बताएंगे, क्योंकि हर बार कार्यक्रम में यही बताया जाता है, आप यूलिफ के चक्कर में ना फंस जाएं। जैसे बैंकों में जाते हैं तो हमें कुछ नई नई स्कीम आते हैं, एफडी के एफडी बनाने जाते हैं, तो ये यूलिफ क्या चीज होती है? आप लोग हमें खासकर यही कहते हैं कि यूलिफ मत लेना आप। और दूसरा सवाल मेरा यह है कि सरकार की तरफ से अभी ये सुनने में आया जाता है कि इन्होंने महंगा तेल खरीदा था, वो महंगा तेल खरीदा था कितने समय तक, ये तेल वो खत्म हो जाएगा, ये सस्ता तेल आया तो आने वाले समाज में लोगों को सस्ता तेल पेट्रोल मिलना शुरू होगा। धन्यवाद
2: केशव जी, धन्यवाद आपके सवाल के लिए। मैं आपका दूसरा सवाल सबसे पहले ले रही हूँ, कच्चे तेल के लिए। तो अभी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं उनमें काफ़ी हद तक लॉस बना हुआ है। अगर ये दाम गिरे हुए रहते हैं कुछ अगले 2-3 महीने तक, तब ये लॉसेस जो उनके बुक्स पर हैं वो शायद कवर हो जाएंगे और फिर वो उस स्थिति में होंगे आपको दाम घटाने के। फिलहाल उनकी स्थिति ऐसी नहीं है जो दाम घट पाए। यूलिप्स की आप बात करें और सभी लोग आपको एडवाइस करते हैं उसके खिलाफ, तो यूलिप में जो समस्या रही है, एक तो आपका बहुत लॉन्ग टर्म निवेश होता है, अगर आप उसको बीच में से बाहर निकालना चाहते हैं तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, आपको नहीं मिल सकता है। दूसरा, एक वो मिक्स प्रोडक्ट था, उस निवेश के साथ साथ आपको इंश्योरेंस देता था, तो कहा यह जाता है कि या तो आप एक निवेश के लिए आप अलग एक प्रोडक्ट लें और इंश्योरेंस के लिए आप एक प्योर इंश्योरेंस प्रोडक्ट लें। इंश्योरेंस में आप निवेश नहीं घुसा सकते हैं क्योंकि इंश्योरेंस का मकसद जो है वो अलग होता है।
1: नेक्स्ट कॉलर इज सेतुपति फ्रॉम चेन्नई। सेतुपति,
4: गुड इवनिंग टीम।
1: गुड इवनिंग।
2: गुड इवनिंग सेतुपति।
4: Yeah, this is regarding the ethanol 90% and what time it will be implemented and how much gain we can get, for example, in 0 to 3 years time.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Ethanol, I think government is very clear on the implementation plan. There is they have given some submissions before the Supreme Court also. Government is very, very upbeat on it. There are some issues which have been reported, but I think government has sort of,
1: in fact, they have
2: clarified in a very big
1: way. In fact, Deep Shikha, if I may add to that, there is no fixed kind of a timeline for that, for the ethanol thing to come up. But yeah, pretty soon, Setupati, if I may say, it's going to be implemented pretty soon, in a pretty quick time.

0: अन्य खबरों में श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर पहले इंडोनेशिया में जकार्ता पहुंचे, जहां से उन्होंने अपने तीन देशों के हिंद प्रशांत दौरे की शुरुआत की। ये प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया की चौथी यात्रा है और मई 2018 में भारत इंडोनेशिया संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किए जाने के बाद उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री इंडोनेशियाई राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे और आपसी साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा भी करेंगे।
1: Yeah, Deepshikha, if we talk about Prime Minister's visit to Indonesia, and of course, you know, the Australian tour and the New Zealand tour is also to come up. If we specifically talk of India-Indonesia ties has been been upgraded to comprehensive strategic partnership in 2018 itself, and the Prime Minister in his departure statement as well said that we are going to take forward this, you know, the partnership to the next level. People-to-people ties, trade, defense, security, so on and so forth. How do you see this?
2: No, absolutely. Indonesia, if you look at even within the India-ASEAN, framework, Indonesia is now one of the number one trading partners. Mm. India imports a lot from Indonesia. So definitely, and what we are trying to do is, and what India has been trying to do is, work with its Asian partners, create that ecosystem within the Asia. You know, we had the Look East policy, and I think all the entire Indian Ocean initiative.
1: Mahasagar.
2: So, the entire focus is to develop this entire area, entire economy of that area, strategic. It is of strategic importance. And now, you know, when we saw what happened with the Hormuz Strait. Mm. So keeping the passages open and all these, I think, are very crucial questions and crucial issues which are on the table, which are likely to be taken up in this three-nation tour.
1: Yes.
0: और फरीदाबाद से हमारे साथ सचिन जुड़ रहे हैं। सचिन जी, कृपया अपना सवाल पूछिए।
3: हेलो मार्केट मंत्रालय।
0: हेलो सचिन जी।
3: सो आई एम स्पेसिफिकली आस्किंग क्वेश्चन रिगार्डिंग द डिफेंस सेक्टर एंड द कमोडिटी गोल्ड। सो व्हाट इज योर व्यू ऑन अ शॉर्ट रेंज, आई मीन से शॉर्ट पीरियड ऑफ 4 to 5 months फॉर डिफेंस सेक्टर एंड गोल्ड?
2: सचिन जी, you know, you are looking at a very short-term horizon for the defense sector. Mm-hmm. But if you look at, the emphasis that the government is giving to the defense, it is definitely a sector that should be looked at from medium to long-term. And for short-term, the issue is defense sector stocks have already seen valuations rise. So I would not recommend a very short-term view on this sector.
0: आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, और नोएडा से हमारे साथ आकाश जुड़ रहे हैं। आकाश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: हेलो, गुड इवनिंग मैम, सभी को
0: गुड इवनिंग।
4: आकाश नोएडा से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, जैसे मैम ईस्टर्न नोएडा वो सोना खरीदना ठीक है, और जो रखा हुआ है वो बेच भी सकते हैं नहीं, और चांदी भी, और जिसमें मैम जैसे पहले ज्यादा की जैसे सोना रेट बढ़ गए थे तो सभी ने मैम लेके रख लिया था, अब जैसे रेट डाउन भी हो गए हैं तो क्या हम बेच सकते हैं नहीं, या और भी डाउन हो सकता है रेट अभी या नहीं, या बढ़ भी सकता है बाद में, दोनों बातें हो सकती है, आप बताइए मैम।
2: आकाश जी, सोना जो है अगर आपने देखा कुछ समय से जो है काफी उसमें बहुत तेजी से वो बढ़ा था, और क्राइसिस जब स्टार्ट हुई है, कॉन्फ्लिक्ट जब स्टार्ट हुआ तो उसके बाद बीच में थोड़ी गिरावट आनी शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर अगर आप देखें तो थोड़ा सा चढ़ना शुरू हुआ है, क्योंकि जब चढ़ना शुरू हुआ था पहले तो इसलिए था क्योंकि बहुत सारे जो सेंट्रल बैंक्स थे वो खरीद रहे थे, और अब दोबारा से ऐसा ट्रेंड जो है देखा जा रहा है कि सेंट्रल बैंक्स दोबारा से खरीद रहे हैं सोना, तो उम्मीद की जाती है कि आगे जो है अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू देखते हैं तो सोना जो है उसमें बढ़त हो सकती है।
1: राइट, एंड मूविंग ऑन टू ऑयल सेक्टर नाउ, द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस फेल मॉडरेटली टुडे आफ्टर ओपेक प्लस अग्रीड टू फर्दर इंक्रीज इट्स आउटपुट टारगेट्स फ्रॉम अगस्त।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई प्रस्तुतियों के साथ भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी श्री सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस के साथ तीसरे भारतीय ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्स

0: पुतिन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के पांचवें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली 5 सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देशभर में बनाए जा रहे बहु माध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली में भारतीय प्रबंधन संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषीय व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि द्विभाषीय व्यवस्था के कारण भारतीय प्रबंधन संस्थाओं की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। सरकार ने कहा कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। यह देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। मौसम विभाग ने कहा कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ सकता है। उधर महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले 1 महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Sai Ramujtaba. Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee, Mr. Modi said, the thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India. He said the government is celebrating the 125th birth anniversary of Dr. Shyama Prasad Mukherjee with a 2-year national celebration. The Prime Minister said this celebration began on July 6th of last year and will continue until July 6th of next year.
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगदृष्टा को श्रद्धापूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
1: Prime Minister Narendra Modi arrived at Jakarta in Indonesia today, beginning his high-stakes three-nation Indo-Pacific tour. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora, featuring traditional Indian and Indonesian cultural performances. This is Prime Minister Modi's fourth visit to Indonesia and his first

0: सुर्खियों में
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा और इसके रणनीतिक महत्व पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार प्रोफेसर राहुल मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं श्रेया पाठक।
2: नमस्कार, सुर्खियों में कार्यक्रम के आज के अंक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिवसीय यात्रा पर। इस यात्रा का उद्देश्य तीनों देशों के साथ भारत के संबंधों को नई मजबूती देना है। व्यापार हो, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, शिक्षा, नई तकनीक और भारतीय समुदाय जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी बातचीत होगी। साथ ही यह यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर विजन और फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी आगे बढ़ाने वाली मानी जा रही है। इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर राहुल मिश्रा। प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी, आपका हमारे कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सबसे पहला प्रश्न जो मैं आपसे करना चाहूंगी वो ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो ये यात्रा है इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की, यह तीनों देशों की यात्रा भारत के लिए कितनी महत्वपूर्ण है और आप इस दौरे को किस नजरिए से देखते हैं?
3: देखिए,

0: और खास तौर से जो प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा का जो पहला चरण है इंडोनेशिया की यात्रा, ये मुझे लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसके कई वजह हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इंडोनेशिया आसियान क्षेत्र का, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा देश है, जनसंख्या के मामले में भी, अपनी आर्थिक शक्ति के मामले में भी, और उसकी जो सामरिक जो महत्व है उसका दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए इंडोनेशिया केंद्रीय स्थान रखता है भारत की एक्ट ईस्ट नीति में। साथ ही साथ भारत और इंडोनेशिया के बीच में, खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति प्रबोवो के बीच में जो संबंध है, उनकी जो पर्सनल डिप्लोमेसी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 2018 में जब कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के बीच में साइन हुई थी, तब से लेकर के अभी तक खासी प्रगति दोनों देशों के बीच में हुई है। हमें मालूम है कि पिछले ही साल 2025 में राष्ट्रपति प्रबोवो हमारे भारत के गणतंत्र दिवस पर गेस्ट ऑफ ऑनर थे, और राष्ट्रपति प्रबोवो की प्रधानमंत्री मोदी की लगातार बैठकें होती रही हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दोनों ही देशों के नेता अपने संबंधों को लेकर के सजग हैं और संबंधों को आगे की दिशा में बढ़ाना चाहते हैं। इंडोनेशिया की जहां तक आर्थिक रूप से उसकी जहां तक महत्ता है, वो ये है कि 25 बिलियन का व्यापार दोनों देशों के बीच में है, जिसे इनफॉर्मल अगर हम ट्रेड जोड़े तो वो उससे भी ज्यादा होता है। दोनों ही देशों की इंडो पैसिफिक को लेकर के अपनी एक जो नीति है उसमें समानताएं बहुत सारी हैं। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर के इंडोनेशिया भारत से सीखना चाहता है। भारत की ब्रिक्स प्रेसिडेंसी में इंडोनेशिया का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल होकर के और अपना योगदान देना चाहता है। इसके पहले हमने देखा कि इंडोनेशिया और भारत दोनों ही देशों ने G20 की अध्यक्षता की और किस तरह उन्होंने तमाम जो देश हैं जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को लेकर के ग्लोबल साउथ के विकासशील जो देश हैं वो कैसे अपनी विदेश नीति और सामरिक नीति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है इंडोनेशिया की यात्रा इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा वहां के प्रधानमंत्री अल्बनीजी के निमंत्रण पर है। ऑस्ट्रेलिया, जैसा कि हमें पता है कि भारत का एक बहुत महत्वपूर्ण साझेदार है ओशियानिया या पैसिफिक आइलैंड के क्षेत्र में, दक्षिण इंडियन ओशन के क्षेत्र में, और वहां पर एक दूसरी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों ही क्वाड के सदस्य देश हैं, और इस लिहाज से क्षेत्रीय संतुलन को लेकर के, क्षेत्रीय सामरिक संतुलन को लेकर के दोनों ही देश का जो नजरिया है वो एक जैसा है, और दोनों ही देश चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रूल्स बेस्ड ऑर्डर बना रहे, और इस बात को लेकर के दोनों ही देशों में डिफेंस को लेकर के, सुरक्षा और सामरिक मुद्दों को लेकर के दोनों देशों के बीच में लगातार डायलॉग्स और एक्सचेंजेस भी होते रहे हैं। क्रिटिकल मिनरल्स को लेकर के, सप्लाई चेन रेजिलियंस को लेकर भारत ऑस्ट्रेलिया दोनों ही देश कैनेडा के साथ भी और जापान के साथ भी मिलकर के तमाम तरीके के ट्राइलैटरल मैकेनिज्म्स की भी बात कर रहे हैं। तो इस लिहाज से ऑस्ट्रेलिया का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में व्यापार समझौता होने के बारे में भी काफी बातें चल रही हैं, तो उसको नतीजे तक पहुंचाने के लिए मुझे लगता है कि ये कोशिश होगी। और तीसरा देश है न्यूजीलैंड, जहां पर पिछले साल हमने देखा था कि न्यूजीलैंड की तरफ से भारत की यात्रा हुई थी 2025 मार्च में। न्यूजीलैंड की यात्रा जो है वो इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि दोनों देशों के संबंधों को एक नई दिशा, एक नई गति देनी है। वैसे भी भारत के प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये 40 सालों में पहली यात्रा है, तो इस लिहाज से जो कूटनीतिक संबंध दोनों देशों के बीच में है उनको भी आगे बढ़ाने के लिए न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा महत्वपूर्ण है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, लेकिन उस अभी तक रेटिफिकेशन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है। तो कौन से वो मुद्दे हैं, लेबर मोबिलिटी या एग्रीकल्चर सेक्टर या फार्मास्यूटिकल्स, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें हम अपनी शुरुआत पहले करें, और कौन से वो क्षेत्र हैं जिनमें हमें संभल कर और समझबूझ से चलना है, ये सभी मुद्दे भी भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों में आएंगे। पिछले कुछ वर्षों में देखा है कि भारतीयों का न्यूजीलैंड जाना सर्विसेज के लिहाज से, एग्रीकल्चर के लिहाज से, वहां पर जाकर छोटे मोटे व्यवसाय या स्टार्टअप्स खोलने के लिहाज से न्यूजीलैंड एक बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा है। तो भारतीयों और भारतवर्षियों की भी वहां पर जो मौजूदगी है उस हिसाब से भी न्यूजीलैंड की यात्रा प्रधानमंत्री की बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर हम देखें इसके इस पूरी तीनों देशों की यात्रा को, अगर हम पिछली जो यात्राएं हुई हैं प्रधानमंत्री की उनसे अगर हम जोड़ के देखें, और साथ जापान की प्रधानमंत्री सनाई ताकायची की भारत यात्रा से जोड़ कर देखें, तो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में तमाम जो उभरती हुई शक्तियां हैं और तमाम जो मिडिल पावर्स हैं, भारत जैसे राइजिंग पावर्स और ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, इंडोनेशिया जैसे जो मिडिल पावर्स हैं, ये सभी साथ मिलकर अपनी ऊर्जाओं को, अपनी जो चिंताएं हैं सामरिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, उनको मिलकर साझा साझा करना चाहते हैं, उनको मिलकर बैठकर उनको साझा करना चाहते हैं, और उनको बात के मद्देनजर कि चीन और अमेरिका के जो दोनों ही देशों की जो विदेश और सामरिक नीतियां हैं वो इंडो पैसिफिक के छोटे और मझोले देशों के हितों में नहीं है, तो कैसे उन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए ये देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी विदेश और सामरिक नीति को आगे बढ़ाए, ये मुझे लगता है कि एक बड़ा कनेक्टिंग फैक्टर है प्रधानमंत्री मोदी की पिछली यात्राओं की और साथ में इन तीन देशों की यात्रा के।
1: प्रोफेसर मिश्रा, जैसा आपने अभी बताया कि इंडो पैसिफिक का कितना महत्वपूर्ण एक मुद्दा है, तो प्रधानमंत्री ने ये भी कहा है कि ये यात्रा भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी, महासागर विजन और मुक्त एवं खुले हिंद प्रशांत यानी कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को और मजबूत करेगी, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं?
0: देखिए, इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कभी भी भारत ने किसी दूसरे देश को नहीं दी, इंडोनेशिया ने भी किसी दूसरी महाशक्ति को नहीं दी। इंडो पैसिफिक का जो क्षेत्र है उसके कई महत्वपूर्ण पहलू हैं, कई डिफाइनिंग फीचर्स हैं, उसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है अमेरिका और चीन के बीच में सामरिक जो रस्साकशी है, लेकिन इसके साथ ही दो और महत्वपूर्ण पहलू हैं। पहला, भारत की और भारत के साथ जापान की, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इन तमाम देशों की इंडो पैसिफिक को लेकर के एक बड़ी ही मुखर और बहुत ही स्पष्ट नीति का होना कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हम किन्हीं भी दूसरे देशों को हम इंडो पैसिफिक क्षेत्र की सुरक्षा या रूल्स बेस्ड ऑर्डर से खिलवाड़ करने नहीं देंगे। तो इस लिहाज से हम देखते हैं कि भारत की नीतियों में और ऑस्ट्रेलिया, जापान या इंडोनेशिया की जो खुले और मुक्त इंडो पैसिफिक क्षेत्र की जो नीति है उसमें बड़ी समानताएं हैं, और इन्हीं समानताओं के चलते आसियान की भी अपनी एक इंडो पैसिफिक का आउटलुक है, आसियान आउटलुक ऑन इंडो पैसिफिक, जिसमें बहुत सारी समानताएं भारत के इंडो पैसिफिक विजन से या महासागर विजन से। तो क्योंकि इन तमाम देशों की इंडो पैसिफिक को लेकर के उनकी चिंताएं, उनकी आकांक्षाएं और उनके हित आपस में जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये देश चाहते हैं कि इंडो पैसिफिक को लेकर के एक बड़े लेवल पर एक कंसेंसस रहे, और इस कंसेंसस के साथ साथ इन देशों के बीच में आपसी सामंजस्य बढ़े, और यही मुझे लगता है इंडो पैसिफिक क्षेत्र को सुरक्षित और स्थिर और शांतिपूर्ण बनाने में मदद करेगा, और यही इन देशों की भूमिका है इंडो पैसिफिक को लेकर।
1: इस दौरे में व्यापार, निवेश, शिक्षा या फिर नवाचार और कई सारी नई तकनीकों पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है, इन क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने से भारत को क्या प्रमुख लाभ मिल सकते हैं, इस पर आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा समझाएं।
0: देखिए, भारत के साथ तमाम देशों के, भारत के साथ इंडोनेशिया का जहां तक सवाल है व्यापार और निवेश का, ऊर्जा के क्षेत्र में, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में आपसी व्यापार को खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स के क्षेत्र में आगे बढ़ाना, और सर्विसेज सेक्टर में भारत की अपनी जो क्वालिटीज हैं उसको इंडोनेशिया तक पहुंचाना, और भारत और इंडोनेशिया के व्यापार को आगे आने वाले वर्षों में 50 बिलियन तक पहुंचाने की कोशिश ये दोनों देश कर रहे हैं। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच में व्यापार को लेकर बहुत सारी कॉम्प्लीमेंटैरिटीज है, लेकिन दोनों देशों के बीच में कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, और यही भारत और इंडोनेशिया दोनों ही देश ये कोशिश कर रहे हैं कि कैसे अपनी कॉम्प्लीमेंटैरिटीज को आगे बढ़ाते हुए कंपटीशन को कम से कम रखा जाए, आपसी सामंजस्य से ये दोनों अर्थव्यवस्थाएं तेजी से आगे बढ़े। जैसे लेबर मोबिलिटी एक बहुत बड़ा उसका पहलू है, जिसमें हम देखते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया में इंडोनेशिया का ब्लू कॉलर जो लेबर है वो तमाम देशों, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे मलेशिया हो, ब्रुनेई हो, वहां मौजूद होता है। भारत की भी लेबर मोबिलिटी को लेकर के, आउटबाउंड लेबर मोबिलिटी को लेकर के बड़ा दखल रहा है, और भारतीय आमतौर पे ब्लू कॉलर जॉब्स में भी और व्हाइट कॉलर सर्विसेज सेक्टर में भी भारत से बाहर जाते रहे हैं, और दक्षिण पूर्व एशिया एक बड़ा आकर्षण का केंद्र रहा है। तो इस लिहाज से दोनों देशों के बीच में आर्थिक कॉम्प्लीमेंटैरिटी को कैसे बढ़ाया जाए ये महत्वपूर्ण है। इंडोनेशिया में कोयले को लेकर के और ऑयल और गैस को लेकर के तमाम बातचीत चल रही है, अभी कोई इस संदर्भ में तार्किक परिणति तक कोई एग्रीमेंट पहुंचा नहीं है, लेकिन इस पर मुझे लगता है काफी बातचीत होगी। ऑस्ट्रेलिया के साथ, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप या RCEP जिसे हम कहते हैं उसका एक हिस्सा है, अगले साल RCEP के 10 साल भी पूरे हो रहे हैं, तो ये कोशिश जरूर होगी कि भारत को RCEP में लाया जाए, और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो व्यापार समझौता है उसके तहत भी ऑस्ट्रेलिया ये कोशिश जरूर करेगा कि भारत एक क्षेत्रीय आर्थिक इकोसिस्टम का भी हिस्सा बने। ऑस्ट्रेलिया के साथ जहां तक संबंधों का सवाल है, भारत की नीति ये रही है कि ऑस्ट्रेलिया से क्रिटिकल मिनरल्स, यूरेनियम जिस पर एग्रीमेंट हो चुका है, और तमाम ये इस तरह के जो प्रोडक्ट्स हैं उसको इम्पोर्ट किया जाए एग्रीकल्चर सेक्टर में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक बड़ी शक्ति है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को आपसी व्यापार समझौतों से अलग रखा जाए, और सर्विसेज के क्षेत्र में, हायर एजुकेशन के क्षेत्र में, रक्षा और रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में दोनों देशों के बीच में कोऑपरेशन को आगे बढ़ाया जाए। न्यूजीलैंड, जैसा मैंने पहले कहा कि न्यूजीलैंड के साथ आर्थिक संबंधों को लेकर के और न्यूजीलैंड का भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में निवेश को लेकर के भारत ने न्यूजीलैंड को एक बड़ा साझेदार माना है और ये कोशिश की है कि न्यूजीलैंड का भारत में निवेश हो, निवेश भारत में हुआ भी है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। दोनों देशों के बीच में व्यापार अभी $3 बिलियन भी नहीं पहुंचा है, तो मुझे लगता है उस क्षेत्र में कैसे दोनों देशों के व्यापार को आगे बढ़ाया जाए ये भारत की कोशिश है और मुझे लगता है इस पर भी काम इस यात्रा के दौरान होगा।
1: प्रधानमंत्री की जो ये तीनों देशों की यात्रा है इसमें उन्होंने भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करने की बात कही है। विदेशों में रहने वाले जो भारतीय हैं, जो भारत की अर्थव्यवस्था, निवेश, संस्कृति और वैश्विक छवि को मजबूत करने में किस तरह से योगदान देते हैं, और आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की जो ये समुदाय से जो उनका ये मुलाकात होगा वो किस तरीके से महत्वपूर्ण है?
0: देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी की विदेश नीति में भारतीयों का और भारत वंशियों का, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं NRIs, नॉन रेजिडेंट इंडियंस, और PIOs, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, दोनों पर बहुत खास ध्यान रहा है। तो भारतीयों और भारत वंशियों से हमेशा अपनी हर यात्रा के दौरान वो उन्होंने उनके साथ बातचीत की है, उनके साथ मुलाकात की है, उनको संबोधित किया है और उनके दुख दर्द को जानने की कोशिश की है, उनकी इच्छाओं आकांक्षाओं को भी समझने की कोशिश की है। इंडोनेशिया में भी भारतीयों के साथ मुलाकात, भारत वंशियों के साथ मुलाकात होगी। ऑस्ट्रेलिया में बड़े स्तर पर होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में लाखों की संख्या में भारतीय और भारत वंशी रहते हैं। भारतीयों के तौर पर ज्यादातर भारतीय विद्यार्थी जो वहाँ हायर एजुकेशन में जाते हैं, टर्शरी एजुकेशन में, MA या प्रोफेशनल कोर्सेज या PhD के लिए जाते हैं, और जो वहाँ पे सर्विसेज सेक्टर में भारत के प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स वहाँ पे मौजूद हैं, और साथ ही साथ डायस्पोरा के जो तमाम लोग हैं जिनकी एक अच्छी खासी संख्या ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त है। न्यूजीलैंड में भी अब भारतीयों और भारत वंशियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि न्यूजीलैंड में भी सर्विसेज सेक्टर में भारत एक बड़ी शक्ति के तौर पर उभरा है। भारत वंशियों की भी अब संख्या बढ़ रही है, क्योंकि तमाम भारतीयों, खासतौर से पंजाब जैसे देशों से तमाम भारतीय न्यूजीलैंड में जाकर माइग्रेट हो गए हैं और वहां सेटल हो गए, तो उनको भी समझने और उनके साथ भी बातचीत करने की कोशिश होगी। डायस्पोरा हमेशा से प्रधानमंत्री मोदी जी की विदेश नीति में एक बहुत अहम स्तंभ रहा है, और इस कितनी इसको इम्पोर्टेंस इस भारतीय विदेश नीति में आज दी जा रही है, ये मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के तमाम इन तीनों देशों में जो संबोधन होंगे उनसे ये ज्यादा स्पष्ट होगा।
1: प्रोफेसर राहुल मिश्रा जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही सरल भाषा में आपने हमारे श्रोताओं को समझाया कि यह प्रधानमंत्री की जो यात्रा है तीनों देशों की, यह कितनी महत्वपूर्ण है और ये विकसित भारत का लक्ष्य पाने में कितनी मदद करेगी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सुर्खियों में

आकाशवाणी एफएम गोल्ड आप सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। वक्त हुआ है 7:25 और 40 सेकंड और ये जो वक्त होता है ये होता है सांझ ढले का। सांझ ढले के साथ मैं हूँ रजनी और शुरुआत करते हैं परदेसी फिल्म के गीत के साथ।

परदेसी फिल्म से गीत आपने सुना, आवाज थी मीना कपूर की। मीना कपूर के पिता विक्रम कपूर थे जो कि न्यू थिएटर स्टूडियो में काम करते थे, और उनका जो परिवार था वो निर्माता पीसी बरुआ से भी संबंधित था। और मीना कपूर जब बहुत छोटी ही थी तभी नीनू मजूमदार और एसटी बर्मन जैसे संगीतकारों ने उनकी प्रतिभा को पहचान लिया था, और 1940 में यानी कि सिर्फ 10 बरस की उम्र में ही उन्होंने पार्श्व गायिका के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। अभी ये गीत आपने फिल्म परदेसी से सुना, उन्हीं के आवाज में यानी मीना कपूर की आवाज में अगला गीत आपको सुनवाते हैं फिल्म आंखें से।

ये गीत था 1950 की फिल्म आंखें से, जो कि फिल्माया गया था ननिली जयवंत पर। और आपको बता दें कि ये जो फिल्म थी, ये म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे, इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर के तौर पे मदन मोहन की पहली फिल्म थी। और इसके साथ अगला गीत फिल्म अनमोल घड़ी से, आवाज़ है नूरजहां की।

0: कि एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: माँ हमें जीवन देती है और पेड़ उस जीवन को सांसें देते हैं। इस बार
3: माँ के सम्मान में, धरती माँ के उत्थान में,
2: दिल्ली वन एवं वन्य जीव विभाग लेके आ रहा है मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान, एक पेड़ माँ के नाम।
3: दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा वन भागीदारी पौधारोपण अभियान, जिसका शुभारंभ 7 जुलाई को माननीय गृह एवं

0: बड़ी चंचल, आंचल में क्या जी।
1: आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज में ये गीत था फिल्म 9-2-11 से। और अगला गीत आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में, फिल्म का नाम है 16 साल। इस फिल्म के निर्देशक राज खोसला थे और ये फिल्म उन्होंने लिखी भी थी और साथ ही इसमें उन्होंने एक छोटा सा कैमियो रोल भी निभाया था।

16 साल से गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, और इसी के साथ फिलहाल सांझ ढले से रजनी को इजाज़त दीजिए। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।

0: ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
1: ओह लवली, वेल डन।
0: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
1: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
2: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
1: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से ईएमआई चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
2: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
1: आप कौन?
3: आरबीआई कहता है।

0: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की नई पहल, राजधानी में 32,000 चार्जिंग प्वाइंट लगाने का लक्ष्य। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने बच्चों पर अत्याचार की रोकथाम के पॉक्सो कानून के अंतर्गत दर्ज मामलों पर दिल्ली पुलिस को तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दिल्ली पुलिस ने नकली पहचान दस्तावेज तैयार करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। दिल्ली नगर निगम ने करोल बाग जोन में धूल मुक्त सड़क अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया। और मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में दिल्ली और हरियाणा में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की नई ईवी पॉलिसी एक स्पष्ट कार्य योजना के तहत विकसित की गई है। एक निजी समाचार एजेंसी से बातचीत के दौरान श्रीमती गुप्ता ने बताया कि सरकार ने 32,000 सार्वजनिक ईवी चार्जिंग प्वाइंट लगाने का लक्ष्य रखा है, जिनमें से लगभग 9,000 पहले से ही संचालित हैं।
2: हर व्यक्ति ईवी लेना चाहता है। वर्तमान में लगभग 9,000 ईवी चार्जिंग पॉइंट दिल्ली में है। हमारा टारगेट है 32,000 पे लेके जाएं, और उसके लिए हमने जो RWS

0: है, सोसाइटीज हैं, जो बिजनेस इंस्टीट्यूशंस हैं, उन सबको इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए कि हर एक जगह पर आपके ईवी के चार्जिंग स्टेशंस होने चाहिए। सरकार उसमें पूरी मदद करेगी, सरकार पूरा सपोर्ट करेगी, मैक्सिमम ईवी चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे।
1: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि नई नीति में केवल सब्सिडी ही नहीं बल्कि पुराने वाहनों को स्क्रैप करने के लिए प्रोत्साहन, आवश्यक बुनियादी ढांचे का विकास और ई वेस्ट संयंत्र स्थापित करने की कार्य योजना शामिल है। उन्होंने कहा कि राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए परिवहन के स्वच्छ साधनों को अपनाना समय की आवश्यकता है।
0: ईवी पॉलिसी मुझे लगता है कि दिल्ली की वो जरूरत थी जिसे बहुत पहले पूरा किया जाना चाहिए था। इसे हम एंड टू एंड सॉल्यूशन के साथ लेके आया है। ना केवल इसमें हमने सब्सिडी दी बल्कि इसमें हमने स्क्रैपिंग इंसेंटिव भी दिए, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात भी की और साथ में ई वेस्ट के प्लांट की भी हमने पूरी योजना बना करके जनता के समक्ष रखी है। आज प्रदूषण जो है दिल्ली की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हर वो पक्ष जिसके कारण से पॉल्यूशन हो रहा था उस पर काम किया।
1: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज इस महीने के दौरान मनाए जा रहे बाल संरक्षण माह के अंतर्गत चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों, अभियानों और सुरक्षा उपायों की समीक्षा की। इस दौरान श्री संधू ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि पॉक्सो एक्ट 2012 के अंतर्गत दर्ज सभी मामलों में संबंधित विभागों के बीच बेहतर तालमेल के साथ त्वरित और पूरी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित उपायों को सिर्फ बाल संरक्षण माह के दौरान ही नहीं बल्कि हमेशा प्राथमिकता के तौर पर लागू किया जाए। बैठक के दौरान श्री संधू ने पहली बार अपराध करने वाले किशोरों की काउंसलिंग और पुनर्वास पर भी विशेष बल दिया। उन्होंने इस महीने के अंत तक दिल्ली के सभी 5,500 से अधिक विद्यालयों में बाल संरक्षण समितियों का गठन करने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा से जुड़े सभी कार्यक्रमों और गतिविधियों का प्रभावी और समय बद्ध क्रियान्वयन सुरक्षित किया जाना आवश्यक है। बैठक के दौरान श्रीमती गुप्ता ने निर्देश दिए कि जुलाई माह के भीतर सभी विद्यालयों में मुख्य प्रशिक्षकों और अन्य प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण पूरा किया जाए। दिल्ली पुलिस ने आज नकली पहचान दस्तावेज तैयार करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार यह गिरोह एक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान लेकर नकली पहचान और अन्य सरकारी दस्तावेज तैयार कर उनकी आपूर्ति करता था। पुलिस ने कहा कि मामले की जांच जारी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली नगर निगम ने आज करोलबाग जोन में धूल मुक्त सड़क अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। निगम ने बताया कि 41 दिनों तक चले इस सघन सफाई अभियान के दौरान जोन की सभी मुख्य सड़कों की व्यवस्थित रूप से सफाई की गई। अभियान के दौरान सड़क किनारे बनी नालियों और फुटपाथ से पुरानी जमी हुई धूल को हटाया गया, साथ ही ग्रीन बेल्ट से कूड़ा कचरा और सड़क किनारे पड़े मलबे को भी हटाया गया। निगम ने कहा कि इस अभियान में 22 किलोमीटर लंबी सड़कों को कवर किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप 228 मीट्रिक टन पुरानी धूल और 150 मीट्रिक टन कूड़ा कचरा तथा मलवा हटाया गया। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC कल अपने क्षेत्र के 34 स्थानों पर मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव आयोजित करेगी। NDMC के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का एक अवसर है। एक रिपोर्ट।
2: NDMC के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने बताया कि दिल्ली सरकार के 70 लाख वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ कल गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत लगभग 600 वृक्ष और 50,000 झाड़ियां लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसके लिए NDMC द्वारा 50,000 से अधिक गड्ढे पूर्व तैयार किए जा चुके हैं। श्री चहल ने बताया कि अभियान के तहत पीपल, नीम, जामुन, इमली, चंपा, अशोक, गुलमोहर सहित अनेक देशी और पर्यावरण अनुकूल वृक्ष लगाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त हेमेलिया, कैनी लिली, चांदरी और अन्य सजावटी एवं देशी प्रजातियों की झाड़ियां भी रोपी जाएंगी। श्री चहल ने कहा कि NDMC के लिए वृक्षारोपण केवल एक दिवसीय कार्यक्रम नहीं बल्कि एक सतत जन आंदोलन है। प्रादेशिक समाचार के लिए शिवांग मिश्रा।
1: प्रधान संचार लेखा नियंत्रक कार्यालय दिल्ली अगले महीने की 6 तारीख को नई दिल्ली में पेंशन भोगियों की शिकायतों के समाधान के लिए पेंशन अदालत का आयोजन करेगा। दिल्ली सर्कल के दूरसंचार विभाग, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के पेंशन भोगियों इसमें शामिल हो सकते हैं, जहां पेंशन से जुड़े मामलों जैसे कि PPO जारी करने, सेवा पुस्तिकाओं के रखरखाव और पेंशन वितरण आदि पर विचार किया जाएगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि यहां अदालती मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा, केवल पंजीकृत शिकायतें ही सुनी जाएंगी। शिकायतों के निपटान के लिए पेंशन भोगी 20 जुलाई तक टोल फ्री नंबर 1800188119 पर कॉल करके और डाक द्वारा संचार लेखा भवन के पते पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़े 2 अलग अलग मॉड्यूल का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में दिल्ली और पंजाब के विभिन्न हिस्सों में छापेमारी कर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास से भारी मात्रा में अवैध हथियार, पिस्तौल और खतरनाक पेट्रोल बम बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि इनमें से 1 मॉड्यूल आतंकी गतिविधियों से जुड़ा था, जबकि दूसरा अवैध हथियारों की तस्करी में शामिल था। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-25 का पुरस्कार वितरण समारोह कल नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
3: कश्मीर विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेता विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और विद्यार्थियों को पुरस्कार वितरित करेंगे। मंत्रालय पिछले 29 वर्ष से विद्यार्थियों में संसदीय प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन कर रहा है। इस प्रतियोगिता में देश भर के 51 विद्यालयों और कॉलेज के विद्यार्थियों ने भाग लिया। युवा संसद योजना का उद्देश्य युवा पीढ़ी में आत्म अनुशासन, विचारों की उचित अभिव्यक्ति और लोकतांत्रिक जीवन शैली के अन्य गुणों को विकसित करना है। नीतिका की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए प्रशांत कुमार।
1: सरकार ने कहा कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। यह देश के एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
4: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। आज दूरदर्शी राजनेता, राष्ट्र निर्माता और प्रतिष्ठित विद्वान श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी को साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि डॉ मुखर्जी का जीवन अडिग राष्ट्र प्रेम का प्रतीक था। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आज शहीदी पार्क स्थित डॉ मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि डॉ मुखर्जी ने अपना पूरा जीवन देश की एकता और अखंडता के लिए समर्पित कर दिया था।
5: डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी, जिन्होंने इस देश की अखंडता का सर्वस्व न्योछावर किया, 75 वर्ष पूर्व जो उन्होंने कहा वो सपना पूर्ण हुआ और धारा 370 को जड़मूल से समाप्त किया गया और कश्मीर के आवाम को एक नई सुबह देखने का अवसर मिला। आज पूरा देश डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार करने के पश्चात एक आत्मसंतुष्टि का भाव हमारे मन में है।
1: दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने कहा कि डॉ मुखर्जी के आदर्श राष्ट्र निर्माण, सुशासन और जनसेवा के लिए सदैव प्रेरणा का स्रोत बने रहेंगे। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि डॉ मुखर्जी आज भी उस नेता के रूप में याद

0: ये जाते हैं जिन्होंने सत्ता से ज्यादा राष्ट्र को महत्व दिया और अपने प्राणों की आहुति देकर एक राष्ट्र एक विधान का संदेश दिया। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समितियां बनाई गई हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय डॉक्टर गुलशन राय के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली और हरियाणा में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। राजधानी दिल्ली में आज बादल छाए रहने के बावजूद लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की नई पहल, राजधानी में 32,000 चार्जिंग प्वाइंट लगाने का लक्ष्य। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने बच्चों पर अत्याचार की रोकथाम के पॉक्सो कानून के अंतर्गत दर्ज मामलों पर दिल्ली पुलिस को तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। दिल्ली पुलिस ने नकली पहचान दस्तावेज तैयार करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। दिल्ली नगर निगम ने करोल बाग जोन में धूल मुक्त सड़क अभियान को सफलतापूर्वक पूरा किया। और मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में दिल्ली और हरियाणा में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
2: आगे सैलरी?
3: हाँ।
2: नहीं झुमके?
3: ना।
2: पहले बचत।
3: पहले झुमके।
2: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
3: लेकिन झुमकों का क्या, जाते हो कि
2: लगाओ इंजेक्शन।
4: आरबीआई कहता है
1: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई प्रस्तुतियों के साथ भव्य और उत्साहपूर्ण स्वागत किया। प्रधानमंत्री श्री सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता गए हैं। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ 3रे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूयॉर्क जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया।

है। बैठक के बाद ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने दान में मिले आभूषण और अन्य कीमती वस्तुओं को भी मीडिया के सामने प्रदर्शित किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि द्विभाषी व्यवस्था के कारण भारतीय प्रबंध संस्थानों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचेगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले तीन दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने का अनुमान है। उधर महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़, भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम तथा पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉ. गुलशन राय के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 8:10:57 आकाशवाणी के एफएम गोल्ड पर। यह समय है मधुरिमा का, साथ में है रजनी। भारतीय शास्त्रीय रागों पर आधारित इस शो में आज बात करेंगे राग अड़ाना की। हिंदी फिल्म गीतों में इसका प्रयोग कम हुआ है, लेकिन जब भी हुआ है तब इसका जादू सुनने वालों के दिल तक पहुंचा है। शुरुआत करते हैं अनपढ़ फिल्म के गीत के साथ, आवाज है लता मंगेशकर की।

राग अड़ाना असावरी थाट का राग है, जिसे गाने का समय है रात्रि का दूसरा पहर। बेटी बेटी से आपको सुनवाते हैं अगला गीत, आवाज है मोहम्मद रफी की।

0: आरजू फिल्म से ये गीत अभी आपने सुना तलत महमूद की आवाज में। और इसी के साथ वक्त हो चला है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का।
1: माँ हमें जीवन देती है और पेड़ उस जीवन को सांसें देते हैं। इस बार
2: माँ के सम्मान में धरती माँ के उत्थान में
1: दिल्ली वन एवं वन्य जीव विभाग लेके आ रहा है मिशन 70 लाख पौधारोपण अभियान, एक पेड़ माँ के नाम।
2: दिल्ली के इतिहास का सबसे बड़ा

0: को और ज्यादा स्वच्छ, हरित और स्वस्थ बनाए।
1: आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं मधुरिमा, और आज मधुरिमा में हम बात कर रहे हैं राग अड़ाना की। इसी पर आधारित अगला गीत आपको सुनवाते हैं। फिल्म का नाम है कैसे कहूं और आवाजें हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की।

उस्ताद आमिर खान की आवाज में अभी आपने सुना फिल्म झनक झनक पायल बाजे का टाइटल सॉन्ग, और इसी के साथ मुझे यानी रजनी को इजाजत दीजिए, लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल। कुछ ही देर में आपके लिए होगा स्पोर्ट्स कैन।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति सिंह और हम एक बार फिर मौजूद हैं खेल के मैदान का सारा लेखा जोखा लेकर के आपके कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। तो आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं हेडलाइंस के साथ। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर सातवीं बार महिला टी20 विश्व कप का खिताब जीता। भारत और इंग्लैंड के बीच पांच टी20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला कल नॉटिंगम में खेला जाएगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में आज रात पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से, तथा इंग्लैंड और नॉर्वे ने फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में नोवाक जोकोविच, यानिक सिनर, नाओमी ओसाका और कोको गॉफ क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। और तीरंदाजी विश्व कप का चौथा चरण कल से स्पेन के मैड्रिड में शुरू होगा।

0: तो सबसे पहले आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम की एक शानदार उपलब्धि के साथ, जिसने सातवीं बार महिला टी20 विश्व कप का खिताब जीत लिया है। कल लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेले गए फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने मेजबान इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर यह खिताब अपने नाम किया।
1: And it's going to be brought up in not the greatest of ways for England, but Australia will take it. And in the backyard of their oldest foe, at the home of cricket, Australia have not just claimed their 7th World T20 title.
2: लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर महिला टी20 विश्व कप के फाइनल में महिला क्रिकेट के इतिहास की दो सबसे सफल टीमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आमने सामने आई। टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड ने 4 विकेट खोकर 150 रन बनाए। टीम ने 11वें ओवर तक 70 के स्कोर पर अपने 4 विकेट गंवा दिए। यहां से कप्तान नेट साइबरब्रंट ने फ्रेया कैंप के साथ 5वें विकेट के लिए 55 गेंदों में 80 रन जोड़कर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। ब्रंट 53 गेंदों में 58 रन और कैंप 28 गेंदों में 44 रन बनाकर नाबाद रहीं। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में यह मुकाबला जीत लिया। पहला विकेट जल्दी गिर जाने के बाद बेथ मुनी और फोएब लिचफील्ड ने 67 गेंदों में 100 रन की साझेदारी करते हुए इस अहम मैच में ऑस्ट्रेलिया की पकड़ मजबूत कर दी। मुनी ने 49 गेंदों में 64 और लिचफील्ड ने 35 गेंदों में 48 रन की पारी खेली। एलिस पेरी ने अंत में नाबाद 13 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को उसका रिकॉर्ड 7वां टी20 खिताब दिलवाया। बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
0: तो वर्ष 2010, 2012, 2014, 2018, 2020 और

0: 2023 के बाद अब ऑस्ट्रेलियाई इतिहास में 2026 भी स्वर्णिम अक्षरों में अंकित हो गया है। और अब बात करते हैं पुरुष क्रिकेट की, जहां भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 मैच कल नॉटिंगम के ट्रेंट ब्रिज में खेला जाएगा। 5 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से पीछे है। ऐसे में श्रेयस अय्यर की मैन्स इन ब्लू के लिए ये मैच में बहुत कुछ दांव पर रहेगा। और इस मैच और क्रिकेट के मैदान की ताज़ा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी प्रशांत। प्रशांत, कल जब भारतीय टीम उतरेगी नॉटिंगम में तो क्या कुछ दांव पर रहने वाला है इस टीम के लिए?
1: शक्ति, अगर कल भारत ये मैच हार जाती है तो आयरलैंड की तरह ही ये मुकाबला, ये सीरीज भी भारत अपने नाम नहीं कर पाएगी। भारत के पास इस मुकाबले को, इस सीरीज को ड्रॉ करने का ही मौका बस बचेगा। अगर हम बात करें विश्व कप जीतने के बाद से लगातार भारत का प्रदर्शन उतना खास नहीं रहा है। पहले आयरलैंड से 2-0 की हार मिली, फिर इंग्लैंड से पहला मैच बारिश के कारण धुल गया और दूसरे मैच में भारत को हार का सामना करना पड़ा। तो अब तीसरे मैच में भारत के पास जीत के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा है। अगर हम बल्लेबाजी क्रम में बात करें जो कि कल खेल सकती है, उसमें युवा वैभव सूर्यवंशी होंगे जिन्होंने पिछले मैच में डेब्यू किया था, अभिषेक शर्मा है, ईशान किशन होंगे, कप्तान श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा और शिवम दुबे टीम में हैं। और अगर जरूरत पड़ी तो टीम बदलाव भी कर सकती है। शक्ति, संजू सैमसन जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था विश्व कप में, उसको प्लेइंग 11 में फिर से वापस ला सकती है। लेकिन भारत की असली चिंता बल्लेबाजी नहीं है, गेंदबाजी है, जिन्होंने लगातार डिसअपॉइंट किया है। चाहे हम आयरलैंड सीरीज की बात कर ले या फिर हम इंग्लैंड सीरीज की बात कर ले, दूसरे अगर T20 की भी बात करें तो भारत ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया था गेंदबाजी से। अर्शदीप सिंह और रवि बिश्नोई काफी महंगे साबित हुए थे, जिसके कारण भारत श्रृंखला में पीछे है।
0: जी बिल्कुल, तो ऐसे में कह सकते हैं कि कल टीम की नजर हर हालत में जीत दर्ज करने पर होगी। इस बीच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 3 T20 मैचों की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। प्रशांत, कप्तानी तो श्रेयस अय्यर के हाथों में है, लेकिन क्या नए बदलाव के साथ ये टीम उतरेगी जिम्बाब्वे में?
1: इस टीम में शक्ति फिनिशर रिंकू सिंह, जिन्होंने विश्व कप खेला था भारत के लिए, उनकी वापसी हो रही है। इनके अलावा प्रिंस यादव, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था IPL में। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका अच्छा प्रदर्शन था, जो जिनको टीम में शामिल किया गया, जिनमें प्रिंस यादव हैं, यश ठाकुर हैं, अशोक शर्मा को भी टीम में शामिल किया गया। वहीं अशोक शर्मा ने लगातार अच्छी गेंदबाजी की थी IPL में, जिसके कारण उन्हें टीम में शामिल किया गया। वहीं हर्ष दुबे और वरुण चक्रवर्ती स्पिन गेंदबाजी की कमान संभालेंगे। और इसके अलावा अगर इंग्लैंड दौरे पर हम बात करें तो अक्षर पटेल और रवि बिश्नोई, जिनको मौका मिला है, उन्हें जिम्बाब्वे दौरे के लिए शामिल नहीं किया गया टीम में। विकेट कीपिंग का जिम्मा जो है वो नए खिलाड़ी प्रभ सिमरन सिंह को सौंपा गया, जिनकी तारीफ हमेशा युवराज सिंह भी करते रहे हैं उन्होंने। और उनके साथ विश्व के नंबर एक बल्लेबाज T20 में ईशान किशन को भी टीम में जगह दी गई है। सबसे बड़ी खबर यह है शक्ति की प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन को टीम में नहीं शामिल किया गया है। और श्रृंखला की अगर हम बात करें तो 23 जुलाई, 25 जुलाई और 26 जुलाई को ये श्रृंखला खेली जाएगी।
0: जी बिल्कुल प्रशांत, इन तमाम नामों के बीच में श्रोता एक नाम और सुनना चाहते हैं, क्या वैभव सूर्यवंशी इस सीरीज का हिस्सा हैं?
1: बिल्कुल, वैभव को इस सीरीज में लगातार टीम में शामिल किया गया है। शक्ति,
0: तो बिल्कुल उम्मीद होगी कि वैभव सूर्यवंशी वापस अपने IPL की फॉर्म को बरकरार रखते हुए जिम्बाब्वे में भी नजर आएंगे। और अब बात करते हैं फुटबॉल के महासंग्राम फीफा विश्व कप की, जहां राउंड ऑफ 16 में आज रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। वहीं सुबह 5:30 बजे अमेरिका की भिड़ंत बेल्जियम से होगी। इससे पहले इंग्लैंड और नॉर्वे विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए।
2: इंग्लैंड ने फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। आज सुबह एक रोमांचक मुकाबले में इंग्लिश टीम ने मैक्सिको को 3-2 से हराया। मैच का पहला गोल 36वें मिनट में इंग्लैंड की तरफ से जूड बेलिंगहम ने किया। इसके ठीक बाद 38वें मिनट में बेलिंगहम ने फिर गेंद को गोल कोस्ट में पहुंचाते हुए इंग्लैंड की बढ़त को दोगुना कर दिया। हालांकि मैक्सिको ने जल्द ही मुकाबले में वापसी की और क्विनोन्स ने 42वें मिनट में मैक्सिको के लिए पहला गोल किया। मैच के 60वें मिनट में इंग्लैंड को मिली पेनल्टी को हैरी केन ने गोल में बदलकर टीम की बढ़त को 3-1 से कर दिया।
3: England coming again, it's Harry Kane and Bellingham again, 2 in 2 minutes for England, who are in Mexican dreamland, it's England's King Kane who strikes again for the Three Lions.
2: मैच के 69वें मिनट में राउल जिमेनेज ने मैक्सिको के लिए एक पेनल्टी को गोल में तब्दील किया। इसके बाद कोई और गोल नहीं हो सका और इंग्लैंड की टीम अंतिम 8वें जगह बनाने में सफल रही। वहीं एक अन्य मुकाबले में नॉर्वे ने न्यूयॉर्क के न्यू जर्सी स्टेडियम में बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की चैंपियन ब्राजील को 2-1 से हराकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। मैच के 79वें मिनट में एरलिंग हॉलैंड ने नॉर्वे की ओर से मुकाबले का पहला और 90वें मिनट में दूसरा गोल दागते हुए टीम को 2-0 की बढ़त दिलाई।
3: He has nailed it for Norway, their greatest
4: this day, their mightiest hero.
2: इंजरी टाइम में पेनल्टी पर नेमार जूनियर ने ब्राजील के लिए पहला गोल तो दागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये गोल नेमार के करियर का आखिरी गोल साबित हुआ और उन्होंने मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी। 34 वर्षीय नेमार के नाम ब्राजील की तरफ से सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड है। उन्होंने अपने करियर में खेले कुल 130 मुकाबलों में 80 गोल किए जबकि 59 असिस्ट भी किए। 2012 में ओलंपिक में रजत पदक और 2016 ओलंपिक में ब्राजील को स्वर्ण पदक दिलाने में नेमार ने अहम भूमिका निभाई थी। अब क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। निखिल कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: और फुटबॉल के बाद अब रुख करते हैं टेनिस कोर्ट का, जहां विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में इटली के फ्लोवियो कबोली ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स डी मेनोर को हरा दिया है। अन्य मुकाबलों में अमेरिका के टेलर फिट्स का मुकाबला कजाकिस्तान के अलेक्जेंडर बुल्किव तथा चेकिया के जीरी हेलेका का मुकाबला जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव से होगा। बुल्गारिया के गिग्रोव दिमित्रोव का मुकाबला ब्रिटेन के आर्थर फेरी से होना है। महिला सिंगल्स में बेल्जियम की एलिस मार्टेस ने चेकिया की मारी बोकोजवा को 6-4 से हराया, जबकि इटली की जैस्मिन पाओलिनी ने फिलीपींस की एलेक्सेला को 6-4 से हराया। इससे पहले कल नोवाक जोकोविच, यानिक सिनर, नाओमी ओसाका और कोको गोफ ने अपने अपने मुकाबले जीतकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया।
5: विंबलडन के प्री क्वार्टर फाइनल में कल कई अहम मुकाबले खेले गए। पुरुष सिंगल्स में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रोमान सफीउल्लीन को 7-6, 6-3, 3-6, 6-3 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इटली के यानिक सिनर ने जापान के शिंतारो मोचीजुकी को 6-3, 7-6, 6-3 से हराया। कनाडा के फेलिक्स ऑगर एलियासिमे ने स्पेन के अलेजांद्रो डेविडोविच फोकिना को संघर्षपूर्ण मुकाबले में 6-7, 7-6, 6-3, 6-7, 6-1 से हराया, जबकि जॉन लेनार्ड स्ट्रफ ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया। वहीं महिला सिंगल्स में अमेरिका की जेसिका पेगुला ने हमवतन ईवा जोविक को 4-6, 6-3, 6-1 से हराया। जापान की नाओमी ओसाका ने आर्याना संबालेका को 6-2, 7-6 से हराया। एक अन्य मुकाबले में अमरीकी कोको गॉफ ने स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेनेसिक को 4-6, 6-3, 6-4 से पराजित किया। यूक्रेन की मार्ता कोत्स्यूक ने अमेरिका की एश्लीन क्रूगर पे 6-4, 6-4 से जीत दर्ज की। विंबलडन के क्वार्टर फाइनल मुकाबले कल से खेले जाएंगे। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो विश्व का ये सबसे प्रतिष्ठित और सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट अब अपने क्वार्टर फाइनल की दौड़ में प्रवेश करने जा रहा है, जहां से इसका रोमांच अब हर दिन बढ़ता हुआ नजर आएगा। और अब बात करते हैं तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण की, जो कल से स्पेन के मैड्रिड में शुरू होगा। तो आइए जानते हैं इस चरण में कौन कौन से भारतीय खिलाड़ी फाइनल चरण और अंकों के लिए निशाने साधते नजर आएंगे।
6: भारत के 16 सदस्यीय दल की अगुवाई धीरज बोमो देवरा, कुमकुम अनिल मोहोड़ और ज्योति सुरेखा विन्नम कर रहे हैं। चार चरणों में होने वाले तीरंदाजी विश्व कप का ये अंतिम पड़ाव है। इसके बाद इस वर्ष के आखिर में मेक्सिको में तीरंदाजी विश्व कप का फाइनल खेला जाएगा। मैड्रिड मीट में 51 फेडरेशनों के 392 रिकर्व और कंपाउंड तीरंदाज 7-12 जुलाई तक पदकों के लिए मुकाबला करेंगे। पुरुष रिकर्व टीम में धीरज बोमो देवरा, यशदीप संजय भोगे, नीरज चौहान और अतानु दास शामिल हैं। महिलाओं के रिकर्व इवेंट में सबकी नजरें कुमकुम अनिल मोहोड़, कीर्ति शर्मा, अंकिता भकत और दीपिका कुमारी पर रहेगी। कंपाउंड वर्ग में ज्योतिका सुरेखा महिलाओं की टीम की अगुवाई करेंगी। उनके साथ चिकित्सा तानी पार्थी, पृथिका प्रदीप और परनीत कौर भी टीम में हैं। पुरुषों की कंपाउंड टीम में गणेश मणि रत्नम थिरुमुरु, साहिल जाधव, कुशल दलाल और ऋषभ यादव शामिल हैं। भारतीय तीरंदाजों ने इस वर्ष तीरंदाजी विश्व कप में 4 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीते हैं। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो ऐसी टीम जहां के अधिकतर खिलाड़ियों की नज़रें होंगी कि किस तरह एशियाई खेलों के लिए अपनी दावेदारी को और अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाए। और एक और टूर्नामेंट शुरू होने को है महाराष्ट्र के पुणे में, जहां 8 जुलाई से 5वीं भारतीय ताइक्वांडो पुंसे और पैरा राष्ट्रीय चैंपियनशिप की तैयारियां जोरों पर हैं। हमारे सिक्किम संवाददाता ने बताया कि पूर्वोत्तर के इस राज्य से 24 सदस्यीय दल इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए तैयार है।
7: More than 24 athletes from Sikkim will compete in the 5th India Taekwondo Pumzay and Paranational Championship. Sikkim's athletes will participate in a range of events including Freestyle Team Pumzay, Junior Team Pumzay, Under 17 Freestyle Pumzay Female. The team will lead by coaches Ganga Pradhan, Saroj Gurung, Ugen Gurung and Sunil Limbu. Medal winners will be shortlisted for the final India National Camp Selection Trials, with successful athletes earning the chance to represent India at the 2026 World Taekwondo Pumzay Championship in Chuncheon, South Korea. With Manush Pratim Sharma, this is Moinak Chatterjee from Akashvani News Gangtok.
0: और अब बात करते हैं भारतीय पहलवानों की, खासकर युवा पहलवानों की, जिन्होंने थाईलैंड में अंडर 20 एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता में अपना अभियान 20 पदकों के साथ समाप्त किया। इनमें 4 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। प्रतियोगिता में भारत की महिला टीम दूसरे स्थान पर रही, जबकि भारत की पुरुष फ्री स्टाइल टीम ने तीसरा स्थान अर्जित किया। महिला प्रतियोगिता के अपने सबसे बेहतरीन क्षमता का प्रदर्शन करते हुए इसमें सामने आई हैं, जिसमें से 10 में से 9 महिला पहलवानों ने भारत के लिए पदक जीते, जिसमें प्रवीण ने 50 किलोग्राम, मुस्कान ने 53 किलोग्राम, काजल ने 76 में अपनी अपनी कैटेगरी के स्वर्ण पदक अपने नाम किए, जबकि प्रवीण ने उज्बेकिस्तान की शेकिस्ता शोजान रोवा को 13-2 के बड़े अंतर से हराते हुए ये पदक अपने नाम किया था। अगर पुरुषों के फ्रीस्टाइल की बात की जाए तो वहां पर सुमित कुमार लक्ष्मण ने 70 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता। और अब श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल इसी समय इस कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। और ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस पर अपनी राय और सुझाव आप हमें हमारी ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमको अनुमति दीजिए, नमस्कार।
8: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी, कहा उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए। और फीफा फुटबॉल विश्वकप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
9: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
8: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा।

0: राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी।
1: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
0: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2 वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। उन्होंने बताया कि ये समारोह पिछले वर्ष 6 जुलाई से शुरू हुआ था और अगले वर्ष 6 जुलाई तक चलेगा। गृहमंत्री ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।
2: श्यामा प्रसाद मुखर्जी अगर न होते तो आज कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं होता। यही वो महापुरुष थे जिन्होंने एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चल सकते। न केवल वो आंदोलन की शुरुआत की, इसके लिए अपने प्राण भी नौछावर कर दिए।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के सतगढ़ी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मार्ट औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरि ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
3: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये नियमित रूप से चलाई जा रही 800 से अधिक ट्रेनों के अतिरिक्त हैं। नई दिल्ली में श्री वैष्णव ने कहा कि पुरी रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्रियों के लिए अस्थायी व्यवस्था की जाएगी।
4: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उसमें 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज उत्तराखंड के टनकपुर और महाराष्ट्र के नांदेड़ स्थित हजूर साहिब के बीच नई रेल सेवा का वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। उन्होंने टनकपुर पीलीभीत रेल सेवा का विस्तार शाहजहांपुर तक करने की भी शुरुआत की। श्री वैष्णव ने कहा कि नई रेल सेवा उत्तराखंड के तराई क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरा करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि तकनीक आधारित द्विभाषी प्रबंधन शिक्षा से देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच शिक्षा की दूरी कम करने में मदद मिलेगी। नई दिल्ली से भारतीय प्रबंध संस्थान उदयपुर के नए ऑनलाइन द्विभाषी व्यवसाय प्रशासन स्नातक पाठ्यक्रम के उद्घाटन समारोह में उन्होंने कहा कि ये पाठ्यक्रम एक

0: अनूठी पहल है जो सरल और आसानी से समझ में आने वाली भाषा में प्रबंधन शिक्षा उपलब्ध कराएगा।
1: इससे मैनेजमेंट एजुकेशन बाइलिंगुअल होने के कारण सरल भाषा में लोगों तक पहुंचे। उम्मीद करता हूं कि इसमें जो भाषा होगी वो ऐसी रखी जाएगी कि सभी को आसानी से समझ में आए, और साथ ही साथ ऑनलाइन होने के कारण काफी व्यापक प्रभाव इसका देखने को मिल सकता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड से हमारे संवाददाता ने बताया है कि कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है।
2: रांची सहित झारखंड के कई जिलों में पिछले दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की स्थिति बन गई है, जिससे लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों के लिए राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश, 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
0: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। एक रिपोर्ट।
3: मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के कई इलाकों में आज भी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी रहा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। उधर पुणे जिले के मावल तालुका के पाटन गांव में भूस्खलन की चपेट में आने से एक घर दब गया, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई। इस बीच IMD ने मंगलवार के लिए पालघर, रायगढ़ और नासिक और पुणे के घाट क्षेत्र में रेड अलर्ट जारी किया है। नासिक जिले में बादल फटने जैसे भारी बारिश की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने हाई अलर्ट घोषित कर दिया है। जिले के संवेदनशील इलाकों में स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिन में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरल, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिन तक ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। डॉ. जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री डॉ. अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। डॉ. जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले एक महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिन से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। बॉम्बे शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ। निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर दर्ज हुआ। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई में 3 T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उप कप्तान होंगे। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में शामिल हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मैक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय गवर्नेंस डिवीजन के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम और पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय के साथ परिचर्चा प्रसारित करेगा। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। आप अपने सवाल #askar के साथ एक्स पर भी पोस्ट कर सकते हैं। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में प्रोजेक्ट 17A के 6th स्वदेशी स्टील फ्रिगेट युद्धपोत महेंद्रगिरी को अपने बेड़े में शामिल करेगी। इस आधुनिक युद्धपोत की रूपरेखा भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं जयंती पर श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका दृष्टिकोण आधुनिक भारत का मार्गदर्शन करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार किया। कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। कल कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में तेज बारिश का रेड अलर्ट। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening, this is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Jakarta on the first leg of his three-nation tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Prime Minister Modi pays tributes to Dr. Shyama Prasad Mukherjee on his 125th birth anniversary, says his vision continues to guide modern India. Ram Janmabhoomi Tirth Trust accepts resignations of General Secretary Champat Rai and Trust member Dr. Anil Mishra, appointed Krishna Mohan as Interim General Secretary. Heavy downpour affects normal life in Maharashtra, Gujarat and Jharkhand. Red alert issued for heavy rainfall in Kutch, Saurashtra, Madhya Maharashtra and coastal Karnataka tomorrow. Huge crowd gathers in Tehran to bid farewell to Iran's late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. And in FIFA World Cup, Portugal to take on Spain in round of 16 match at Arlington in US tonight. Prime Minister Narendra Modi arrived in Jakarta today on the first leg of his high-stake three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post, Mr. Modi said that India and Indonesia elevated the relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A report from a correspondent from Jakarta covering Prime Minister's visit.
5: A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances were organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. Members of the Indian diaspora also greeted him enthusiastically. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. The discussions are expected to focus on strengthening cooperation in trade, investment, defense, maritime security, digital technology and cultural exchanges. Further reinforcing the comprehensive strategic partnership between India and Indonesia. Speaking to Akashvani, members of the Indian diaspora expressed excitement over the Prime Minister's visit and voiced confidence that it would further strengthen bilateral ties and create new opportunities for trade and investment. Shundipan Dasgupta, Jakarta, Indonesia.
4: Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of the 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee, Mr. Modi said the thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India.
6: आज देश की धरती पश्चिम बंगाल की धरती अपने एक महान सपूत एक

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में प्रत्येक सोमवार हम किसी एक खास विषय पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है डिजिटल इंडिया, प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण। पिछले एक दशक में आधार, यूपीआई, डिजीलॉकर, आयुष्मान भारत, डिजिटल मिशन और सरकारी सेवाओं का ऑनलाइन होना, इन सब ने आम नागरिक के जीवन को सुगम बनाया है। गांव की एक महिला भी अब मोबाइल फोन से अपना बैंक खाता चला रही है। किसान घर बैठे सब्सिडी ले रहा है और विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा है। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या हर नागरिक डिजिटल रूप से साक्षर है? साइबर ठगी, डेटा सुरक्षा और डिजिटल डिवाइड जैसी चुनौतियों से हम कैसे पार पा सकेंगे? इस विषय पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय। आप दोनों मेहमानों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: तो जुड़े रहिए हमारे साथ विशेष चर्चा में और जानिए कि कैसे प्रौद्योगिकी एक आदमी को सशक्त बना रही है और डिजिटल सफर में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। श्रोताओं, आपके मन में इस विषय से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप इस कार्यक्रम से जुड़ सकते हैं। हमें आपकी फोन कॉल्स का इंतजार है। स्टूडियो की फोन लाइंस खुल चुकी हैं। आप हमारे स्टूडियो के फोन नंबर 2331-0481-2371-7117-2371-7106 और 2331-4444 पर फोन कर अपने सवाल पूछ सकते हैं। दिल्ली के बाहर के श्रोता दिल्ली का एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। आप अपना प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289-094-044 पर भी भेज सकते हैं। इस नंबर पर केवल संदेश ही भेजें, कॉल ना करें। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTS सेवा पर भी उपलब्ध है। तो सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत में नंद कुमार जी आपसे जानना चाहेंगे, पिछले 10 साल में डिजिटल इंडिया का सबसे बड़ा बदलाव आप क्या मानते हैं जिसने सीधे आम नागरिक को फायदा पहुंचाया है?
2: सबसे बड़ा बदलाव ये है कि आज एक कोई भी गृहिणी अथवा कोई भी व्यक्ति जो छोटा व्यवसाय करता है, जो किसान है, वो एक मोबाइल के माध्यम से पैसे ले सकता है, पैसे दे सकता है, बिना किसी कागज और सरकारी दफ्तर गए वो आधार से अपनी आइडेंटिटी प्रूव कर सकता है, किसी भी अपने यार दोस्त साथी से व्हाट्सएप पर बातें कर सकता है, या किसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का म्यूज़िक या देश के कल्चरल चीज़ों का यूट्यूब पर लाभ उठा सकता है एट ए रेट जो कि बहुत ही कम है, पूरी दुनिया में सबसे कम रेट पर, और ये सब उसके एक छोटे से हाथ में मोबाइल के माध्यम से। तो अपने आप में एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी भारत की रही है कुछ सालों की इस दौरान।
0: बिल्कुल गुलशन राय जी, डिजिटल अरेस्ट, OTP फ्रॉड, फर्जी लोन ऐप जैसी साइबर ठगी बहुत बढ़ गई हैं। एक आम नागरिक को इनसे बचने के लिए तुरंत क्या करना चाहिए?
1: इसके लिए तुरंत तो ये करना चाहिए, देखिए किसी कोई भी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन संस्था जो है

0: वो किसी से फ़ोन पे कोई डेटा नहीं मांगते हैं, किसी का अकाउंट नंबर, किसी का क्रेडिट कार्ड नंबर और कोई डिटेल, इसकी जानकारी कोई भी नहीं मांगता है। और सब बैंक्स में बार बार वो एक एडवर्टाइजमेंट करते हैं, सबको मैसेज भेजते हैं, SMS भेजते हैं कि कोई भी जानकारी किसी को मत दीजिए, हम किसी से जानकारी फ़ोन पे और SMS से और व्हाट्सएप द्वारा नहीं मांगते
1: जी।
0: लेकिन फिर भी हमारे यहाँ काफ़ी लोग, आज की डेट में प्रौद्योगिकी का ऐसा प्रभाव पड़ गया है, नए नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल आ गए हैं जिससे वो फेक साइट और फेक कॉल ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देते हैं वो, और पूरा ऐसा सिनेरियो बना देते हैं कि जैसे ये पुलिस का दफ्तर है जिसमें पुलिस कमिश्नर बोल रहा है कि आपका ये होने वाला है, वो होने वाला है। तो उस संदर्भ में अब नागरिकों को और हमारे ये याद रखना चाहिए, जैसा कि सब बैंक्स कहते हैं और जैसा मैं भी कह रहा हूँ, कि कोई भी संस्था इस भारत में किसी से कोई इंफॉर्मेशन वैसे नहीं मांगती है
1: जी।
0: और ऐसा है, इसका एक थंब रूल है, थंब रूल ये है कि अगर आपको कोई कॉल करता है और वो कॉल उसकी आप सुन लेते हैं और उसके उठा के कॉल कर लेते हैं और आपसे कुछ एक तो परिचय मांगता है तो परिचय मत दीजिए, अपना डिटेल मांगते हैं तो डिटेल मत दीजिए, अगर आपसे कोई कुछ करने के लिए कहता है तो आप उसे कहिए कि मैं थोड़ा सा बिजी हूं और आपका मैं अभी एक मिनट में तुरंत में आपको फोन करता हूं।
1: ठीक है,
0: क्योंकि ऐसे केसेस में रिटर्न कॉल कभी नहीं होती है
1: जी,
0: रिटर्न कॉल नहीं होती,
1: सबसे बड़ी बात।
0: हाँ
1: जी, बिल्कुल।
0: और आज ये पहला एक वो है कि रिटर्न कॉल करें और रिटर्न कॉल में उससे सब पूछें, क्योंकि रिटर्न कॉल करने में पुलिस जो है उसको ट्रेस करने की कोशिश हो जाती है, रिकॉर्ड मिल जाता है, तो उसका रिकॉर्ड मिल जाता है उसका, तो रिटर्न कॉल उसे कहे मैं रिटर्न कॉल करते हैं आपको एक मिनट दीजिए, कुछ सामान गिर गया है, कुछ थाना है, कुछ भी करके करें और वो रिटर्न कॉल करें, वो बहुत ज़रूरी है, ये सबसे बड़ा थंब रूल है
1: जी।
0: और किसी को जानकारी मत दीजिए इस बारे में कि मैं कौन हूँ, मैं कौन नहीं हूँ। आजकल बहुत बड़े फ्रॉड हो गए हैं, वो जो ऐप आती है एक जिसमें होता है जिसमें आप नंबर डालिए आपको बता देता है कौन सा क्या आता है उसका क्या आता है, और वो आजकल उसमें भी लोग फ्रॉड करते हैं, अपना नाम लिख देते हैं करते हैं
1: जी।
0: तो आप उसका जवाब मत दीजिए, कहीं हम आपसे आएंगे। और आज जो है दूर संचार विभाग ने, सरकार ने ये क्या किया कि जब आपको कॉल आती है तो उस पे नाम फ्लैश होता है कि ये कहाँ से किसका नाम आ रहा है कौन आ रहा है, वो सब सर्विस प्रोवाइडर उसको स्पैम भी लिखते हैं कि ये फेक कॉल है या ऐसी कॉल है, तो आप पहले तो कॉल को देखें कि कॉल पे किसका नाम आ रहा है और कॉल पे क्या मैसेज आ रहा है, कॉल देखें पहले गौर से जब कॉल आती है, तो उसके बाद अगर फ़ोन आपको जान पहचान का नाम नहीं है तो मत उठाइए, अगर आप गलती से उठा लेते हैं तो आप उसे कहिए कि मैं थोड़ी देर में कॉल आपको एक मिनट में कॉल करते हैं। रिटर्न कॉल जब करेंगे तो वो मैच्योर नहीं हो
1: पकड़ जी। और इस समय हमारे साथ श्रोता जुड़ गए हैं रवि जवालिया, हरिद्वार से जुड़े हैं। रवि जी, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हमारे विशेषज्ञों से क्या सवाल पूछना चाहते हैं?
2: हाँ धन्यवाद सर। सर नमस्कार, मेरा नाम रवि जवालिया है
1: जी। रवि,
2: मैं गर्मीपुर हरिद्वार से बोल रहा हूँ
1: जी।
2: जी सबसे पहले से विशेषज्ञों को भी मेरा नमस्कार सर।
0: नमस्कार। हाँ, नमस्कार रवि जी, नमस्कार।
2: हाँ सर, मैं जानना चाहता हूँ एक मतलब जो नया युवा है जो मतलब टेक्निक का यूज करना चाहता है वो डिजिटल साक्षर कैसे हो, क्योंकि आजकल ट्रांजेक्शन वगैरह जैसे कि हम सभी जानते हैं कि AI भी है, फ्रॉड भी है, तो वो डिजिटल साक्षर कैसे प्राप्त करें और इसके लिए क्या मतलब स्पेशल कोई नंबर है?
0: देखिए डिजिटल साक्षर के उस संदर्भ में सरकार ने बहुत काम किया है और सरकार की वेबसाइट पे इस बारे में बहुत ज़्यादा उसमें काम है, इनकी एक नाइलेट है सरकार की, मिनिस्ट्री ऑफ प्रौद्योगिकी विभाग की एक संस्था है नाइलेट, NILIET नाइलेट है, और उस पे उन्होंने काफ़ी कोर्सेस उस पे डिजिटल साक्षरता पे लिख रखे हैं
1: जी।
0: लेकिन डिजिटल साक्षरता आज की डेट में जरूर काम करने के लिए बहुत सिंपल सा है, आप मोबाइल चला लेते हैं, आप स्मार्टफोन चला लेते हैं, आज की डेट में इतने यंग लोग हैं वो सब संभाल लेते हैं, और जो हम जैसे उम्र वाले हैं लोग हम उन्हीं बच्चों से सीखते हैं हमारा मोबाइल कन्फिगर कर दीजिए, तो ये तो एक डिजिटल के बारे में बच्चों को आज यंग जनरेशन को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है, पर आपको अगर आपकी इसके एक सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर आपको देखना है तो नाइलेट की साइट पे जाके आप कोर्स देखिए और उनमें काफ़ी मटेरियल है, उस पर काफ़ी इंफॉर्मेशन है, काफ़ी शॉर्ट मॉड्यूल्स हैं, आप उसमें देखेंगे आपको उसके बारे में पता लगेगा और आप उसमें नाइलेट का नंबर भी होगा और जिसपे आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, हमारे जो श्रोता हैं वो नाइलेट पे जाकर साक्षरता प्राप्त कर सकते हैं। और नंद कुमरम जी, आपसे जानना चाहेंगे, यूपीआई आज दुनिया के लिए एक मॉडल बन गया है, ग्रामीण और दूरदराज के इलाकों में डिजिटल पेमेंट को 100% अपनाने के लिए सरकार की अगली क्या प्राथमिकता हो सकती है?
3: यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सस्ता प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से तकरीबन आज के देश में अगर अंदाज लगाएं तो 1 in every 2 और इवन 1.2 in every 2, मतलब 50-70% ट्रांजैक्शन पूरी दुनिया का यूपीआई के माध्यम से होता है।
1: बहुत बड़ी बात।
3: और भारत, न केवल भारत में बल्कि अन्य कई देशों में उसको व्यवस्थित कर चुका है
1: जी।
3: और एक समय में जो यूरोपियन या यूएस डोमिनेटेड पेमेंट सिस्टम थे उसको हम लोगों ने वहाँ तक जा करके उससे बहुत ही सस्ते रूप में बनाया। अब जो उसके ऊपर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं कि उसके ऊपर इंश्योरेंस, उसके ऊपर लेंडिंग आपस में, जो पीयर टू पीयर मतलब आपस में लेन देन या उधार देना या बैंक का कर्ज देना या जो हमारे देनदारी की सूची बनकर एक साथ पेमेंट हो जाना या क्रेडिट स्कीम्स लाना जो कंपनीज लाती हैं कि ये खरीदो तो ये पाओ या ये वॉलेट में रख लो तो कल वो पाओ, इस तरह की जो छोटे छोटे स्कीम्स हैं वो उसके ऊपर धीरे धीरे बन रहे हैं। ये बड़ी खुशी की बात है कि देश में, जो हमारे देश में ये भी एक सच है कि कैपिटल का अभाव है, खास करके जो MSME और छोटे व्यापार करने वाले लोग हैं उनका क्रेडिट हमेशा कमी रहता है, तो उस कैपिटल को सपोर्ट करने के लिए UPI एक बड़ा ही सिबिल और बाकी सारे स्कोर के माध्यम से इजी लेंडिंग कर पाता है। तो धीरे धीरे NBFC का काफ़ी पोर्टफोलियो ग्रो हो रहा है, बैंक्स उस कस्टमर तक पहुँच पा रहे हैं जहाँ तक कि वो पहले नहीं पहुँच पा रहे थे। तो आने वाला जो समय है अगले 5 सालों में, कैपिटल फॉर बिजनेस या इंडिविजुअल्स UPI के माध्यम से आगे बढ़ने की कोशिश।
1: बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, बिहार के सासाराम से अमित उपाध्याय। अमित जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
4: जी नमस्कार, सभी जितना भी विशेषज्ञ है, मेरा ये सवाल था कि जैसे कि एक OTP का जो फ्रॉड बढ़ते जा रहा है बहुत सारे केस में, उसके लिए हम लोग कैसे इसको व्यापक रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग इसको जागरूक अभियान चला सकते हैं, क्या कि इसको क्या हो सकता है? और दूसरी चीज ही में एक सुझाव भी था, जितना भी सरकारी विद्यालय है या विश्वविद्यालय है, इसमें हम लोग समय समय पर सरकार और उसके के माध्यम से समय समय पर इसको कैसे हम लोग उस पर चर्चा करके ताकि लोगों को जागरूक कर सकते हैं जी।
0: आपका सवाल बहुत ही अहम सवाल है। OTP का फ्रॉड काफ़ी पहले से काफ़ी बढ़ गया है, पर आप ये देखिए कि थोड़ा सा सोचिए कि OTP क्यों आता है और कैसे आता है। OTP जब ही आता है जब आप किसी सर्विस को देख लेने की कोशिश करते हैं, आप किसी को लॉगिन करते हैं मोबाइल पे, किसी के वेबसाइट पे करते हैं, कोई वेबसाइट करते हैं या कुछ पैसा कुछ करने की कोशिश करते हैं और वो आपको आपको ये देखने के लिए कि ये सही ट्रांजेक्शन्स है आपको OTP भेजते हैं। आपके फ़ोन पे OTP आता है, जो रजिस्टर्ड फ़ोन होता है उनके पास उसी पे OTP आता है। कोई भी OTP तभी आप देखिए जब आपने मांगा हो, कोई सर्विस करने के लिए मांगा हो, आपने कुछ कोशिश की हो। अगर आपने कोई सर्विस नहीं की, आपने सर्विस करने की कोशिश नहीं की, आपकी डिज़ायर नहीं है, आपकी रिक्वेस्ट नहीं है, तो आप किसी भी OTP को मत रिकॉग्नाइज करिए, मत देखिएगा, आप OTP को लीजिएगा ही नहीं। ऐसे को OTP आता रहता है, अपने आप ही OTP भेजते रहेंगे उनको, आप उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। उसी OTP को देखिए जब आप किसी सर्विस को कुछ लेने की कोशिश करते हैं और वो आपको जी जानने के लिए कोशिश करता है कि आप सही आदमी हैं जो कि सर्विस ले रहे हैं, तभी आपको OTP भेजता है। OTP एक माध्यम है आपको आइडेंटिफाई करने का। तो ऐसे कोई बगैर आपके कहे को OTP भेजता है उसको मत लीजिएगा, उसके पे मत ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल मत ध्यान दीजिए।
1: सिंपल सा है, जो आपने मांगा तभी OTP आया, अदरवाइज OTP नहीं आएगा। चलिए एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश के सागर से विपिन। विपिन, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए क्या सवाल है आपका।
5: सभी को नमस्कार
1: जी।
5: मैं विपिन बात कर रहा हूँ सागर से। सर मेरे दो सवाल हैं। पहला सर मैं ये जानना चाह रहा था, आजकल देखा जाता है सोशल मीडिया पे और अलग अलग जगह कि बहुत सारे ऐप हैं जो आपका क्रेडिट स्कोर बढ़ाने के लिए कहते हैं कि इसे डाउनलोड करें, आपका इससे एक्सपर्ट जो आपको सलाह देंगे उस हिसाब से आपका क्रेडिट स्कोर ग्रो करेगा, तो ये कैसे हम जाने कि सही या गलत है ऐप हम जो डाउनलोड करें या नहीं करना चाहिए। दूसरा सवाल ये था सर कि

0: वो हेल्पलाइन है 1930। सर इस पर कॉल करते हैं तो क्या होता है कि हमारा कॉल ऑटोमेटिकली इमरजेंसी नंबर इमरजेंसी कॉल में ट्रांसफर हो जाता है, यानी 112 पर। तो ये नॉर्मल है, ऐसे ही लगता है कॉल की 1930 पे करते हैं और इमरजेंसी में ट्रांसफर होता है, या फिर ये हेल्पलाइन अलग होती है, कोई प्रॉब्लम चल रही है अभी?
1: मैं पहला सवाल का जवाब देता हूँ। पहले जो आपने कहा कि हम अगर कोई भी प्रश्न मतलब इस तरह से पूछते हैं कि हमारा एक बार आप इनका पहला सवाल जो था
2: एक बार फिर से सवाल करेंगे
1: आप?
2: कट गया शायद, उन्होंने उनका
1: डिस्कनेक्ट
2: हो गया है। लेकिन 1930 के बारे में कुछ?
1: अच्छा, 1930 के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा बाकी श्रोताओं के लिए जो जुड़े हुए हैं कि 1930 और 112 इस तरह से कनेक्टेड है कि कुछ 1930 के कॉल इमरजेंसी कॉल होते हैं, जैसे कि साइबर में इमीडिएट रिलीफ, तो आप 112 से कई बार कोई इमीडिएट कहीं पुलिस की गाड़ी पहुँचानी है, कहीं स्वास्थ्य की गाड़ी पहुँचानी है, तो इमरजेंसी रिलीफ में भी लोग 1930 में लगा देते हैं, या इमरजेंसी कोई एक्शन लेना है, ब्लॉकिंग ऑफ एन अकाउंट, 1930 में ये भी सुविधाएं हैं कि उससे रिलेटेड बैंक का भी एक प्रोसेस है, तो कई बार आपको डाइवर्जन ऐसा मिल जाता होगा। ऐसे एज ए पॉलिसी 1930 स्पेसिफिक पर्पस के लिए डेडिकेटेड है, जो साइबर फ्रॉड या अकाउंट फ्रॉड या उस तरह की चीज़ों के लिए रहता है, न कि दूसरे चीज़ों के लिए। और जो आपका डिजिटल ऐप वाला क्रेडिट स्कोर का विषय था, सी क्रेडिट स्कोर सिबिल का या अलग बैंकिंग ब्यूरो के डेटा के आधार पर बनता है कि आपने पहले क्या लोन लिया है, आपका लोन में पेमेंट का स्ट्रक्चर कैसा था, आप कितने डिसिप्लिन वे में पे करते चले गए, तो आपके बैंक का ट्रांजैक्शन के आधार पर बनता है। आपके किसी ऐप में कोई एक्टिविटी का स्कोर पर कोई असर नहीं पड़ता, बार बार देखने से या बार बार किसी ऐप में चार बार गेम खेलने से, क्योंकि आपका जो आपने हाउसिंग लोन लिया, आपने मान लीजिए कोई पेमेंट टाइम पर पेमेंट कर दिया, ये फैक्ट्स हैं जिसके आधार पर सिबिल स्कोर बनाता है या अन्य क्रेडिट एजेंसी आपका स्कोर बनाती हैं। ये सब केवल लोगों को समझाने के लिए कि देखिए साहब एक पॉइंट बढ़ जाएगा, ये बार बार करेंगे तो 5 पॉइंट जुड़ जाएगा, ये सब केवल गुमराह करने का रास्ता है। सिबिल का स्कोर एक साइंटिफिक थर्ड से पूरे देश में बनाया जाता है, इसके लिए कोई ऐप बिल्कुल भी डाउनलोड ना करें, वो ज़्यादातर आपको गुमराह करने के लिए।
2: बिल्कुल, तो हमारे श्रोताओं को जानकारी मिली होगी। तो जो श्रोता अभी हमसे जुड़े हैं, हम उन्हें बता दें कि आप सुन रहे हैं कार्यक्रम पब्लिक स्पीक, और आज हम डिजिटल इंडिया प्रौद्योगिकी के माध्यम से नागरिकों का सशक्तिकरण विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम जी, और प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय जी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ओडिशा से देश पांडे देशदीप दास जी जुड़ गए हैं। देशदीप दास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या सवाल पूछना चाहेंगे
3: जी? नमस्कार।
1: नमस्कार
2: नमस्कार जी। नमस्कार
3: जी। कुमारम महोदय और राय महोदय को मेरा सादर नमन।
1: नमस्कार जी।
4: नमस्कार, आपको भी सादर नमन
3: जी। मैं देशदीप दास केंद्रापरा उड़ीसा से बोल रहा हूँ। तो मेरा सवाल है, शिक्षार्थियों को सशक्त बनाने वाली प्रमुख डिजिटल सेवाएं कौन सी है?
1: शिक्षार्थी मतलब विद्यार्थी
2: जी,
1: स्टूडेंट्स
3: जी,
1: तो स्टूडेंट्स के लिए अगर शासकीय गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स बताएं तो जैसे दो है, अगर आप किंडल स्कूल से 12वीं तक में हैं तो दीक्षा एक प्लेटफॉर्म है, इस पर सभी एनसीईआरटी की किताबें अलग अलग भाषाओं में अलग अलग विषयों की बड़े ही डिजिटल और इजी सुगम स्थान तरीके से उपलब्ध होती है। दूसरी, उस पर वीडियो के कोर्सेज बने हुए हैं जो ऑनलाइन उन विषयों से संबंधित, मान लीजिए कोई 6ठी क्लास का मैथ्स का बच्चा है या कोई 7वीं क्लास का मैथ्स का बच्चा है, तो अगर वो 7वीं पढ़ रहा है और उसे 6ठी में डाउट है तो बड़ा इंटरकनेक्टेड बड़े ईजी वे में दीक्षा प्लेटफॉर्म उसके माध्यम से, और कई लाख बच्चे इससे जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। अगर आप बड़े क्लास में बच्चे हैं, मतलब आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के या किसी प्रोफेशनल कोर्स में हैं, तो स्वयं करके एक पोर्टल है या NPTEL नाम से जो पोर्टल पहले चलता था, जिस पर कि बड़े हाई लेवल के जो कोर्सेज राइट फ्रॉम आपको उसमें IIT कानपुर या IIT के पर MTech मास्टर्स PhD के कोर्स से लेकर के, और जो आपके 12th के इंजीनियरिंग के मेडिसिन के IIMs के मैनेजमेंट के, ये सारे कोर्स कोर्सेज अवेलेबल हैं, इवन कमर्शियल चार्टर अकाउंटेंसी वगैरह के। तो ये एक पूरा जूनियर क्लास से लेके सीनियर तक का कोर्सेज है। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस ने, राज्य सरकारों ने अपने अपने भी प्रयास किए हैं। उड़ीसा में आप अगर यूट्यूब पे जाएंगे तो बहुत सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने अपने कोर्स को पब्लिक किया है, तो वहाँ पर भी जाकर के आप सब्जेक्ट वाइज सेशन वाइज ऐसे कोर्सेज का लाभ देख कर ले सकते हैं।
2: नंद कुमारम जी, वरिष्ठ नागरिक और महिलाएं अक्सर डिजिटल सेवाओं से घबराती हैं, उन्हें डिजिटल रूप से साक्षर बनाने के लिए आपके मंत्रालय की क्या विशेष योजना है?
1: दो विषय पर हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। एक तो उनका अकाउंट खुलना सबसे बड़ा काम, और उनके हाथ में स्मार्टफोन होना। तो स्मार्टफोन में आज के डेट में भारत में बहुत ही कम दरों पर स्मार्टफोन उपलब्ध हैं, तो इसके रेट्स को भी आप अगर कंपेयर करेंगे, जैसे डेटा बहुत कम रेट पे था, तो स्मार्टफोन भी भारत में बहुत ही लो कॉस्ट पर बिक रहा है आजकल, और भारत की PLI स्कीम्स ने बड़ा उसमें कारगर रोल प्ले किया है। अब जहां तक रहा उनके सीखने और व्यवहार की बात, तो लोकल भाषा में कंटेंट उपलब्ध करा करके कि वो जिस भाषा में है, अगर वो तमिल में बात करते हैं, अगर वो हिंदी में बात करते हैं, जिस भी गुजराती में बात करते हैं, तो उस भाषा में आजकल सभी सरकारी वेबसाइट को उपलब्ध कराया गया है। आप भाषणी के माध्यम से या अन्य AI टूल्स के माध्यम से सभी शासकीय पोर्टल्स को उस लोकल भाषा में उपलब्ध कराने का प्रयास है, जिसके माध्यम से आप ईजी से उसे समझ सकें। और हेल्पलाइन भी सिटीजन के लिए अलग लागू गया है, जो सीनियर सिटीजन का अलग एक डेस्क है जो उनको फॉलो अप करता है और उनको सपोर्ट देता है, ताकि वो 1930 में तो कर ही सकते हैं, उसके अलावा सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल हेल्पलाइंस भी हैं।
2: एक और श्रोता दिल्ली से जुड़ गए हैं, धर्मवीर। धर्मवीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, क्या सवाल करना चाहेंगे?
5: धन्यवाद, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ।
2: जी
5: सर को मेरा नमस्कार। मेरे दो क्वेश्चन है सर।
2: जी बताइए।
5: पहला क्वेश्चन, जैसे कि कीपैड वाला फोन और स्मार्टफोन, अगर कीपैड उसमें भी अगर मैसेज आते हो और वो फोन हमारा बैंक में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो इसमें अगर गलत बटन दबा देने से कभी इसमें फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं, अगर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर फोन दूसरा है तो। और दूसरा सवाल मेरा ये है, वो मेरा मेन मकसद है सवाल का, कि जैसे आज के समय में दसवीं क्लास के बच्चों से स्टार्ट होके देखा जाता है स्कूलों में कंप्यूटर कोर्स कराए जा रहे हैं, प्रैक्टिकली कराए जा रहे हैं, क्यों ना बच्चों को नर्सरी टाइम से बच्चों को ये फ्रॉड के बारे में, स्मार्टफोन के बारे में बताया जाए कि ऐसे गलत नंबर आए तो आपको उसको छूना नहीं है, या जो भी जैसे भी तरीके से समझ बताया जाए, ट्रेनिंग दी जाए, नर्सरी से ही स्टार्ट किया जाए, क्योंकि आपको पता ही है आजकल हर बच्चा शुरू से ही लेके फोन लेके बैठ जाता है, और जो फोन हमें नहीं चलाना आता वो बच्चा वो खोल के गा जाता है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि स्कूलों में भी, ये मेरा सुझाव भी समझ लिया जाए, मेरा क्वेश्चन है कि नर्सरी क्लास से भी बच्चों को इस चीज के लिए ट्रेनिंग देनी जरूरी है। धन्यवाद।
4: आपका जो पहला प्रश्न है कि उसमें स्मार्टफोन और फीचर्स फोन की बात है, देखिए दोनों में बहुत अंतर होता है। स्मार्टफोन फीचर्स फोन जो होता है बहुत सिंपल फ़ोन होता है और उस पर बहुत फीचर्स नहीं होते हैं, लेकिन जो भी मैसेज आते हैं बैंक से आता है या OTP आता है, वो सब SMS के द्वारा आते हैं, WhatsApp और किसी उसके द्वारा नहीं आते हैं। तो वो OTP आना या कोई मैसेज आना वो ऐसा ही है जैसे कि एक स्मार्टफोन में आता है। तो अगर आप उस पर कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, उसका वही इफ़ेक्ट है जो कि स्मार्टफोन के अंदर होता है। तो अगर आपने स्मार्टफोन से किया है या की फ़ोन से, की फीचर फ़ोन से किया, उसका इफ़ेक्ट सेम है। जहाँ तक OTP और मैसेजेस का सवाल है, उसका दोनों का इफ़ेक्ट सेम ही है, बिल्कुल सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन स्मार्टफोन इसलिए इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, उसमें फ़ीचर्स बहुत कम होते हैं, ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते आप, कोई भी ऐप नहीं डाउनलोड कर सकते, और आपको वो जो दूसरी किस्म की जो अटैक्स होते हैं, साइबर अटैक्स, साइबर इंसिडेंट्स होते हैं, वो उस फीचर्स फ़ोन पे नहीं होती हैं, वो सब स्मार्टफोन पे होते हैं वो सब। इसलिए दोनों में बहुत अंतर है, कॉस्ट में भी अंतर है, फीचर्स में भी अंतर है, और उसका यूटिलिटी का भी अंतर है। लेकिन एक आम नागरिक के पर्पज़ के लिए, अगर आप बैंक से इंटरेक्ट करते हैं, आपका OTP आता है, आप कोई नंबर एक्सेस करते हैं, वो आप फीचर्स फ़ोन पे एक्सेस कर सकते हैं। कुछ चीज़ें आज की डेट में की फीचर्स फ़ोन भी बहुत अच्छे हो गए हैं, जिस पे आप वेबसाइट भी देख सकते हैं, अपना ओपन कर सकते हैं, ऐसे भी की फीचर्स फ़ोन हो गए हैं। लेकिन अगर आप दोनों में अंतर, मोटा मोटा अंतर से आपको मैंने बता दिया है, और की फीचर्स फोन नॉर्मल पर्पस के लिए काफी सेफ होता है, स्मार्टफोन में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और केयरफुल रहना पड़ता है।
2: गुलशन जी, एक और सवाल हमारा है, गांव का किसान पहली बार जब स्मार्टफोन चलाता है तो उसे साइबर फ्रॉड से बचाने के लिए सबसे जरूरी क्या बातें हो सकती हैं?
4: देखिए, एक तो उसको कहा जाता है कि अपने एंटीवायरस रखना चाहिए
2: जी।
4: एक दूसरी बात यह है कि वो जो भी ऐप डाउनलोड

0: डाउनलोड करें वो जो इतनी जो ज़रूरत हो और एक ट्रस्टेड सोर्स से ऐप डाउनलोड करें
1: जी।
0: आज कहते हैं कि आप गूगल का प्ले स्टोर है, गूगल से प्ले आप ऐप डाउनलोड करिए, और एप्पल का प्ले स्टोर है वहाँ से डाउनलोड करिए, ऐसे किसी वेबसाइट पे जाके आप ऐप मत डाउनलोड करिए, वो दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल तो वो है कि आपको ऐसे मैसेज आए जो आपने मांगा नहीं है, आपने पूछा नहीं है, उस पे ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं है।
1: बिल्कुल नंद कुमारम जी, सोशल मीडिया फ्रॉड के बारे में बात करते हैं। फेसबुक व्हाट्सएप पर इन्वेस्टमेंट स्कैम और पार्ट टाइम जॉब के नाम पर ठगी बहुत हो रही है, एक आम गृहिणी इसे कैसे पहचाने?
2: देखिए, ये डिजिटलाइजेशन और इसकी एक अच्छी चीज़ है कि पार्ट टाइम जॉब घर बैठे गृहिणियाँ कर रही हैं और उसका लाभ उठा रही हैं, लेकिन कुछ लोग इस अच्छी चीज़ का दुरुपयोग करने के लिए लालच देकर या कोई काम का गलत चीज़ बताकर उनके अकाउंट्स या कोई फ्रॉड या कुछ पिक्चर्स या कुछ ऐसी चीज़ों में इंगेज होते हैं जो लॉन्ग टर्म में नुकसानदेह होता है। तो जैसा अभी गुलशन राय साहब ने बताया कि आप फिनेंशियल ट्रांजैक्शन और अपने वर्क को समझें अच्छे से कि आप कब उनको ओटीपी दे रहे हैं, कब अपना आइडेंटिटी दे रहे हैं, क्योंकि आइडेंटिटी थेफ्ट भी एक बड़ा कॉमन हो रहा है कि आपसे बात करी, सारे कागज इकट्ठे किए और फिर वो चले गए, या फिर आपसे बैंक अकाउंट मांगा, बोला हाँ साहब कुछ क्रेडिट कर रहे हैं, आप ये कर रहे हैं, और उसमें फिर कुछ पैसे क्रेडिट भी कर देते हैं और थोड़े दिनों के बाद उसे ज़्यादा पैसा आपसे फिर निकाल ले जाते हैं। तो इस तरह के समय में ध्यान यह देना चाहिए कि मैं क्या इन्फॉर्मेशन दूँ और कैसे दूँ। बड़ी छोटी बड़ी अच्छी बात बताई कि मैं कॉल बैक करना, अपना वेबसाइट चेक कराना, और लोगों का रेफरेंस देना, चार लोगों से बात करना कि क्या सच में कोई हमारी दूसरी बहन दूसरी साथी वहाँ काम करती हैं कि नहीं, सोशल वेरिफिकेशन प्रोसेस करना, इस तरह से कोई ट्रस्टेड माध्यम से ही जॉब करें, क्योंकि कई बार आप जो जॉब कर रहे हैं उस जॉब के पीछे क्या काम हो रहा है ये आपको पता नहीं चलता और आप उसकी जिम्मेवारी या फेस बन जाते हैं। तो काम को ध्यान में रखते हुए इस तरह से काम में जाना चाहिए।
1: बिल्कुल जाना चाहिए। और एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ गए हैं, मध्य प्रदेश के पन्ना से हर्षवर्धन पांडे। हर्षवर्धन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो साइबर अपराध है जो चल रहा है, इस पर सरकार द्वारा कभी ये नियम कानून बनाकर रोक ये लगाई जाएगी कि ऐसे ही चलता रहेगा? जो 1930 जो काल है इस पर कभी वो ये जो काल करते हैं तो कार्रवाई कभी होती है कि नहीं होती है? दूसरा प्रश्न ये है, इसका मुझे उत्तर चाहिए।
2: जी जी हर्षवर्धन जी, आपका प्रश्न मैं सुन करके प्रयास करता हूँ। जो विषय है वो जो कहना यह रहता है लोगों का कि 1930 में दो तरह के सवाल आते हैं, या तो कुछ जानकारी के लिए या अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए या एक ट्रांजैक्शन रिवर्ट करने के लिए, और कुछ केसेस में वो कानून अपराध में कन्वर्ट करके उस पर केस भी होता है। तो 1930 के बाद वो चला जाता है आपके जो थाना संबंधित जो थाना है जहाँ पर या तो क्राइम ओरिजिन हो रहा है या जहाँ पर क्राइम टर्मिनेट हो रहा है, दो तीन तरह के जगहों पर केस रजिस्टर हो सकता है। तो इस तरह के केसेस में वो उस संबंधित थाना में या उस जिले के साइबर थाना अगर कोई चिन्हित हो तो वहाँ, अन्यथा राज्य के मुख्यालय में भी प्रकरण दर्ज होते हैं, उसको 0 FIR करके फिर ट्रांसफ़र करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण दर्ज होते हैं और उस पर कार्रवाई होती है हमारे जो BNSS और जो न्याय संहिता के क्रम के रेप में, और इसमें बहुत अधिक कार्रवाइयां होती हैं। यह बात जरूर है कि चूंकि केस भी बहुत दर्ज होते हैं तो शायद थोड़ी देरी हो जाती हो।
1: और अंत में आप लोगों से जानना चाहेंगे कि हमारे श्रोताओं को एक वाक्य में अगर जवाब देना हो, डिजिटल रूप से सशक्त नागरिक बनने की सलाह देनी हो तो क्या कहना चाहेंगे?
0: यह बहुत अहम सवाल है
1: जी।
0: डिजिटल रूप सशक्त बनने के लिए आपको, जैसे हमारे एक्सपर्ट श्री नंद कुमार जी ने बोला कि आपको इस टाइप का थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करना चाहिए कि जो चीज इंफॉर्मेशन आप ले रहे हैं वो गलत तो नहीं है, ऐप जो आप डाउनलोड कर रहे हैं गलत तो नहीं है, आप OTP सर्विस मांगी नहीं है वो नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर आपको ये जब तक आप चीज़ कोई एक्सेस मांगते नहीं हैं तब तक कोई जानकारी आपके पास आती है उस पर ध्यान गौर करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा ध्यान करिए, थोड़ा सा सशक्त हो जाइए तो आप डिजिटल ट्रांजेक्शन बहुत आसान है।
2: भारत डिजिटल में दुनिया भर में अग्रणी है और एकाध दो देशों को छोड़ दें तो शायद गिनती के नंबर 3 पे तो हम लोग हैं ही।
1: बिल्कुल,
2: मैं फ्रॉड के डर से डिजिटल में आगे न बढ़ें ऐसा बिल्कुल ना सोचें। ये एक नया युग का समय है, नया युग बनता जा रहा है हमारी आंखों के सामने। एआई के माध्यम से, डिजिटलाइजेशन के माध्यम से अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने संबंधियों को मजबूत करें, और जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स इसके

0: मिल रहे हैं आज और आने वाले समय में, उसका पूरा लाभ उठाएं और अपना भविष्य संवारने में इसका इस्तेमाल करें।
1: बिल्कुल, और घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हैं कि हम चर्चा को यहीं पे विराम दें। हम अपने सभी श्रोताओं का आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस विभाग के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नंद कुमारम जी तथा प्रधानमंत्री कार्यालय में पूर्व राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक डॉक्टर गुलशन राय, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपने सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। कार्यक्रम को दोबारा सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.nic.in पर लॉगिन कर सकते हैं, और साथ ही पब्लिक स्पीक का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे। मुकेश कुमार को दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है। श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वार्ता में व्यापार, निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
0: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के विचारों ने आधुनिक भारत को नई दिशा दी।
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
0: श्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार उनकी जयंती के उपलक्ष्य में 2 वर्ष तक चलने वाला राष्ट्रीय समारोह आयोजित कर रही है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का फैसला भी लिया गया। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा है कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं। ईरान की

राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनई और उनके परिवार की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। यह शोक शनिवार से शुरू हुआ था और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: Raining landslides, flooding and widespread damage, and the IMD has issued red alerts for several districts. Mourners dressed in black flooded Iran's capital Tehran for a funeral procession today, honoring the late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Khamenei's flag-draped coffin, along with those of several family members, was carried on a truck decorated to resemble the ornate latticework surrounding the shrine of an imam. They were killed in an airstrike on the 20th of February at the outset of the war launched by Israel and the United States. The turnout came as Tehran continues negotiations with the United States on a permanent end to the conflict, which claimed the life of the 86-year-old cleric. The mourning will continue through Thursday, when Khamenei will be buried at the Imam Reza Shrine in Mashhad, his birthplace. In the FIFA World Cup, Portugal will take on Spain in the round of 16 match at Arlington in US tonight. In another round of 16 match, co-host US will face Belgium in Seattle tomorrow morning. England, Norway, Morocco and France have already entered the quarterfinals. And that is the end of this news bulletin.
1: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं सर फिरोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन देशों इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दौरे के पहले चरण में जकार्ता पहुंचे पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस्लामाबाद द्वारा आवश्यक आपूर्ति की नाकाबंदी से क्षेत्र में उत्पन्न मानवीय संकट से निपटने के लिए भारत से सहायता की अपील की ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई को अंतिम विदाई देने के लिए तेहरान में बड़ी संख्या में लोग जमा हुए यूक्रेन में राजधानी कीव पर रूसी हमलों में 18 लोगों की मौत और फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज रात राउंड ऑफ 16 में पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा अमेरिका का सामना कल सुबह सिएटल में बेल्जियम से अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया जिससे लोगों को लाभ हुआ है एक रिपोर्ट
2: प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए पारंपरिक इंडोनेशियाई और भारतीय नृत्य प्रस्तुतियों वाला एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया यह दोनों देशों के बीच गहरे सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाता है श्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे वार्ता में व्यापार निवेश रक्षा समुद्री सुरक्षा डिजिटल तकनीक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा इससे भारत और इंडोनेशिया के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय समुदाय के सदस्यों ने प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर उत्साह व्यक्त किया और भरोसा जताया कि इससे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे तथा व्यापार और निवेश के लिए नए अवसर सृजित होंगे जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा प्रधानमंत्री मोदी 8 जुलाई को इंडोनेशिया की आधिकारिक यात्रा के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के साथ योग्यकार्ता स्थित प्रतिष्ठित प्रम्बानन मंदिर का दौरा करेंगे ये यात्रा भारत और इंडोनेशिया के बीच 1000 वर्षों से चले आ रहे गहरे सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों को दर्शाती है मंदिर के पत्थर की नकाशी में रामायण के दृश्य चित्रित हैं ये दर्शाते हैं कि कैसे भारतीय महाकाव्य समुद्र पार करके जावा की संस्कृति का अभिन्न अंग बन गए आज भी इंडोनेशिया के प्रसिद्ध रामायण बैले के माध्यम से ये महाकाव्य जीवित है विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कतर की यात्रा समाप्त

0: करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। श्री जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने कहा कि मुलाकात के दौरान उन्होंने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। इस बीच विदेश मंत्री ने कोमोरोस संघ के विदेश मंत्री मबाय मोहम्मद तथा वहां की सरकार और लोगों को उनके स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर श्री जयशंकर ने दोनों देशों के बीच विजन महासागर से संबंधित समझौतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। विदेश मंत्री ने मलावी के विदेश मंत्री जॉर्ज टी चाम्पोडा और वहां की जनता को भी उनके स्वतंत्रता दिवस पर बधाई दी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बीच वहां के लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। क्षेत्र में पिछले एक महीने से प्रदर्शन जारी है। एक अधिकारी के अनुसार लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। खबरों के अनुसार पिछले 20 दिनों से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। इसके कारण लोगों को भोजन और इलाज जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना करना पड़ रहा है। हालात बिगड़ने के कारण कई लोग नियंत्रण रेखा पार कर भारत आने की कोशिश भी कर रहे हैं। इस बीच संयुक्त आवामी एक्शन कमेटी ने भारत सरकार से नियंत्रण रेखा खोलने की अपील की है। ये अपील ऐसे समय में की गई है जब खबरों में दावा किया गया है कि प्रदर्शन नहीं रुकने पर पाकिस्तान की सेना ने सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार के सदस्यों का पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन पर रखा गया है। इन लोगों की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। वाहन को एक इमाम की दरगाह की जालीदार बनावट की तरह सजाया गया है। एक रिपोर्ट।
1: अंतिम यात्रा की व्यवस्था संभाल रहे रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के जनरल हसन जादेह ने बताया कि पार्थिव शरीरों को लगभग 12 घंटों तक तेहरान की सड़कों से ले जाया जाएगा। इसके बाद उन्हें मेहराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहुंचाया जाएगा। शोक की अवधि के दौरान प्रशासन ने राजधानी की कई प्रमुख सड़कों को बंद किया है। देश का हवाई क्षेत्र भी अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और सामान्य जनजीवन पर भी इसका असर पड़ा है। यह शोक शनिवार से शुरू हुआ और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। इसके बाद आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्मस्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। इस बीच ईरान संघर्ष को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत भी जारी रखे हुए है। खबरों के अनुसार अंतिम यात्रा में उमड़ी भीड़ वर्ष 2020 में रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के जनरल कासिम सुलेमानी की अंतिम यात्रा में जुटी भीड़ से कहीं अधिक दिखाई दी। उस समय 10 लाख से अधिक लोग अंतिम यात्रा में शामिल हुए थे। विश्व दर्पण के लिए शक्ति सिंह।
0: इंसानों और जानवरों के बीच फैलने वाली बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज दुनिया भर में वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जा रहा है। ये बीमारियां जन स्वास्थ्य, जानवरों की सेहत और वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में वन हेल्थ अप्रोच भारत की जन स्वास्थ्य रणनीति का अहम स्तंभ बन गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस के मिसाइल और ड्रोन हमलों से 18 लोग मारे गए हैं जबकि 60 घायल हुए हैं। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा कि रूस ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल तथा ड्रोन हमले किए। इन हमलों से पोडिलस्की जिले में एक आवासीय इमारत ढह गई। डारनित्सिया जिले में कई बहुमंजिला इमारतें क्षतिग्रस्त हुई। इन इमारतों के मलबे के नीचे लोगों के फंसे होने की आशंका है। ये हमले तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुए हैं जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की आशा है। इंडोनेशिया में योग की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। अधिक से अधिक लोग स्वस्थ जीवन शैली और मानसिक कल्याण के लिए इस प्राचीन भारतीय पद्धति को अपना रहे हैं। जकार्ता, बाली और कई अन्य शहरों के पार्क, स्कूल, फिटनेस सेंटर और सामुदायिक स्थलों में नियमित योग सत्र आयोजित किए जा रहे हैं। इस देश के नागरिक भारतीय शैली की फिटनेस पद्धति को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हैं।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज ट्यून इन किया है आपने। हर श्रृंगार में अर्पना आप सभी का स्वागत करती है। जरा वक्त मिला ले, 10:31 और 6 सेकंड हो चुके हैं, तो चलिए आज के हर श्रृंगार की शुरुआत करते हैं किशोर कुमार की आवाज के साथ फिल्म प्रेम पुजारी से ये गीत। एक बार फिर से बता दूं कि आपने ट्यून इन किया है 100.1 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड और आप सुन रहे हैं हर श्रृंगार।

दोस्तों, प्यार और जज्बात की दुनिया में मुलाकातों का अपना ही एक अलग अंदाज होता है। पहली मुलाकात की धड़कने हो या बिछड़े पलों के बाद मिलने की खुशी और उम्मीद से भरी जिंदगी, हर मुलाकात एक अलग तरह का एहसास देकर जाती है।

साहब का संगीत और लता जी की आवाज़ फिल्म खानदान से अभी आपने ये गीत सुना। दोस्तों ये बात तो है, जब किसी से प्यार हो तो फिर चाहे कितनी ही बातें कर लो, चाहे उनके साथ कितना भी समय बिता लो, मन हमारा भरता नहीं है। दिल हर बार ये दुआ करता है कि ये वक्त रुक जाए, काश ये वक्त थम जाए, मगर ये वक्त का पहिया है दोस्तों, ये कभी रुकता है। फिलहाल अगला गीत होगा वक्त फिल्म से आशा जी की आवाज में।

जी हाँ दोस्तों, जब दिल की पुकार दूर तक जाती है और आपके सामने वाले को भी आपसे मोहब्बत होती है तो ये आवाज उन तक पहुंच ही जाती है। जैसे ये आवाज आप तक पहुंची है, आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड है ये 100.1 मेगाहर्ट्ज़। ट्यून इन किया है आपने शैलेंद्र और कंचन की आवाज में। रफू चक्कर फिल्म से अभी आपने ये गीत सुना। हर श्रृंगार में आज अर्पणा आपके साथ है। दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि जब मुलाकात होती है, बातें होती हैं, तो दिल की बात दिल तक पहुंच जाती है। और कितनी बार ऐसा होता है ना कि हम चाहते हैं कि सामने वाले से जब मुलाकात करें तो सारी बातें कर ले, लेकिन जब घर लौटते हैं तो पता चलता है अरे ये बात नहीं की, अरे वो बात तो हम भूल ही गए। तो जब बातें अधूरी रह जाती हैं तो हर मुलाकात भी अधूरी रह जाती है। किशोर कुमार और लता जी की आवाज आपका इंतजार कर रही है फिल्म कामचोर से ये गीत।

10:55 हो चुके हैं। अगला गीत आप सुनेंगे किशोर कुमार की आवाज में, फिल्म का नाम है कुदरत। इस गीत के बाद होगा ठीक 11 बजे समाचारों का सिलसिला आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड 100.1 MHz पर। 11:10 पर आप सुनेंगे मार्केट मंत्रा का रिपीट ब्रॉडकास्ट, और उसके बाद 11:40 पर गीत मेरे मनमीत संग्रहूंगी आपके मैं अर्पणा। फिलहाल इस गीत का आनंद लीजिए और इस गीत के बाद जरूर सुनिएगा FM गोल्ड पर समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों को सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज शाम अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्य समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: ईरान की राजधानी तेहरान में आज सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खामेनेई और उनके परिवार की 28 फरवरी को इसराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमलों में मृत्यु हो गई थी। ये शोक शनिवार से शुरू हुआ है और बृहस्पतिवार तक जारी रहेगा। आयतुल्ला अली खामेनेई को उनके जन्म स्थान मशहद स्थित इमाम रजा की दरगाह में सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों के बीच लोगों ने भारत सरकार से सहायता की अपील की है। पिछले 1 महीने से क्षेत्र में प्रदर्शन जारी है। लोगों ने भारत से दवाइयां और जरूरी खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। पिछले 20 दिनों से इस क्षेत्र में राशन और दवाइयों की आपूर्ति रोक दी गई है। अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मीन ने आज भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण BSI अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र और जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान के ईटानगर केंद्र के सहयोग से आयोजित वन महोत्सव में भाग लिया। उन्होंने युवा पीढ़ी से अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी ज्ञान प्रणालियों को संरक्षित और बढ़ावा देने का आग्रह किया। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने SDRF के साथ समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वय कार्रवाई के निर्देश दिए। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में कल मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है।

0: Good evening and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444, 2331-0481 and 2371-7106. And of course, do not forget to prefix 011 before these codes, before these numbers, if you're calling from out of Delhi. My name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Prachi Priya.
1: Namaskar, Market Mantra mein aapka swagat hai, jahan hum taza aarthik khabrein aap tak laate hain. Shrotaon, aaj kyunki somvar hai aur har somvar ki tarah aaj bhi hum aapke prashnon ko seedhe is karyakram mein shamil karenge. Is karyakram mein vyapar, arthvyavastha aur share bazaar se juda koi bhi prashn aap humse pooch sakte hain. Inhe poochne ke liye aap hame call kar sakte hain 2331-4444, 2331-0481 aur 2371-7106 पर दिल्ली से जो बाहर के श्रोता हैं वो इन नंबरों से पहले दिल्ली का एसटीडी कोड 011 भी डायल करें. लेकिन याद रखें कि हम किसी खास शेयर या कंपनी से जुड़े सवालों के जवाब इस कार्यक्रम में नहीं दे पाएंगे. श्रोताओं, जब आप हमें कॉल करें तब अपने रेडियो सेट की आवाज थोड़ी धीमी रखें ताकि एक बेहतर क्वालिटी के साथ हम दोनों ही लोग एक दूसरे को सुन सकें. प्रश्नों के उत्तर और चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार. दीपशिखा जी, कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन.
2: धन्यवाद प्राची.
1: श्रोताओं, कार्यक्रम शुरू करेंगे यानी कि चर्चा शुरू करेंगे, मगर उससे पहले आइए सुने सुर्खियां.
0: The benchmark domestic indices continue upward trend. Sensex jumps over 500 points. Nifty settles above 24,400. Asian stock market indices display mixed trend and global crude oil prices decline.
1: प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों में बढ़त. सेंसेक्स 500 अंकों से अधिक बढ़ा. निफ्टी 24,400 के ऊपर बंद हुआ. एशिया के शेयर बाजार में मिलाजुला रुझान रहा और कच्चे तेल की वैश्विक कीमतें घटी.
0: The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not that of Akashwani. Akashwani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. We further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब श्रोताओं, आइए जान लेते हैं कि दिन के अंतराल में हमारे दोनों ही प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांकों ने कैसा प्रदर्शन किया. घरेलू शेयर सूचकांकों में आज लगभग 0.7% की तेजी आई. दलाल स्ट्रीट पर इस कारोबारी सप्ताह की शुरुआत तेजड़ियों ने की. आज का दिन मिलाकर लगातार चौथे सत्र में तेजी देखी गई. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 521 अंक बढ़कर 78,285 पर बंद हुआ. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 160 अंक की बढ़त के साथ 24,430 पर आ गया. विस्तृत शेयर बाजार में मिड कैप 100 लगभग आधा प्रतिशत बढ़ा, जबकि स्मॉल कैप 100 सूचकांक में आधे प्रतिशत से अधिक की तेजी देखी गई.
0: Dalal Street kicked off the trading week on a strong note with benchmark indices advancing nearly 0.7%. The gains marked the fourth consecutive winning session, reflecting sustained buying interest and positive market sentiment. The Sensex climbed 521 points to close at 78,285. The Nifty added 160 points to settle at 24,430. In the broader market, on the National Stock Exchange, the Mid-Cap 100 index rose over 0.4%, while the Small-Cap 100 index gained more than 0.7%.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 में से 15 कंपनियों के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई. सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों में कोटक महिंद्रा बैंक लगभग 4%, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 1.7% और बजाज फिनसर्व में 1% की गिरावट आई. वहीं अच्छा प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के शेयरों की अगर बात करें तो HDFC बैंक 3.5% से अधिक, महिंद्रा एंड महिंद्रा 2% और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में 1.8% की बढ़त हुई.
0: Sectoral indices on the Bombay Stock Exchange, 19 out of 25 sectors ended in the positive zone. Among the key gainers, realty jumped 1.8%, private bank index rose 1.5%, and mid-small private banks Quality Tilt Index added 1.4%. In contrast, PSU Bank Index shed 1%. Hospitals as well as IT fell 0.6%, and focused IT lost 0.5%. The overall market breadth at the Bombay Stock Exchange was negative, as shares of 2,366 declined, 1,985 companies advanced, and 193 remained अनचेंज्ड।
1: और अब जान लेते हैं श्रोताओं रुपए का हाल। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 95.40 रुपए पर बंद हुआ। उधर दुनिया की 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में अमेरिकी डॉलर की मजबूती को दर्शाने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 101.09 पर कारोबार कर रहा था। दीपशिखा, आज के जो हमारे बाजार की जो चाल रही है उसे आप कैसे देखती हैं? क्या क्या ऐसे किन कारकों को आप मानती हैं जिन्होंने बाजार को तेजी की तरफ एक तरीके से कह सकते हैं जो बाजार को तेजी की तरफ लेकर गए?
2: प्राची, अगर आप देखें पिछले कुछ दिनों से एक जो सेंस ऑफ रिलीफ रहा है बाजार के ऊपर, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जो हॉर्मोज खुल गया है, कॉन्फ्लिक्ट जो है थोड़ा ईज हो गया है, ऑयल प्राइसेस जो एक हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है जिसके कारण इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, वो उसके दाम जो है ईज कर रहे हैं, तो उसका एक मिला जुला असर है। दूसरा, जो बाजार में एक ऑप्टिमिज्म है मॉनसून को लेकर के, और जून का जो आप कहें कि तिमाही जो खत्म हुआ है उसमें कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस को लेकर के थोड़ा ऑप्टिमिज्म बना हुआ है, क्योंकि ऐसी आशा की जा रही है, ऐसी उम्मीद है कि जो ये वेस्ट एशिया का क्राइसिस था उसका उतना खराब असर शायद अर्निंग्स पर नहीं होगा जैसी पहले आशंका की जा रही थी। क्योंकि अगर आप देखें जिस तरह के आंकड़े आए हैं, अगर आप जीएसटी लें या डायरेक्ट टैक्स के आंकड़े लें, तो दोनों आंकड़े जो हैं ये दर्शाते हैं कि शायद कॉर्पोरेट अर्निंग्स जो हैं जैसी आशंका थी वैसी नहीं, बेहतर ही रहेंगे। तो वो जो ऑप्टिमिज्म है वो बाजार में कुछ हद तक दिखाई दे रहा है।
0: Deepshikha, if I may ask you, you mentioned about the first quarter earnings. Of course, it's coming on the 11th. It starts on the 11th of this month. But I would like to draw your attention to the IT sector in particular. You know, the IT kind of in the past 4 or 5 months now, especially after the West Asian crisis, we saw kind of, you know, declining by quite some considerable points. And now, again, you know, you mentioned about the opening of Hormuz and all, tensions easing, so on and so forth. But still, we see that the IT is still kind of being a laggard. So what sense do you get out of this?
2: Nishit, if you look at the tech sector as a whole, and not just in India, if you look at tech sector in other markets as well, other Asian markets, you've seen that this sector has been quite unnerved, and there has been a lot of upheaval which it has witnessed, largely because of what the AI impact would be. There's been an AI rally in the West. Some of the companies are sort of making strides towards aligning with AI. But again, you know, there is apprehension about what would be the impact of AI, especially on the tech sector. So I think that is playing out in a big way. I think once there is clarity on, you know, once these large IPOs sort of come in the US markets of large AI companies, I think then possibly this hype around the AI and its impact sort of make clear. And then probably investors can take a more sort of reasoned view, and they can get a very clear picture of what is going to happen, what would be the way forward for the tech sector.
0: We'll come back to that, but before that, we are joined in by our first caller from Delhi, Amit Jha. Amit, welcome.
3: Namaskar, sir.
0: Namaskar.
3: Deepshikha, madam, ko bhi namaskar, ma'am.
1: Namaskar, Amit ji.
3: एक तो निशित सर ने सवाल पूछ लिया है किससे रिलेटेड, अब मैं दूसरा सवाल पूछ लेता हूँ मेटल के बारे में पूछ रहा था मैम कि हालिया दिनों में पिछले जो तीन महीने में मेटल के स्टॉक्स काफी, मैम तो क्या रीजन था? दूसरी चीज, जैसे आपने कॉर्पोरेट अर्निंग की बात बताई, तो इतने सारे जो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुए हैं, तो क्या हमारी कंपनियां फिर भी उसको डिस्काउंट कर देगी इन प्रभावों को? धन्यवाद।
2: अमित जी, पहला आपका सवाल था जो मेटल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो मेटल क्षेत्र में अगर आप उसको दो भाग में बांट ले, एक तो आपके फेरस मेटल्स हैं और नॉन फेरस मेटल्स हैं। तो फेरस में आप देखें जो केपेक्स एक्सपेंडिचर हो रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्चा कर रही है सरकार, उसका फायदा उसको काफी हद तक मिलेगा और वो असर दिख रहा है इन क्षेत्र के स्टॉक्स पर। और अगर आप नॉन फेरस में देखें तो खासतौर से एल्यूमिनियम में जो है वो तेजी आई है, क्योंकि उसका इस्तेमाल बहुत सारी ऐसे सेक्टर्स में होता है, ईवी इलेक्ट्रिकल्स में, जहां पे इस्तेमाल जो है उसका बढ़ा है और खपत बढ़ रही है, डिमांड काफी है, तो इसलिए उसका फायदा इस क्षेत्र को मिल रहा है। कॉपर में काफी उतार चढ़ाव रहा है और वो काफी हद तक डिमांड जो है इकोनॉमी में कैसी रहती है उस हद तक वो दर्शाता है। और दूसरा आपका जो सवाल था परफॉर्मेंस,
0: यस, ही वाज टॉकिंग अबाउट द कॉर्पोरेट अर्निंग्स,
2: कॉर्पोरेट अर्निंग्स को लेकर के, तो जैसे कि हम चर्चा कर रहे थे कि एक ऑप्टिमिज्म है कि उतनी इम्पैक्ट नहीं हुई है जो कंपनीज थी, जो हालांकि सप्लाई चेन्स काफी हद तक डिसरप्टेड थी, तो उम्मीद कर रहे हैं कि उतना ज्यादा जो है नुकसान नहीं हुआ है अगर आप आंकड़ों को देखते हैं तो उसी हिसाब से शायद बाजार जो है वो सेंटिमेंट दर्शा रहा है।
0: right.
1: दीपशिखा, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगी बैंकिंग सेक्टर की तरफ। बहुत देखिए बहुत सेलिब्रेटेड सेक्टर रहा है कुछ पास्ट वीक्स में, तो इसे आप अब आज्ञा ये इस तरीके से ही रहेगा या इसमें आप किसी तरीके के उतार चढ़ाव को आप देख पा रही हैं आने वाले समय में, या निवेशकों के लिए साथ ही मैं आपसे एक राय भी जानना चाहूंगी मगर इसके बाद।
2: प्राची, अगर आप देखें फाइनेंशियल सेक्टर जो है काफी समय से एक मतलब पॉजिटिव रहा है और काफी निवेशकों को आकर्षित भी किया हुआ है
1: जी।
2: तो ब्याज दरों का मूवमेंट और दूसरा हमारा जो फाइनेंशियल सेक्टर है उसका अपना जो मजबूती है, अपना जो परफॉर्मेंस है, अगर आप देखेंगे तो बहुत ही उसमें इम्प्रूवमेंट रहा है उनके परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में, तो वो सब जो है वो इस क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। कुछ निजी क्षेत्र में कुछ इश्यूज आए थे लेकिन वो कुछ हद तक उनके मैनेजमेंट्स जो हैं वो डिस्पेल कर चुके हैं
1: जी।
2: तो ओवरऑल फाइनेंशियल सेक्टर जो है अर्थव्यवस्था में ग्रोथ जो है उम्मीद की जाती है कि गति उसकी बढ़ेगी, तो फाइनेंशियल सेक्टर भी उसको सपोर्ट में आगे उसी हिसाब से बढ़ेगा और उसका असर हमें बाजार में दिखाई दे।
0: या प्राची, यू टॉक्ड अबाउट द बैंकिंग सेक्टर, बट दीपशिखा, just a couple of days back we saw Prime Minister inaugurating that Sanand plant of the semiconductors, you know, wherein India would be producing that plant, the CG plant would be producing more than 5 billion chips, you know, annually, and that's humongous number considering it's more important, significant rather, when we consider our dependency on, you know, on the chip imports, especially from countries like China and Taiwan, so on and so forth. Because China, as we all know, can be, you know, a very truant kind of a player, you know, every time, all the time. So now, with this semiconductor plant coming up, you know, in big numbers, how do you see this sector playing out? And if I may ask you, what sector or what kind of stocks would you

0: mention, I'm not asking about particular stock names and all, but do you see this sector kind of coming up in the coming times, big time?
1: Nishit, you know, it's an interesting sector if you look at. And the semiconductor, the push that has come from the government side is largely because India wants to remain independent. It wants to ensure that its supply chains are totally insulated. And that is where the entire push is coming from, because we were totally dependent for chip manufacturing. Chips are used in everything.
0: Across the board, yes.
1: Across sectors.
0: Yes.
1: So definitely it is a sunrise sector. But we also have to keep in mind one fact, which is technology can become redundant very, very soon. The kind of development that is happening in the chip technology, it is very, very rapid. So if we definitely are able to keep pace with that, then definitely it's a sector which can be looked at. Apart from that, you have drugs and pharma, you have defense, you have some of the sectors which have a interplay with infrastructure development.
0: Electronics,
1: definitely.
0: Yes.
1: So these sectors would definitely have a play going forward. Monsoon, if it, as is expected, that if it improves, then definitely the demand would be strong. Then some of the sectors which have interplay in the rural demand sector, the consumer, you know, sectors, the FMCG.
0: Absolutely.
2: श्रोताओं, कार्यक्रम में आप अपना सवाल लेकर के हम सबसे जुड़ सकते हैं. आप हमें इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं. ये नंबर्स हैं 2331-4444, 2331-0481 और 2371-7106. हमारे साथ आर्थिक पत्रकार दीपशिखा सिकरवार जी जुड़े हुए हैं, जो आपके तमाम सवालों के तमाम जवाब देंगी. आइए आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं एशिया और यूरोप के बाजार की तरफ. आज एशिया शेयर बाजार मिले जुले रुख के साथ बंद हुआ. ताइवान का ताइएक्स और दक्षिण कोरिया का कॉस्पी आधा प्रतिशत गिरा, जबकि चीन का शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स और जापान का निकेई मामूली गिरावट के साथ लगभग स्थिर रहा. उधर हांगकांग का हैंगसैंग 1% से अधिक बढ़ा और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.3% की तेजी आई. दिल्ली से हमारे साथ केशव जुड़ रहे हैं. केशव जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए.
3: धन्यवाद मैडम. ये हमें दो बातें पूछनी है. यूलिफ की परिभाषा आप हमें थोड़ा खुल के बताएंगे, क्योंकि हर बार कार्यक्रम में यही बताया जाता है आप यूलिफ के चक्कर में ना फंस जाएं. जैसे बैंकों में जाते हैं तो हमें कुछ नई नई स्कीम आते हैं, एफडी के एफडी बनाने जाते हैं, तो ये यूलिफ क्या चीज होती है? आप लोग हमें खासकर यही कहते हैं कि यूलिफ मत लेना आप. और दूसरा सवाल मेरा यह है कि सरकार की तरफ से अभी ये सुनने में आया जाता है कि इन्होंने महंगा तेल खरीदा था. वो महंगा तेल खरीदा था, कितने समय तक ये तेल वो खत्म हो जाएगा? जो सस्ता तेल आया तो आने वाले समाज में लोगों को सस्ता तेल पेट्रोल मिलना शुरू होगा. धन्यवाद.
1: केशव जी, धन्यवाद आपके सवाल के लिए. मैं आपका दूसरा सवाल सबसे पहले ले रही हूँ, कच्चे तेल के लिए. तो अभी जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, उनमें काफी हद तक लॉस बना हुआ है. अगर ये दाम गिरे हुए रहते हैं कुछ अगले 2-3 महीने तक, तब ये लॉसेस जो उनके बुक्स पर हैं वो शायद कवर हो जाएंगे और फिर वो उस स्थिति में होंगे आपको दाम घटाने के. फिलहाल उनकी स्थिति ऐसी नहीं है जो दाम घट पाए. यूलिप्स की आप बात करें और सभी लोग आपको एडवाइस करते हैं उसके खिलाफ, तो यूलिप में जो समस्या रही है, एक तो आपका बहुत लॉन्ग टर्म निवेश होता है. अगर आप उसको बीच में से बाहर निकालना चाहते हैं तो आपका बहुत नुकसान हो जाएगा, आपको नहीं मिल सकता है. दूसरा, एक वो मिक्स प्रोडक्ट था, उस निवेश के साथ साथ आपको इंश्योरेंस देता था. तो कहा यह जाता है कि या तो आप एक निवेश के लिए आप अलग एक प्रोडक्ट लें और इंश्योरेंस के लिए आप एक प्योर इंश्योरेंस प्रोडक्ट लें. इंश्योरेंस में आप निवेश नहीं घुसा सकते हैं, क्योंकि इंश्योरेंस का मकसद जो है वो अलग होता है.
0: नेक्स्ट कॉलर इज सेतुपति फ्रॉम चेन्नई. सेतुपति.
4: Yeah. Good evening, team.
0: Good evening.
1: Good evening,
4: sir. Yeah. This is regarding the ethanol 90%, and what time it will be implemented, and how much gain we can get, for example, in 0 to 3 years time.
0: Okay.

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर पहले इंडोनेशिया में जकार्ता पहुंचे, जहां से उन्होंने अपने तीन देशों के हिंद प्रशांत दौरे की शुरुआत की। ये प्रधानमंत्री मोदी की इंडोनेशिया की चौथी यात्रा है और मई 2018 में भारत इंडोनेशिया संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक उन्नत किए जाने के बाद उनकी पहली द्विपक्षीय यात्रा है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री इंडोनेशियाई राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे और आपसी साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा भी करेंगे।
1: Yeah, Deepshikha, if we talk about Prime Minister's visit to Indonesia, and of course, you know, the Australian tour and the New Zealand tour is also to come up. If we specifically talk of India-Indonesia ties has been been upgraded to comprehensive strategic partnership in 2018 itself, and the Prime Minister in his departure statement as well said that we are going to take forward this, you know, the partnership to the next level. People-to-people ties, trade, defense, security, so on and so forth. How do you see this?
2: No, absolutely. Indonesia, if you look at even within the India-ASEAN, framework, Indonesia is now one of the number one trading partners. Mm. India imports a lot from Indonesia. So definitely, and what we are trying to do is, and what India has been trying to do is, work with its Asian partners, create that ecosystem within the Asia. You know, we had the Look East policy, and I think all the entire Indian Ocean initiative.
1: Mahasagar. So
2: the entire focus is to develop this entire area, entire economy of that area, strategic. It is of strategic importance. And now, you know, when we saw what happened with the Hormuz Strait. Mm. So keeping the passages open and all these, I think, are very crucial questions and crucial issues which are on the table, which are likely to be taken up in this three-nation tour.
1: Yes.
0: And Faridabad se hamare saath Sachin jud rahe hain. Sachin ji, kripya apna sawal poochiye.
3: Hello, Market Mantra team.
0: Hello, Sachin ji.
3: So, I am specifically asking a question regarding the defense sector and the commodity gold. So, what is your view on a short range, I mean, say, short period of 4 to 5 months for defense sector and gold?
2: Sachin ji, you know, you are looking at a very short-term horizon for the defense sector. But if you look at, the emphasis that the government is giving to the defense, it is definitely a sector that should be looked at from medium to long-term. And for short-term, the issue is defense sector stocks have already seen valuations rise. So I would not recommend a very short-term view on this sector.
0: आगे बढ़ते हैं श्रोताओं, और नोएडा से हमारे साथ आकाश जुड़ रहे हैं। आकाश जी, कार्यक्रम में आपका अभिनंदन, कृपया अपना सवाल पूछिए।
4: हेलो, गुड इवनिंग मैम, सभी को
0: गुड इवनिंग।
4: आकाश नोएडा से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, जैसे मैम इस टाइम नोएडा वो सोना खरीदना ठीक है, और जो रखा हुआ है वो बेच भी सकते हैं नहीं, और चांदी भी, और जिसमें मैम जैसे पहले ज्यादा की जैसे सोना रेट बढ़ गए थे तो सभी ने मैम लेके रख लिया था, अब जैसे रेट डाउन भी हो गए हैं तो क्या हम बेच सकते हैं नहीं, या और भी डाउन हो सकता है रेट अभी या नहीं, या बढ़ भी सकता है बाद में, दोनों बातें हो सकती है, आप बताइए मैम।
2: आकाश जी, सोना जो है अगर आपने देखा कुछ समय से जो है काफी उसमें बहुत तेजी से वो बढ़ा था, और क्राइसिस जब स्टार्ट हुई है, कॉन्फ्लिक्ट जब स्टार्ट हुआ तो उसके बाद बीच में थोड़ी गिरावट आनी शुरू हो गई थी, लेकिन उसके बाद फिर अगर आप देखें तो थोड़ा सा चढ़ना शुरू हुआ है, क्योंकि जब चढ़ना शुरू हुआ था पहले तो इसलिए था क्योंकि बहुत सारे जो सेंट्रल बैंक्स थे वो खरीद रहे थे, और अब दोबारा से ऐसा ट्रेंड जो है देखा जा रहा है कि सेंट्रल बैंक्स दोबारा से खरीद रहे हैं सोना, तो उम्मीद की जाती है कि आगे जो है अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू देखते हैं तो सोना जो है उसमें बढ़त हो सकती है।
1: Right. And moving on to oil sector now, the global crude oil prices fell moderately today after OPEC Plus agreed to further increase its output targets from August. Brent crude was trading 0.2% down.

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ है ये। तो दोस्तों आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत। 11:46 और 24 सेकंड हो चुके हैं। अभी अभी जो आपने गीत सुना वो आशा जी और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में था। फिल्म का नाम है अंदाज अपना अपना और आज आपके साथ गीत मेरे मनमीत में है अर्पना। अगला गीत आप सुनेंगे साधना सरगम की आवाज में होगा। फिल्म का नाम है हम है राही प्यार के। लीजिए आनंद इस गीत का। आकाशवाणी दिल्ली का एफ एम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ है ये।

11:55 हो चुके हैं। अभिजीत की आवाज में फिल्म यस बॉस से ये गीत अभी आपने सुना। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड है ये। साउथ

101.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं गीत मेरे मनमीत। अगला गीत आप सुनेंगे सोनू निगम की आवाज होगी, फिल्म का नाम है संघर्ष। इस गीत के बाद आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड पर आप सुनेंगे समाचार और गीत के साथ ही अर्पना को दें इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर खतर की यात्रा समाप्त करने के बाद पश्चिम एशिया यात्रा के दूसरे चरण में बहरीन पहुंच गए हैं। श्री जयशंकर ने मनामा में बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल जायनी से मुलाकात की। श्री जयशंकर ने भारतीय समुदाय का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए बहरीन के विदेश मंत्री की सराहना की। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला लिया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने बताया है कि सूडान में पिछले 6 महीनों से जारी युद्ध में 300 से अधिक बच्चे हताहत हुए हैं, जिनमें से अधिकतर ड्रोन हमलों के शिकार हुए। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और ब्रिटेन सहित कई देशों ने उत्तरी कोर्दोफान की राजधानी अल ओबेद में बड़े पैमाने पर संभावित अत्याचारों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। वैश्विक नेताओं ने दोनों पक्षों से नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और युद्ध अपराधों को रोकने की अपील की है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरों और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने SDRF के साथ समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अब से थोड़ी देर में 12:30 बजे से पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मेक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। जिम्बाब्वे दौरे के लिए भारतीय क्रिकेट टीम की घोषणा कर दी गई है। भारत 23, 25 और 26 जुलाई को 3 T20 मैच खेलेगा। श्रेयस अय्यर कप्तान और तिलक वर्मा उपकप्तान होंगे। 15-वर्षीय वैभव सूर्यवंशी, रिंकू सिंह, प्रिंस यादव, यश ठाकुर और अशोक शर्मा भी टीम में शामिल हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

वक्त हुआ है 12:10:59 आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर निशिगंधा मैं हूँ राखी आपके साथ।

सावन को आने दो फिल्म से आपने ये गाना सुना। जसपाल सिंह की आवाज में गौहर कानपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया राजकमल ने। उमस भरी गर्मी, बारिश का बेसब्री से इंतजार, शनिवार और रविवार की छुट्टियों के बाद फिर वही सोमवार की भागदौड़। दिन भर की व्यस्तता और थकान के बाद अब जाकर मिले हैं ये सुकून भरे लम्हात जहां मन ठहर सा गया है। ऐसे ही शांत पलों में पुराने गीतों की मधुर धुनें दिल को सुकून देती हैं और दिन भर की सारी थकान जैसे हवा हो जाती है।

पहली फिल्म का गाना आपने सुना हेमलता और सुरेश वाडकर की आवाज में। रविंद्र जैन ने इस गीत को लिखा और संगीत भी दिया रविंद्र जैन ने।

बदलते रिश्ते फिल्म से आपने गाना सुना। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आजकल अपने पसंदीदा गीत सुनने के अनगिनत जरिए मौजूद हैं। मोबाइल, म्यूजिक एप्स और इंटरनेट पर तो बस एक स्पर्श की देरी है और मनचाहा गीत हमारे सामने होता है। लेकिन इन सब के बीच भी जब अचानक रेडियो पर वही पसंदीदा नगमा सुनाई दे जाए तो उसकी बात ही कुछ और होती है। उस पल की खुशी, वो अनायास मिलने वाला एहसास और उस गीत का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। शायद इसलिए कि रेडियो सिर्फ गीत नहीं सुनाता बल्कि उनसे जुड़ी यादों, भावनाओं और अनकहे एहसासों को भी फिर से जिंदा कर देता है।

फासले फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। शहरयार ने इसे लिखा और संगीत दिया शिवहरी ने।

वक्त हुआ है 12:32 और ठीक 39 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर इस वक्त आप सुन रहे हैं निशिगंधा। मैं हूँ राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

फासले फिल्म से गाना आपने सुना, लता मंगेशकर किया, माफ कीजिएगा, शंकर हुसैन फिल्म से आपने गाना सुना, लता मंगेशकर की आवाज में, जानिसार अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। रेडियो पर अचानक अपना पसंदीदा गीत सुनना किसी खूबसूरत तोहफे से कम नहीं होता, जैसे कोई बिना बताए हमारी मनपसंद चीज हमें उपहार में दे दे और हमारी खुशी का ठिकाना ना रहे। ऐसे छोटे छोटे सरप्राइज ही तो जिंदगी को मुस्कुराने की वजह देते हैं। इसलिए रिश्तों में बड़े नहीं छोटे छोटे तोहफों का आदान प्रदान भी होता रहना चाहिए, क्योंकि तोहफों की कीमत नहीं उसके पीछे छिपा अपनापन और स्नेह मायने रखता है। किसी के चेहरे पर सच्ची मुस्कान लाने के लिए कभी कभी बस एक छोटा सा उपहार या प्यार भरा एहसास ही काफी होता है।

रजनीगंधा फिल्म से आपने गाना सुना लता मंगेशकर की आवाज में। योगेश ने इसे लिखा और संगीत दिया सलिल चौधरी ने। और हाँ, हम जब हम छोटे छोटे तोहफों की बात करते हैं तो जरूरी नहीं कि वो बहुत महंगे हों। एक छोटा सा रजनीगंधा के फूलों का गुलदस्ता भी किसी के चेहरे पर अनमोल मुस्कान बिखेर सकता है। ये जेब पर भी ज्यादा भारी नहीं पड़ता, लेकिन इसकी महक दिल पर गहरी छाप छोड़ जाती है।

बाजार फिल्म से आपने ये गजल सुनी। लता मंगेशकर और तलत अजीज की आवाज में मखदूम मोहिउद्दीन ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। रात की खामोशी में अपनी भीनी भीनी खुशबू बिखेरने वाला रजनीगंधा फूल सचमुच अनोखा है। दुनिया की महंगी से महंगी खुशबुएं भी इसके सामने फीकी सी लगती हैं। एक बार इसे आजमा कर तो देखिए, एक बार किसी को तोहफे में दे कर तो देखिए। यकीन मानिए, इसकी महक इतनी मनमोहक होती है कि रात भर आपका साथ निभाती है और सपनों तक को महका देती है।

सिलसिला फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में। जावेद अख्तर ने इसे लिखा और संगीत दिया शिवहरी ने।

वक्त हुआ है 12:53 और ठीक 16 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 1 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 1:10 पर गीत सुहाने मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी

0: न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। श्री जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक खाड़ी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे हैं। यात्रा के दौरान वे कुवैत और ओमान भी जाएंगे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री जयशंकर ने कहा कि बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात का सौभाग्य प्राप्त हुआ। साथ ही युवराज और प्रधानमंत्री सलमान बिन हमद अल खलीफा से भी मुलाकात का अवसर मिला। श्री जयशंकर ने बहरीन में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराओं कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे जिसमें लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। सऊदी अरब ने एक नई सेवा का प्रायोगिक शुभारंभ किया है जिसके अंतर्गत यात्री एकीकृत पैकेज के जरिए अपना वीजा, उड़ान और होटल बुक कर सकेंगे। खाड़ी देश के पर्यटन मंत्रालय ने यह जानकारी दी। सऊदी अरब के पर्यटन मंत्री अहमद अल खतीब ने कहा कि सऊदी अरब का पर्यटन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और पैकेज वीजा देश की यात्रा को और अधिक सुगम बनाएगा। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। कई शहरों और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे और मुंबई गोवा हाईवे पर हुए भूस्खलन का मलबा तुरंत हटाकर यातायात सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में पुर्तगाल और स्पेन के बीच मुकाबला जारी है। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से सिएटल में भारतीय समय अनुसार सुबह 5:30 बजे से होगा। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Himakshi Pawar. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Jakarta on the first leg of his high-stakes three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post yesterday, Mr. Modi said, India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. a vibrant cultural program featuring

0: वक्त हुआ है 1:11 और ठीक 3 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर गीत सुहाने, मैं हूँ राखी आपके साथ।
1: तुम ही तुम हो मेरे जीवन में,

एक दिल सौ अफसाने फिल्म से आपने गाना सुना। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। तुम ही तुम हो मेरे जीवन में, जैसे इस चमन में फूल ही फूल खिले हों। तुम्हारी मुस्कान से हर सुबह सुनहरी लगती है और तुम्हारी याद से हर शाम सुरमई हो जाती है। जीवन की राहों पर जब भी नजर उठती है, हर दिशा में तुम्हारा ही एहसास साथ चलता है। जैसे फूल अपनी खुशबू से पूरे उपवन को महका देते हैं, वैसे ही तुम्हारा स्नेह मेरे जीवन के हर पल को महका देता है।

बॉयफ्रेंड फिल्म का गाना आपने सुना रफी की आवाज में। हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। उस नजर को सलाम जिसमें अपनापन भी है, स्नेह भी है और अनकही मोहब्बत का एहसास भी। एक ऐसी नजर जो बिना कुछ कहे दिल की बात कह जाती है, थके हुए मन को सुकून दे जाती है और जिंदगी के हर पल को खूबसूरत बना देती है।

हसीना मान जाएगी फिल्म से ये गाना आपने सुना। लता मंगेशकर और रफ़ी की आवाज़ में अख्तर रोमानी ने इसे लिखा और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। जब प्रेम सच्चा हो तो कदम सोचकर नहीं दिल की धड़कनों के साथ चल पड़ते हैं। उस बेखुदी में मंजिल से ज़्यादा साथी का साथ मायने रखता है।

प्रोफेसर फिल्म का गाना आपने सुना, लता मंगेशकर और रफी की आवाज़ में। अनजान ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने।

वक्त हुआ है 1:31 और ठीक 46 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर इस वक्त आप सुन रहे हैं गीत सुहाने। मैं हूँ राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

साथी फिल्म का गाना आपने सुना मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज में। इसे लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत दिया नौशाद अली ने। जब कोई दिल में इस तरह बस जाए कि हर ऋतु उसी की खुशबू बन जाए, तब प्रेम शब्दों से नहीं मुस्कुराहटों और एहसासों से जिया जाता है।

लव मैरिज फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर की आवाज में शैलेंद्र ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। झूमती रात की खामोशी में चांद भी जैसे मुस्कुरा रहा है, दिल की अनकही बातें हवाओं के संग बह रही हैं और हर पल प्रेम की एक नई कहानी बनता जा रहा है।

असली नकली फिल्म से आपने गाना सुना। लता मंगेशकर की आवाज में हसरत जयपुरी ने इसे लिखा और संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। सच्चे प्रेम में विश्वास और समर्पण जितना गहरा होता है उतनी ही गहरी उसे संभाल कर रखने की चाह भी होती है। प्रेम केवल खुशी का नाम नहीं बल्कि अपने प्रिय के प्रति संवेदनशीलता, चिंता और उसके साथ हर पल बिताने की आकांक्षा का भी नाम है।

भारती फिल्म का गाना आपने सुना रफी और लता की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने। जिससे सच्चा प्रेम हो उसके बिना ना मन को चैन मिलता है, ना जीवन की कोई खुशी पूरी लगती है। उसकी याद हर पल साथ रहती है और मिलन की चाह मन में हमेशा बनी रहती है।

ताजमहल फिल्म का गाना आपने सुना रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। साहिर ने इसे लिखा और संगीत दिया रोशन ने। वक्त हुआ है 1:53 और ठीक 37 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 2 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर रात सुरमई मेरे साथ। फिलहाल कुछ देर के लिए राखी को इजाजत दीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया है, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। श्री जयशंकर ने बहरीन में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। श्री जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक खाड़ी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे हैं। यात्रा के दौरान वे कुवैत और ओमान भी जाएंगे। विदेश मंत्री श्री जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचार का आदान प्रदान करने के लिए चारों खाड़ी देशों के अपने समकक्षों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सीरिया पहुंच गए हैं। साल 2024 में बशर अल असद को सत्ता से हटाए जाने के बाद इस युद्धग्रस्त देश का दौरा करने वाले वे पहले बड़े पश्चिमी नेता हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति का यह दौरा मध्य पूर्व में शांति के माहौल के बीच हो रहा है। सीरिया के दौरे के बाद मैक्रों नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तुर्की के अंकारा शहर जाएंगे। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराव कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे, जिसमें लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सीमा सड़क संगठन से जुड़े 4 आपराधिक मामलों के संबंध में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 26 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। तलाशी के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए। मामले की जांच जारी है। एजेंसी के अनुसार इन मामलों में लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर और इंजीनियर रैंक के कुल 10 अधिकारियों के साथ कुछ निजी व्यक्तियों को नामजद किया गया है। ये मामला लद्दाख में प्रोजेक्ट विजयक और प्रोजेक्ट योजक के अंतर्गत अस्थायी श्रमिकों की तैनाती और फर्जी श्रमिकों के नाम पर किए गए भुगतान में अनियमितताओं से जुड़ा है। सऊदी अरब ने एक नई सेवा का प्रायोगिक शुभारंभ किया है, जिसके अंतर्गत यात्री एकीकृत पैकेज के जरिए अपना वीजा, उड़ान और होटल बुक कर सकेंगे। खाड़ी देश के पर्यटन मंत्रालय ने ये जानकारी दी। सऊदी अरब के पर्यटन मंत्री अहमद अल खतीब ने कहा कि सऊदी अरब का पर्यटन क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है और पैकेज वीजा देश की यात्रा को और अधिक सुगम बनाएगा। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई शहरी और ग्रामीण इलाकों में जलभराव हो गया है। इस बीच मौसम विभाग ने गुजरात, महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में पुर्तगाल और स्पेन के बीच मुकाबला जारी है। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से सिएटल में भारतीय समय अनुसार सुबह 5:30 बजे से होगा। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by R.S. Raghu. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Jakarta on the first leg of his high-stakes three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post yesterday, Mr. Modi said India and Indonesia have elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee yesterday, Mr. Modi said the thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India.
2: Aaj desh ki dharti paschim

वक्त हुआ है 2:10 और ठीक 58 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर रात सुरमई, मैं हूँ राखी आपके साथ।

दिले नादान फिल्म से आपने गाना सुना। लता और किशोर की आवाज में नक्श ने इसे लिखा और संगीत दिया खयाम ने। रात सुरमई हो, चांदनी अपनी नरम चादर बिछा रही हो और हवाओं में फूलों की भीनी भीनी महक खुली हो, ऐसे लम्हों में ये गीत सिर्फ सुनाई नहीं देते, वो दिल में उतर आते हैं।

नूरी फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की आवाज में। इसे लिखा जानेसार अख्तर ने और संगीत दिया खयाम ने। सुरमई रात ही रात की अपनी ही एक खामोश जुबान होती है। चांद की चांदनी, तारों की टिमटिमाहट और ठंडी हवाओं की सरगोशियां मिलकर ऐसा समा रच देती हैं जहां हर धड़कन किसी भूले बिसरे गीत का सुर बन जाती है।

कुदरत फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। मजरूह ने इसे लिखा और संगीत दिया आरडी बर्मन ने। कभी कभी किसी की एक मुस्कान, एक नजर या एक मुलाकात जिंदगी के हर रंग को और भी गहरा बना देती है। दिल अनजाने ही किसी की मोहब्बत के जादू में बंध जाता है और फिर हर मौसम, हर हवा, हर धड़कन उसी का एहसास कराने लगती है।

वक्त हुआ है 2:33 और ठीक 5 सेकंड आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर रात सुरमई। मैं हूँ राखी, आपके साथ एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।

आशा फिल्म से आपने गाना सुना। लता और रफी की आवाज में आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुर से जीवन संगीत बना और संगीत से हर एहसास को एक नई पहचान मिली। कुछ धुने मुस्कुराना सिखाती हैं, कुछ यादों को फिर से जगा देती हैं, तो कुछ चुपचाप दिल की गहराइयों में उतर जाती है। इन्हीं मधुर सुरों के साथ जीवन के हर रंग को महसूस करें, जहां हर गीत एक कहानी है और हर कहानी में धड़कता है एक एहसास।

हीरो फिल्म का गाना आपने सुना अनुराधा पौडवाल और मनहर की आवाज में। आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

डिंग डोंग ओ बेबी सिंग अ सॉन्ग, ये सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि प्यार और खुशियों का निमंत्रण है। आज की ये शाम मुस्कुराहटों, मधुर सुरों और दिलों की धड़कनों के नाम है। आइए संगीत की लय में खो जाएं और इस खूबसूरत शाम को प्यार के रंगों से सजा दें।

लम्हे फिल्म का गाना आपने सुना। लता मंगेशकर और हरिहरन की आवाज में आनंद बख्शी ने इसे लिखा और संगीत दिया शिवहरि ने। वक्त हुआ है 2:55 और ठीक 24 सेकंड। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर अब से बस कुछ ही देर में यानी ठीक 3 बजे सुनिए हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार। समाचारों के बाद 3:10 पर हमराही वंदना चुग के साथ। तो इसी के साथ अब राखी को इजाजत दीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। प्रधानमंत्री ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। श्री जयशंकर ने बहरीन में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। श्री जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक खाड़ी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में खतर से बहरीन पहुंचे हैं। यात्रा के दौरान वे कुवैत और ओमान भी जाएंगे। विदेश मंत्री श्री जयशंकर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय घटनाक्रमों तथा पारस्परिक हित के मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करने के लिए चारों खाड़ी देशों के अपने समकक्षों और शीर्ष नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सीरिया पहुंच गए हैं। साल 2024 में बशर अल असद को सत्ता से हटाए जाने के बाद इस युद्धग्रस्त

0: देश का दौरा करने वाले वो पहले बड़े पश्चिमी नेता हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति का ये दौरा मध्य पूर्व में शांति के माहौल के बीच हो रहा है। सीरिया के दौरे के बाद मैक्रो नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तुर्की के अंकारा जाएंगे। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीट राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। इन सीट के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। जम्मू कश्मीर से अरेको चेरी और सेंट्रोज बेर की पहली खेप संयुक्त अरब अमीरात यूएई को निर्यात की गई है। इससे किसानों के लिए नए अवसर खुले हैं, कृषि निर्यात को बढ़ावा मिला है और भारतीय उत्पादों की असाधारण गुणवत्ता विश्व स्तर पर प्रदर्शित हुई है। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने जम्मू कश्मीर से यूएई को प्रीमियम अरेको चेरी और सेंट्रोज बेर की पहली खेप की सुविधा प्रदान की। ये केंद्र शासित प्रदेश के बागवानी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने सीमा सड़क संगठन से जुड़े 4 आपराधिक मामलों के संबंध में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 26 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। इस दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल साक्ष्य बरामद किए गए। मामले की जांच जारी है। एजेंसी के अनुसार इन मामलों में लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर और इंजीनियर रैंक के कुल 10 अधिकारियों के साथ कुछ निजी व्यक्तियों को नामजद किया गया है। ये मामला लद्दाख में प्रोजेक्ट विजय और प्रोजेक्ट योजक के तहत अस्थायी श्रमिकों की तैनाती और फर्जी श्रमिकों के नाम पर किए गए भुगतान में अनियमितताओं से जुड़ा है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया है। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से सिएटल में भारतीय समय अनुसार आज सुबह 5:30 बजे से होगा। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Himakshi Pawar. Prime Minister Narendra Modi has arrived in Jakarta on the first leg of his high-stakes three-nation Indo-Pacific tour to Indonesia, Australia and New Zealand. Upon arrival at the Jakarta airport, Mr. Modi was personally received by Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Modi was accorded a grand and enthusiastic welcome from the local Indonesian community and the Indian diaspora. In a social media post yesterday, Mr. Modi said, India and Indonesia elevated their relations to a comprehensive strategic partnership in 2018, which has benefited the people. A vibrant cultural program featuring traditional Indonesian and Indian dance performances was organized to welcome the Prime Minister, reflecting the deep civilizational and cultural bonds shared by the two countries. During the visit, Prime Minister Modi will hold bilateral talks with Indonesian President Prabowo Subianto. Prime Minister Narendra Modi has said that Dr. Shyama Prasad Mukherjee was a great patriot and a visionary dedicated to the integrity of India. In his video message on the occasion of 125th birth anniversary of Dr. Mukherjee yesterday, Mr. Modi said, "The thought of Dr. Mukherjee is playing a major role in guiding modern India."
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
1: Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has said that India's leather and footwear sector, which currently exports goods worth around $4.5 billion, has significant growth potential, with 38 developed countries opening their markets to Indian products through free trade agreements. These countries include the United Kingdom, Oman, the UAE, and several others. Addressing the Council for Leather Exports National Export Excellence Awards 2024-25 in New Delhi yesterday, Mr. Goyal said that several countries, including Ecuador, are also keen to conclude free trade agreements with India, creating new opportunities for Indian exporters. Reserve Bank of India has announced that the government will auction dated securities worth 32,000 crore rupees on Friday to raise funds. The auction will be settled on the 13th of this month. It includes the reissue of the 6.36% government security 2031 worth 21,000 crore rupees and the 7.71% government security 2066 worth 11,000 crore rupees. The government has also kept the option open to accept additional subscriptions of up to 2,000 crore rupees for each security. According to the RBI, the auction will be conducted through its Mumbai office using the multiple price method. India Meteorological Department issued a red alert for heavy to very heavy rainfall, with isolated extremely heavy rainfall over Gujarat, Saurashtra, Kutch, Madhya Maharashtra, coastal Karnataka for today. The Met Department has forecast heavy to very heavy rainfall over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, Bihar, Chhattisgarh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, interior Karnataka, Madhya Pradesh, Vidarbha, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim during the next 2 days. In the FIFA World Cup, Spain defeated Portugal 1-0 in a closely fought round of 16 clash in Dallas, Texas to book their place in the quarterfinals. Spain's Mikel Merino scored the decisive goal in the 90th minute plus stoppage time. In the other round of 16 fixture, co-hosts the United States will take on Belgium in Seattle this morning at 5:30 a.m. Indian time. The match will decide the final quarter final spot. In boxing, India continued its impressive campaign at the Under-23 Asian Championships in Jakarta yesterday, with Asian champion Vishwanath Suresh, Ganga Hitesh and Tanu registering commanding 5-0 victories in their respective bouts. And that is the end of this news.

हम राही कार्यक्रम के अंतर्गत युगल गीतों को सुनवाने के लिए मैं आ गई हूँ आपकी दोस्त वंदना चुग। नमस्कार।

0: हम भी यही चाहते हैं
1: कि आपका प्यार जिससे है वो आज भी रहे और कल भी रहे। ये गीत आपने सुना जब प्यार किसी से होता है, इस फिल्म से मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में। हसरत जयपुरी के बोल थे और शंकर जयकिशन का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे तेरे मेरे सपने फिल्म से, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में। नीरज द्वारा लिखा ये गीत है और धुन बनाई है सचिन देव बर्मन ने।

दोस्तों, दोस्ती में यही फायदा होता है कि हम आपस में एक दूसरे की बात का यकीन किया करते हैं और पहले भी किया करते थे। जो बात कह दी बस पक्की हो गई।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया ये गीत आपने सुना। फिल्म का नाम तो आप जान ही गए होंगे। जी हाँ, ताजमहल फिल्म से ये गीत था। साहिल लुधियानवी का लिखा गीत था और रोशन का संगीत।

दोस्तों आपने ट्यून किया है 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एफएम गोल्ड चैनल और कार्यक्रम चल रहा है हमराही।

0: तीन देवियां, फिल्म से भी आपने गीत सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार का गाया हुआ गीत। मजरू सुल्तानपुरी ने लिखा था और संगीत दिया था एसडी बर्मन ने। अगला गीत आप सुनेंगे सच्चा झूठा फिल्म से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर का गाया हुआ है, इंदिवर की रचना है और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

और अब अगला गीत आप सुनेंगे, फिल्म है रोटी कपड़ा और मकान, लता मंगेशकर मुकेश और साथियों का गाया हुआ, वर्मा मलिक के बोल हैं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

दोस्तों कार्यक्रम चल रहा है हमरा ही और इस कार्यक्रम के अंतर्गत युगल गीत आप सुन रहे हैं अपनी दोस्त वंदना चुक के साथ।

चोरी चोरी, इस फिल्म से ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर और मन्ना डे का गाया हुआ। हंसल जयपुरी की शब्द रचना थी और संगीत था शंकर जयकिशन का। अगला गीत आप सुनेंगे राज फिल्म से, मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज है, गुलशन बावरा का गीत है और संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

दोस्तों, दिल में कितनी बातें होती हैं ना, कुछ बातों को आप अपनों से साझा कर देते हैं और कुछ हम अपने जहन में दबा कर चलते रहते हैं, लेकिन जो असली दोस्त होते हैं वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। वो आपका साथ नहीं छोड़ते और ना ही आपकी बात का तमाशा बनाते हैं, होता है ना ऐसा, वही सच्चे दोस्त होते हैं। और अब अगला गीत ये रास्ते हैं प्यार के, इस फिल्म से आपको सुनवा रही हूँ, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं और रवि का संगीत।

दोस्तों, अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रही हूँ आया सावन झूम के। इस फिल्म से गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ, आनंद बख्शी की लिखी रचना है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

दोस्तों जी तो हमारा भी नहीं करता कि हम आपको छोड़कर जाएं, लेकिन जाना तो पड़ेगा। समय कह रहा है कि अब चले जाना चाहिए, लेकिन अगले कार्यक्रम में ज़रूर मिलेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंधों का स्तर बढ़ाकर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। श्री मोदी न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। उन्होंने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। श्री जयशंकर ने बहरीन में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। श्री जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक खाड़ी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे हैं। यात्रा के दौरान वे कुवैत और ओमान भी जाएंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों सीरिया पहुंच गए हैं। साल 2024 में बशर अल असद को सत्ता से हटाए जाने के बाद इस युद्धग्रस्त देश का दौरा करने वाले वो पहले बड़े पश्चिमी नेता हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति का ये दौरा मध्य पूर्व में शांति के माहौल के बीच हो रहा है। सीरिया के दौरे के बाद मैक्रों नाटो शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए तुर्की के अंकारा जाएंगे। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीट राज्यसभा सदस्य सुकेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जांच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। ब्रिक्स की नशीली दवाओं के खिलाफ एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक कल

गुवाहाटी में शुरू हुई गृह मंत्रालय के अधीन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा आयोजित इस दो दिवसीय बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। श्री गर्ग ने कहा कि आधुनिक मादक पदार्थ की तस्करी के नेटवर्क, डार्क नेट प्लेटफॉर्म, सिंथेटिक ड्रग्स, नए मनोसक्रिय पदार्थों और समुद्री मार्गों के माध्यम से सीमाओं के पार काम करते हैं, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जरूरी है। यूक्रेन ने रूस में साइबेरिया के ओम्स्क स्थित सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला किया है। ये युद्ध के दौरान यूक्रेन के सबसे लंबी दूरी के हमलों में से एक है। स्थानीय अधिकारियों ने हमले की पुष्टि की है। यूक्रेन के जनरल स्टाफ ने एक बयान में कहा कि हमले के कारण ओम्स्क रिफाइनरी में आग लग गई। ये रिफाइनरी यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्र से लगभग 2700 किलोमीटर दूर और कजाकिस्तान के साथ रूस की सीमा के करीब है। इस क्षेत्र के गवर्नर विटाली खोत्सेनको ने कहा कि रूसी वायुसेना ने हमले में शामिल अधिकांश ड्रोनों को नष्ट कर दिया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया है। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से सिएटल में भारतीय समय अनुसार आज सुबह 5:30 से होगा। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों अरुणिमा कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करते हुए मैं आपके साथ रहूंगी 4:59 तक गीतों के साथ। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

कुछ गीत तो ऐसे होते हैं, दिल करता है हम भी साथ साथ गुनगुनाते रहें। मना किसने किया है? जी हाँ, गुनगुनाइए ना। दिल ने फिर याद किया, इस फिल्म से आपने गीत सुना मोहम्मद रफी की आवाज में। सोनिक अमिका संगीत था और जीएल रावल की रचना थी। अगला गीत आप सुनेंगे फागुन फिल्म से, आशा भोसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ है, कमर जलालाबादी की रचना है और धुन तैयार की है ओपी नैयर ने।

दोस्तों कितने अच्छे लगते हैं ना ये गीत, और जब जब सुनते हैं हमें ऐसा लगता है कि हमें इनकी लाइंस जो है बहुत अच्छे तरह से रट गई हैं। और पहले तो भगवान कृष्ण के जो भजन है लोग इन गीतों के माध्यम से इन्हीं धुन पर ही बना लिया करते थे। खैर अगला गीत आप बताएंगे कि ये कौन सी फिल्म का है।

आपको मैं बता देती हूँ, ये फिल्म थी नई राहें और आवाज हेमंत कुमार की और लता मंगेशकर की थी। गीत को लिखा था प्रेम धवन ने और संगीत से संवारा था रवि ने।

दोस्तों अरुणिमा कार्यक्रम में गीत सुन रहे हैं आप अपनी दोस्त वंदना चौक के साथ, और मुझे उम्मीद है कि आप इन गीतों को सुनते हुए आनंद उठा रहे होंगे और साथ ही साथ गुनगुना भी रहे होंगे।

मदारी फिल्म से ये गीत था, लता मंगेशकर और मुकेश का गाया हुआ। फारूक कैसर ने गीत के बोल लिखे थे और तर्ज बनाई थी कल्याण जी, आनंद जी ने। और अब अगला गीत आप सुनेंगे धरती कहे पुकार के, इस फिल्म से आपको सुनवा रही हूँ, मोहम्मद रफी का गाया हुआ है, मजरू सुल्तानपुरी की रचना है और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है कि जब हमारे साथ कोई साथ देता है किसी काम में, और साथ देने से हमारा काम भी जल्दी हो जाता है और हमें साथ मिल जाता है और समय की भी बचत होती है। घर में भी हम लोग जब काम करते हैं, हमारे घर के सदस्य जब आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं तो कितना अच्छा लगता है। साथ ही साथ समय की भी बचत होती है और काम जल्दी निमट जाता है, फिर हम आराम से बैठ भी सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप को जहाँ भी मौका मिले, आप अपनों की तो कम से कम ज़रूर मदद कीजिए, ताकि हर कोई एक दूसरे को सहारा समझे और एक दूसरे का सहारा बने। हर कोई ये सोचे कि कोई काम करना किसी के लिए या किसी के ऊपर बोझ नहीं है, हमारे अपने हैं जिनका हम साथ दे रहे हैं।

अरुणिमा कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। गीतों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त वंदना चुग।

यादगार फिल्म से अभी आपने गीत सुना, लता मंगेशकर का गाया हुआ। इंदिवर ने गीत को लिखा था और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। अगला गीत आप सुनेंगे बैजू बावरा फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ। शकील बदायूनी की रचना है और संगीत नौशाद का।

जी हाँ दोस्तों, साथ ऐसा ही होना चाहिए कि हम ब्रह्मांड में दी गई चीज़ों का उदाहरण दे सकें। और अब अगला गीत श्री 420 फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और साथियों की आवाज़ में। आपको ज़रूर समझ आ गया होगा ये कौन सा गीत बजने वाला है।

दोस्तों, अब अगला गीत आप सुनेंगे। आपको ये गीत पसंद जरूर आएगा। और ये कहना पड़ेगा कि दुनिया में बहुत सारी बातें होती हैं, और इस फिल्म में, और फिल्म का नाम तो आप जान ही जाएंगे कि ये कौन सी फिल्म है। और साथ ही ये भी सोचना पड़ेगा कि जब इस गीत को लिखा गया तो लिखने वाले ने भी ज़रूर ईश्वर की रचना को बहुत सोच विचार किया होगा, और ईश्वर ने भी तो सोचा होगा कि मैं जिस इंसान से इतनी उम्मीद करता हूँ, यहाँ से भेजता हूँ, वो जाकर भूल जाता है क्या? आपने ज़रूर अंदाज़ा लगा लिया है कि कौन सी फिल्म है, किसका गाया हुआ है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, मुकेश का गाया ये गीत है।

दोस्तों, इस गीत के बोल शैलेंद्र ने लिखे थे और मुकेश ने अपनी जादुई आवाज में गाया था और फिल्म तीसरी कसम से ही गीत था। वाकई में ही धन दौलत सब यहीं रह जाएगा और अंत में सभी को भगवान के पास जाना है। खैर, अब समय हो रहा है समाचारों का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीस के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की और द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। विदेश मंत्री ने बहरीन में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी बातचीत की। श्री जयशंकर 5 से 10 जुलाई तक खाड़ी देशों की यात्रा के दूसरे चरण में खतर से बहरीन पहुंचे हैं। यात्रा के दौरान वे कुवैत और ओमान भी जाएंगे। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में हुई बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति का भी फैसला किया है। इसके लिए 3 सदस्य समिति बनाई गई है जो उपयुक्त नामों की सिफारिश करेगी। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश से की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
1: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहां गुल हो गई, वे कहां चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहां पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
0: चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को

एफएम गोल्ड पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और अब कार्यक्रम होगा भोर सुहानी। भोर सुहानी कार्यक्रम में गीतों के साथ मैं रहूंगी आपके साथ, आपकी दोस्त वंदना चुग। नमस्कार।

लता मंगेशकर की आवाज में ये भक्ति रचना आपने सुनी सांझ और सवेरा फिल्म से, शैलेंद्र के बोलते और शंकर जयकिशन का संगीत। दोस्तों, अकेले में इंसान अपनी बात को केवल उसे ही सुना सकता है ना जिसे वो सच्चा प्यार करता है और उसे मालूम है कि उसके भावों को कोई समझ नहीं सकता केवल उसके अलावा।

काबुलीवाला फिल्म से गीत आपने सुना, हेमंत कुमार का गाया हुआ, गुलजार के बोल थे और सलील चौधरी का संगीत। दोस्तों, बहुत सी बातें हमारे उपनिषदों में कही गई हैं, फिर भी हम ना जाने क्यों

सच बात है कि जैसा इंसान कर्म करता है वैसे ही फल पाता है, और उसकी शक्ति में कोई संदेह नहीं है। हम जैसा उसे मानते हैं वैसा ही पाते हैं।

दोस्तों, जब हमारी नैया भवसागर में फंस जाती है तो केवल उसका ही सहारा लिया जाता है और उसे ही पुकारा जाता है। सन्यासी फिल्म से उससे पहले आपने गीत सुना और ये रचना थी भक्ति में शक्ति फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में।

स्कूल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूर सुहानी और इस कार्यक्रम में गीतों के साथ मैं हूं आपकी दोस्त वंदना चौक।

रोजा फिल्म से गीत आपने सुना मिनमिने का गाया हुआ। दोस्तों वाकई में ही छोटी छोटी आशाओं में कितने सपने छिपे होते हैं और ये सपने जब पूरे हो जाते हैं तो ऐसे लगता है मानो हमने अंबर को छू लिया हो या फिर